मानव का अधिकार केवल शुभ कर्म करने पर है। धर्म के अनुसार चलना ही कल्याण का मार्ग है, जो मन को शांति प्रदान करता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

निषाद राज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री राम ने उन्हें अपने घर लौट जाने को सहमत किया और आप लक्ष्मण तथा सीता समेत गहन वन की ओर चले। राह में उन्हें अनेक वनवासी मिलते हैं, जिन्हें दोनों भाइयों के रूप स्वरूप में राज चिन्ह देखकर बड़ा सोच होता है। ऐसे राजसी लक्षणों वाले कुमार तापस वेश में वन में पैदल चले जा रहे हैं, ये देख वनवासियों को ज्योतिष शास्त्र भी असत्य प्रतीत होता है। वनवासी उन्हें रास्ता दिखाने बताने को अनायास ही प्रेरित हो जाते हैं। आज्ञा चाहते हैं कि जहां तक उन्हें जाना है वहां तक पहुंचाकर उन्हें प्रणाम कर वे वापस लौट आएंगे। श्री राम, लक्ष्मण और सीता की आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं। कृपा सिंधु उनसे विनय भरे वचन बोलकर उन्हें लौटा देते हैं, किंतु वन में यहां वहां बसे गांव और पूर्वों के बालक, वृद्ध, नर नारी, किशोर किशोरियां बार बार उनके दर्शनों को दौड़ते आते हैं और नाना प्रकार से उनकी सहायता कर अपना प्रेम दर्शाते थकते नहीं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:50 हुए हैं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित वरेले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

तो श्रोताओ, आपको बता दें कि सुबह 7:10 पर जानकारियों व गीत संगीत पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा सुबह सुहानी। लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग आप सुनेंगे सुबह 7:40 पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम रहेगा गाने सुहाने। और आपकी ईमेल और फेसबुक मैसेज पर फरमाइशी गीत आप सुन सकेंगे सुबह 9:00 कार्यक्रम गीतांजलि में।

0: सुबह 10 बजे सुनिएगा गीतों का कारवां, हिमाचली गीत व लोकगीत आपको सुनवाएंगे। 10:30 पर कार्यक्रम रहेगा पहाड़ों के सुर। दिन में 11 बजे कवालियां सुनवाई जाएंगी और 11:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन में 12 बजे आप सुना करते हैं सैनिकों के लिए फिल्म संगीत और 12:30 का समय रहता है महिलाओं के लिए कार्यक्रम सुनो सखी का। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा मंच, जिसमें आज बात करेंगे स्पोर्ट्स बीट्स पर। सुरमई सांझ में आप सुनते हैं सदाबहार गीत शाम 6:05 पर। मौजंग राइंदियां कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:30 और खेतीबाड़ी कार्यक्रम आप सुना करते हैं शाम 7:10 पर। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस प्रसारित किया जाएगा रात्रि 8 बजे। एक ही कलाकार पर आधारित कुछ गीत आपको सुनवाए जाएंगे रात्रि 9:15 पर। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीत, कार्यक्रम रहेगा चित्रपट संगीत। आकाशवाणी शिमला से सुबह 9:18 पर, शाम 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से 6:55 पर सुबह संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार। शाम 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार। 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है, रात्रि 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। 6:55 होने को हैं अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। संसदा जन्म मृत्यु पंजीकरण विधेयकं पारितम्। राज्यसभया ह्यः एतस्मै अनुमोदनं प्रदत्तं। तत्पूर्वमेव एतत् विधेयकं लोकसभया पारितम् आसीत्। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रायः राज्यसभायां एतत् विधेयकं प्रस्तुतवान्। अनेन 69-1900 जन्म मृत्यु पंजीकरणाधिनियमे संशोधनं भवेत्, येन जन्म मृत्योः पंजीकरणे विलम्बः न भवेत्,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया पर हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। हमले के बाद ये जहाज कल यमन तट से दूर लाल सागर में डूब गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी 13 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमन के अधिकारियों के साथ सक्रिय समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने यमन के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में

0: होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी थी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। ये नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के कारण, पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की कार्यवाही आज दिन में 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय, मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत सहित भारत के शीर्ष खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha had already passed the bill. Minister of State for Home, Nityanand Rai, moved the bill in the Upper House, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 yesterday. Following the passage of the bill, the Lower House was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The Lower House witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET paper leak issue. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Faiz-e-Noor-e-Ulia that sank in the Red Sea off the coast of Yemen yesterday. In a statement, Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It said the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Yemeni authorities for the safety and security of the crew. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. It said the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. The Ministry of External Affairs said the targeting of commercial shipping in the region must end and free and unimpeded navigation.

सुहानी। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज की सुबह सुहानी कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नर्मदा शर्मा। तो सुबह सुहानी कार्यक्रम शुरू करते हैं एक प्रेरणादायक सुविचार के साथ। सपने केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से पूरे नहीं होते, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए सच्चे मन से निरंतर परिश्रम करना पड़ता है। कर्म और प्रार्थना का सही संतुलन ही जीवन में सफलता लाता है और परिश्रम से जन्मा फल हमेशा मधुर होता है और परिश्रम ही सबसे बड़ी पूजा होती है। झूमता

श्रोताओ, स्वागत है आपका सुबह सुहानी कार्यक्रम में। एक बार फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इतिहास केवल बड़ी घटनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि उन उपलब्धियों और निर्णयों की कहानी भी होती है जो कि किसी राष्ट्र की दिशा तय करते हैं। 5 अगस्त यानी आज का दिन हमें न्याय, संस्कृति, खेल और राष्ट्रीय एकता से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों की याद दिलाता है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में 5 अगस्त के महत्व की। 5 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। वर्ष 2019 में इसी दिन भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था और अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करने का निर्णय लिया था। ये भारतीय राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था का एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। इसके अलावा 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर देश भर की निगाहें अयोध्या पर टिकी थी और ये दिन आधुनिक भारत के सांस्कृतिक इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इतिहास के पन्नों में 5 अगस्त का दिन देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक

इतिहास से जुड़ी अनेक घटनाओं को याद दिलाता है। इसलिए ये दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं गीत।

श्रोताओ, सुबह सुहानी कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे हैं आज विशेष पर, क्या कुछ खास रहा 5 अगस्त के दिन। तो 5 अगस्त 2021 को भारत के खेल इतिहास में भी एक गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। ये 41 वर्षों के बाद ओलंपिक हॉकी में भारत का पहला पदक था और पूरे देश ने इस उपलब्धि का उत्साहपूर्वक स्वागत किया था। 5 अगस्त 1905 को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन की योजना को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाए थे। विभाजन औपचारिक रूप से 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। इस निर्णय के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी थी। आज ही के दिन चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अमरीकी अंतरिक्ष यात्री स्टीफन आर्मस्ट्रांग और बिवियोना इंजेन की प्रथम संतान के रूप में नील आर्मस्ट्रांग का जन्म हुआ था 5 अगस्त 1930 को। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले अमरीकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने हवाई यात्रों के प्रति रुचि बचपन से ही थी। तभी उनकी ये रुचि जाग गई थी जब उनके पिता उन्हें हवाई उड़ानों को दिखाने ले जाया करते थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही इन्हें पिता के साथ अपनी पहली हवाई यात्रा का अनुभव हुआ था। मात्र 15 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी फ्लाइट सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया था और विमान उड़ाना शुरू कर दिया था। इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक तथा एरोस्पेस इंजीनियर में परास्नातक की उपाधियां प्राप्त की थी और इस शिक्षा द्वारा उन्होंने जो विमान संचालन संबंधी तकनीकी कार्यकुशलता प्राप्त की, उसका लाभ उन्हें आगामी कई उड़ान अभियानों में मिला था।

भारत के इतिहास में 5 अगस्त का महत्व क्या है, क्या क्या कुछ खास रहा था आज के दिन, इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। 5 अगस्त 1947 को हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं वरिष्ठ पत्रकार का जन्म हुआ था। साहित्य अकादमी सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित वीरेन डंगवाल अपनी शक्तिशाली कविताओं के साथ साथ अपनी जनपक्षधरता, फकड़पन और यारवाश व्यक्तित्व के चलते बेहद लोकप्रिय थे। वीरेन डंगवाल दैनिक समाचार पत्र के संपादक भी रहे। उनका जन्म कीर्तिनगर टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में आज ही के दिन यानी 5 अगस्त 1947 को हुआ था। उनकी माँ एक मिलनसार धर्मपरायण गृहिणी थी और पिता स्वर्गीय रघुनंदन प्रसाद डंगवाल प्रदेश सरकार में कमिश्नरी के प्रथम श्रेणी अधिकारी रहे। उनकी रुचि कविताओं, कहानियों दोनों में रही। उन्होंने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर आदि, नैनीताल और अंत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। 1968 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और तत्पश्चात डीफिल की उपलब्धियां प्राप्त की। वीरेन डंगवाल एक ऐसे कवि थे जिन्होंने जिंदगी को उसकी पूरी लय के साथ जिया। पिछले कुछ समय से वे मुंह के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझते रहे। राम सिंह कविता से कविता जगत में मजबूत पहचान बनाने वाले वीरेन डंगवाल की कई कविताएं संग्रह प्रकाशित हुई हैं। अगर सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2004 में, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार 1994 में और शमशेर सम्मान 2002 में उन्हें मिला था। तो एक ब्रेक लेते हैं।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। मनोरंजन और जानकारियों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज स्तनपान के प्रति जन जागरूकता लाने के मकसद से अगस्त माह के प्रथम सप्ताह को पूरे विश्व में स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। स्तनपान सप्ताह के दौरान माँ का दूध के महत्व की जानकारी दी जाती है। नवजात शिशुओं के लिए माँ का दूध अमृत के समान है। शिशुओं को कुपोषण और अतिसार जैसी बीमारियों से बचाता है माँ का दूध। स्तनपान को बढ़ावा देकर शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। शिशुओं को जन्म से 6 माह तक केवल माँ का दूध पिलाने के लिए महिलाओं को इस सप्ताह के दौरान विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। स्तनपान शिशु के जन्म के पश्चात एक स्वाभाविक क्रिया है। भारत में अपने शिशुओं का स्तनपान सभी माताएं करवाती हैं, परंतु पहली बार मां बनने पर माताओं को शुरू में स्तनपान कराने हेतु सहायता की आवश्यकता होती है। स्तनपान के बारे में सही ज्ञान अभाव में जानकारी ना होने के कारण बच्चों में कुपोषण का रोग एवं संक्रमण से दस्त हो जाते हैं। माँ के दूध से आए साधारण जीवाणु बच्चे की आंत में पनपते हैं और रोगाणुओं से प्रतिस्पर्धा कर उन्हें पनपने नहीं देते। माँ के दूध में रोगाणुनाशक तत्व होते हैं। माँ की आंत में वातावरण से पहुँचे रोगाणु आंत में स्थित विशेष भाग के संपर्क में जाते हैं, जो उन रोगाणु विशेष के खिलाफ प्रतिरोधकात्मक तत्व बनाते हैं। माँ के दूध की विशेषताओं के बारे में महिलाओं को खास तौर पर विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान बताया जाता है और कहा जाता है कि मां के दूध में ज़रूरी पोषक तत्व, एंटीबॉडीज, हार्मोन प्रतिरोधक कारक और ऐसे ऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो नवजात शिशु के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, एक गीत सुनते हैं और उसके बाद फिर और बात करेंगे।

तो श्रोताओं, अब बात करते हैं कुछ मुख्य समाचारों पर। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 7 से 10 अगस्त तक कई जिलों के लिए भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और कुछ स्थानों पर सड़कें बाधित होने की भी खबरें हैं। बारिश के कारण फिसलन बढ़ने से एक वाहन दुर्घटना में चंबा में 2 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने पर्वतीय मार्गों पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए 259 सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हिमाचल निर्माता डॉ. बायस परमार की जयंती से जुड़े कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेताओं के बीच राजनीतिक बयानबाजी की चर्चा विषय रही। हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां अगले 12 से 24 घंटों के दौरान तेज बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है।

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ भ्याग।

0: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
1: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
0: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।
2: लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लहरू राम सांख्यान की आवाज में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अगला लोकगीत।

राकेश चंद की आवाज में गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का शुभ प्याग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को है अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे ओलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
4: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब

0: गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
2: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
3: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों केंद्र

0: शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
1: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन तो बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
0: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
2: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
3: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा कर रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी। हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवीं वरीयता दी गई है। यह चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में पांचवीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी।

0: राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, DGCA ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट UG काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, इंडिया फ्लैगशिप सिंक्स आफ्टर अटैक इन रेड सी, ऑल 13 इंडियन सेलर्स रेस्क्यूड, इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन कमर्शियल वेसल। Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy review this morning. Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for first round of NEET UG counseling 2026 to commence today. IMD warns of very heavy rainfall in Assam and Meghalaya today. And in badminton, PV Sindhu seeded 9th, while Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty get 5th seeding for BWF World Championships. And now the news in detail. An Indian-flagged commercial vessel, MSV Faiz Noore Olia, sank in the Red Sea after coming under attack off the coast of Yemen yesterday. All the 14 seafarers, including 13 Indian nationals who were on board the vessel, were rescued safely. We have a report.
3: According to reports, the Indian-flagged tanker was carrying oil from Saudi Arabia. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, said that the vessel was hit by a projectile near Yemeni waters, causing the vessel to capsize and sink. Mr. Sonowal said India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanized sailing vessel. He said the safety of our people is our supreme priority. Moreover, in a statement, Ministry of External Affairs, MEA, condemned the attack on the Indian-flagged vessel, saying the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. It said the targeting of commercial shipping in the region must end and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region must be restored at the earliest. The ministry said that the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities for the safety and security of the crew. With Anupam Mishra, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
2: India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide the reality. Briefing media in New Delhi External Affairs Ministry spokesperson Randhir

0: हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
1: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
0: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फरेब फिल्म का ये गीत।

0: करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म धड़कन का ये गीत। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडेकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें हैं। फिल्म है लाल दुपट्टा मलमल का।

अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में ये गीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, आपको बता दें कि फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने सुहाने में। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सपने साजन के का ये गीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में गाए सपने साजन के फिल्म के इस गीत के साथ ही गाने सुहाने कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं उस पड़ाव पर जहां आप सभी श्रोताओं को रहता है इंतज़ार आपके संदेश पढ़ने का और साथ ही आपकी पसंद का गीत सुनवाने का। तो सुबह के 9 बज चुके हैं, कार्यक्रम गीतांजलि का समय हो चुका है और आपको पता है आज बुधवार है और आज के दिन हम आपको सुनवाते हैं ईमेल और फेसबुक पर मैसेज जो आपने किए होते हैं, फरमाइश भेजी होती है, उन्हीं पे आधारित गीतों को हम आपको सुनवाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और सबसे पहले आपको बता दें कि आप सभी श्रोता भी हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और उसके लिए हमारी आईडी रहेगी musicmaildishala@gmail.com musicmaildishala@gmail.com। लेकिन तब तक हम पढ़ते हैं कि किन किन श्रोताओं ने हमें मैसेज किया है और सुनवाते हैं उनकी पसंद का गीत। तो सबसे पहली मेल है नरघोड़ा छत्तीसगढ़ से, कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी की। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अर्जनी ज्योति, प्रहलाद वर्मा, राजेंद्र वर्मा की। दत्तरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से ही हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, इन्होंने फरमाइश की है दीवाना फिल्म के इस गीत की।

बक्सर बिहार से हमें मेल आई है शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुमित रमेश साहू डुमराव। बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीवा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, इकबाल मस्तान, आसमा खातून अंसारी। राज पैलेस मौनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। और लंज से ललिता देवी, इन्होंने किसी भी गीत को सुनवाने की फरमाइश की है। साथ में हमें मेल आई है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। जेब्रा हिसार से वीरेंद्र, अभियान, सुरेंद्र, मनोज, रवि कुमार, राहुल, इन्होंने फरमाइश की है धरती फिल्म का गीत सुनने की। तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत।

म्यूज़िक मेल डीशाला gmail@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जसपुर उत्तराखंड से हमें मेल आई है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर की। इन्होंने कोई भी गीत सुनने की फरमाइश की है। फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव संबलपुर कांकेर से फरमाइश आई है। इन्होंने आपकी कसम फिल्म का ये गीत सुनने की फरमाइश की है। तो चलिए, आप सभी श्रोताओं के लिए हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।

आपके ईमेल और फेसबुक मैसेज पर आधारित कार्यक्रम आप सुन रही हैं। गीतांजलि कार्यक्रम में आपकी पसंद के गीत साथ में हम सुनवा रहे हैं आपको। और हमें मेल आई है दत्तरेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, इन्होंने कोई भी गीत सुनवाने की फरमाइश की है। अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक, धनुश्री,

श्याम कुंवर, इनकी मेल आई है हमें। और साथ में हैं शंकर लाल जायसवाल, जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से। शंकर लाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति, तो इन्होंने फरमाइश की है आंधी फिल्म का ये गीत सुनने की।

श्रोताओ, गीतांजलि कार्यक्रम जारी रहेगा प्रादेशिक समाचारों के बाद ही। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध है समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में एम्बुलेंस सड़क संपर्क के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित सड़क संपर्क पहुंचाना उद्देश्य। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए एचआरटीसी में 297 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल। आगामी विधानसभा सत्र में राज्य सरकार को विभिन्न जनहित मुद्दों और कार्यशैली के लिए घेरने की भाजपा विधायक दल ने बनाई रणनीति। आज शिमला में भाजपा विधायक दल करेगा विरोध प्रदर्शन। और प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना के प्रदेश के युवाओं को घर द्वार पर मिल रहा रोजगार। कुल्लू जिला में 300 मछुआरे हुए लाभान्वित। अब समाचार विस्तार से। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 259 सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती की गई है। राज्य सरकार द्वारा इसी वर्ष सहायक स्टाफ नर्सों की ये दूसरी बड़ी भर्ती है। इससे पहले इसी वर्ष जून महीने में भी 372 सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की गई थी। इन नर्सों की तैनाती से सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी उद्देश्य से चिकित्सा संस्थानों में आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने जीप योग्य व एम्बुलेंस संपर्क सड़कों के डिजाइन, निर्माण, प्रमाणन और रखरखाव के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये देश में अपनी तरह की पहली व्यापक व्यवस्था है जिसके माध्यम से प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित सड़क संपर्क सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्था में सड़क की चौड़ाई, सड़क की सतह, जल निकासी व्यवस्था, रिटेनिंग वॉल, ढलानों की सुरक्षा, सड़क सुरक्षा उपायों तथा नियमित रखरखाव से संबंधित स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं ताकि ये सड़कें सुरक्षित, टिकाऊ और लंबे समय तक उपयोग योग्य बन सके। प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, विभिन्न जनहित के मुद्दों पर राज्य सरकार की कार्यशैली सहित आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति बनाने को लेकर कल भाजपा विधायक दल की एक अहम बैठक शिमला में आयोजित हुई। भाजपा विधायक दल ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातार झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है और प्रतिशोध की भावना से विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। बैठक की जानकारी देते हुए भाजपा विधायक दल के सचिव रणधीर शर्मा ने बताया कि विधायक दल ने आगामी मानसून सत्र से जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती के साथ सदन में उठाने की रणनीति बनाई है, जिसमें आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, खराब कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, सरकार द्वारा बंद की गई विकास योजनाएं और मानसून से प्रदेश में चरमराई मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा शामिल किया गया है। इस बीच राज्य सरकार द्वारा प्रतिशोध की राजनीति, भाजपा प्रतिनिधियों पर झूठे मुकदमों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज शिमला में विरोध प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन की जानकारी देते हुए भाजपा के मीडिया प्रभारी करण नंदा ने बताया कि आज होने वाले प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित भाजपा विधायक दल शामिल होगा।
1: आज भारतीय जनता पार्टी एक शिमला में धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रही है। यह प्रदर्शन सीटीओ से लोअर बाजार होते हुए शेरे पंजाब तक जाएगा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की वर्तमान सरकार के खिलाफ एक रोष प्रकट किया जाएगा। जिस प्रकार से प्रतिशोध की राजनीति हिमाचल प्रदेश में चल रही है और लगातार भाजपा के विधायकों के ऊपर FIR बनाई जारी है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर तक धरना प्रदर्शनों का आयोजन भी करेगी।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंच सके। नई दिल्ली में अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक में चौहान ने कहा कि इथेनॉल से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना प्रदेश के युवाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत कुल्लू जिला में 300 मछुआरों को शामिल किया गया है, जिससे उन्हें घर द्वार पर ही रोजगार उपलब्ध हो पाया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
2: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना युवा किसान बागवानों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत युवा किसानों व बागवानों को मछली पालन शुरू करने के लिए ऋण दिया जाता है, जिस पर 40-60% तक का अनुदान भी दिया जाता है। योजना का उद्देश्य नए तालाबों का निर्माण व बागवानी के साथ साथ मछली पालन को बढ़ावा देना है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मछली पालकों को सस्ते दर पर 5 लाख रुपए तक का ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा मछुआरों व मत्स्य पालकों को 5 लाख तक के दुर्घटना बीमा के अंतर्गत भी लाया गया है। कुल्लू जिला में इस समय मत्स्य विभाग के पास 300 मछुआरे हैं, जिन्हें इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: राज्य सरकार ने इको फ्रेंडली और आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए HRTC के बेड़े में 297 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया है, जिसमें से 25 इलेक्ट्रिक बसें सिरमौर जिला में चलाई जाएगी। ये बात संसदीय कार्य व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नाहन में ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद कही। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों से यातायात प्रणाली पर्यावरण अनुकूल बनेगी, बल्कि शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवा भी सशक्त होगी। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शुमार लाहौल स्पीति जिला की चंद्रताल झील को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया है। झील क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग सहित सेव चंद्रताल सोसाइटी और हिलिंग हिमालयाज स्वयंसेवी संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से ये अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
3: विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शुमार चंद्रताल को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, सेव चंद्रताल सोसाइटी और हीलिंग हिमालयस के संयुक्त प्रयास से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान चंद्रताल मार्ग से 548.7 किलोग्राम ठोस कचरा एकत्र कर सुरक्षित निस्तारण के लिए भेजा गया। इससे पहले कैंप साइट संचालकों के साथ आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में ठोस और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के साथ प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के नियमों की जानकारी दी गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से लाहौल स्पीति में स्वच्छता बनाए रखने में सक्रिय सहयोग की अपील की है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: प्रदेश

0: में मानसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी है। आज भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा और मंडी जिला में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इधर लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में आज और कल दो दिनों के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी कर दी गई है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। 10 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर, 2 माह में लागू होगी नई नीति शीर्षक से अमर उजाला लिखता है, नई स्वास्थ्य बीमा नीति में 10 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे पात्र परिवार। प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है, बहू के निजी मकान में सास को भी रहने का अधिकार। शिमला रामपुर सड़क होगी अब 4 लेन, केंद्र सरकार ने मंजूर किए 73 करोड़ रुपए, शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, बागवानों को मिलेगा लाभ, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तैयार करेगा डीपीआर। दिव्य हिमाचलवाद हिमाचल दस्तक की एक जैसी सुर्खी है, हिमाचल में चिट्टे की अब तक की सबसे बड़ी खेप शिमला में बरामद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में एम्बुलेंस संपर्क सड़क के डिजाइन, निर्माण और रख रखाव के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी, दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित सड़क संपर्क पहुंचाना उद्देश्य। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए HRTC में 297 इलेक्ट्रिक बसें हुई शामिल। आगामी विधानसभा सत्र में राज्य सरकार को विभिन्न जनहित मुद्दों और कार्यशैली के लिए घेरने की भाजपा विधायक दल ने बनाई रणनीति, आज शिमला में भाजपा विधायक दल करेगा विरोध प्रदर्शन। और प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना के प्रदेश के युवाओं को घर द्वार पर मिल रहा रोजगार, कुल्लू जिला में 300 मछुआरे हुए लाभान्वित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और 9:30 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि, और गीतांजलि कार्यक्रम में हम पढ़ रहे हैं आपके संदेश और आपकी फरमाइश जो आई है वो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। तो अगली मेल हमें आई है ऋषि धीमान की। सुप्रभात, हम आपका कार्यक्रम कांगड़ा जमानाबाद से सुन रहे हैं पूरे परिवार के साथ। हम हैं सानवी, मानविक, श्वेता, ऋषि और पूरा धीमान परिवार। इन्होंने फरमाइश की है चुनरी चुनरी बीबी नंबर 1 का ये गीत सुनने की। अभिजीत और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।

श्रोतो, आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे पास समय जो होता है वो सिर्फ एक घंटा है, उसमें भी शायद 50 मिनट हमें मिलते हैं, तो इसमें हम, क्योंकि बहुत सारी मेल हमें आई हैं गाने सुनने के लिए, तो सभी की पसंद हम आज नहीं सुनवा सकते, लेकिन कुछ गाने हम आपको सुनवा सकते हैं, और जिन्होंने भी मेल की है नाम हम उनका ज़रूर पढ़ेंगे, क्यों, और कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जिन्होंने लिखा है कि चाहे गीत आप कोई भी सुना दें लेकिन हमारे नाम जो हैं वो ज़रूर अनाउंस कर दें, तो ज़रूर हम सभी के नाम अनाउंस कर रहे हैं, जैसे जो भी मेल हमारे पास आ रही हैं हम सभी का नाम अनाउंस कर रहे हैं। तो ज़ेब्रा हिसार से वीरेंद्र भ्याण सुरेंद्र मनोज, इन्होंने हमें मेल की है। कोटा सिटी बरका काना से अफजाल ताज शाहीन सुल्ताना सोनू तस्नीम निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजाल मलिक रुपेश संघई महेश संघई प्रज्ञे संघई और पूरा संघई परिवार, साथ में अफजाल ताज इन्होंने फरमाइश की है सच्चाई फिल्म के इस गीत की। तो चलिए आप सभी श्रोताओं के लिए हम सुनवा रहे हैं ये गीत।

झांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू बब्बू की। ये लिखते हैं प्रोग्राम गीतांजलि पेशकर्ता को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपको भी जी हमारा नमस्कार।

श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं गीतांजलि कार्यक्रम, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपकी ईमेल्स पर, और जो गीत आपने फरमाइश किए हैं वो हम आपको सुनवा रहे हैं। तो आपको बता दें, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह, आप सभी ने फरमाइश की है नीलकमल फिल्म का ये गीत सुनने की।

गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी, इन्होंने कोई भी गीत सुनवाने की फरमाइश की है। और पठानकोट से ज्योत्सना जी की मेल आई है हमें, ओपी नैयर के का कोई भी गीत सुनवाने के लिए इन्होंने कहा है। तो लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश का गीत।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: म्यूजिक मेल dshala@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए। यशमित, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, उनकी फरमाइश आई है राजपूत फिल्म का ये गीत सुनने के लिए। चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, शुभचंद्र बजाज, कालका से बिट्टा बजाज, इनकी मेल आई है। ये लिखते हैं कि धौलाधार पर्वतमाला की गोद में बसा आपका खूबसूरत हिल स्टेशन पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। बर्फ से ढकी धौलाधार पर्वतमाला सुबह के समय सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकती है। जी बिल्कुल, और उनको देखते हुए उदास हुआ शख्स सब कुछ भूल जाता है। हालांकि उदासी तो वहाँ कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन जो लोग मैदानों से आपके यहाँ आते हैं तो अपना मूड बदलने के लिए या उदासी खत्म करने के लिए ही तो आते हैं। कभी कभी तो नीचे गर्म मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को सुखद भाव आता है कि आप सब प्रकृति की गोद में बैठे हैं, प्रकृति की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल शुक्रिया मेल करने के लिए, और बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत ही ब्लेस्ड हैं हम लोग जो यहाँ रहते हैं।

0: गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। तो आपको बता दें कि आज आप सुन रहे हैं आपके ईमेल पर भेजी गई फरमाइश के गीत। और जो श्रोता अभी तक जिन्होंने मेल नहीं की है और अभी अभी अगर अपना रेडियो सेट ऑन किया है तो उनको बता दें musicmaildishala@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दिलवाले फिल्म का, जिसके फरमाइश करता है शाहपुर से शिवेन। और श्रोताओं, आपको एक बात और हम कहना चाहते हैं कि कुछ हमारे श्रोता ऐसे हैं जो लिंक भेज रहे हैं गानों का, तो आप लिंक ना भेजकर गानों की, जो भी गाना आप सुनना चाहते हैं उसकी फिल्म का नाम और उस गीत के बोल आप लिख सकते हैं।
1: इंसान हो या परी हो तुम,

ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हमें मेल आई है। रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ये लिखते हैं कि प्रस्तुतकर्ता जी सादर नमस्कार। तो आपको भी हमारा नमस्कार। और आपने फरमाइश की है मेरा नाम जोकर फिल्म के इस गीत की, तो चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। और नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हमें मेल आई है पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सुपान ताइडे, आशीष मुरहेकर, इन्होंने अपनी फरमाइश भेजी है। तो अब आप सभी श्रोताओं से हम ये कहना चाहते हैं कि समय बिल्कुल कम है, तो अब हम किसी भी और श्रोता की फरमाइश का जो गीत है उसको नहीं सुनवा सकते। अगले कार्यक्रम में आपकी मेल ज़रूर शामिल की जाएगी और आपकी पसंद का गीत ज़रूर सुनवाया जाएगा।

तो श्रोताओ, अगर आप भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर मेल करें musicmail@gmail.com पर, और आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी की जाएगी। और आज के गीतांजलि कार्यक्रम में बस इतना ही, अनुमति दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों का कारवां।

गीतों का कारवां कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि एकता का नमस्कार। तो आइए कुछ पल के लिए अपनी दैनिक भागदौड़ से टाइम निकालकर सुरों की हसीन सी दुनिया में खो जाएं। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

मोहित चौहान और अंतरा मित्रा के युगल स्वरों में ये गीत सुना आपने फिल्म राजनीति से। संगीत था प्रीतम का और इस गीत को लिखा था इरशाद कामिल ने। लीजिए अब अगला गीत प्ले कर रहे हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, साधना सरगम और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म है सलामे इश्क। गीतकार समीर और संगीतकार हैं शंकर महादेवन और एहसान लॉय।

गीतों का कारवां कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान की मधुर सी आवाज में आजा नचले फिल्म से ये गीत। इस गीत को गाया है सुनिधि चौहान ने और गीत के जो बोल लिखे हैं वो पीयूष मिश्रा ने लिखे हैं और धुन बनाई है सलीम सुलेमान ने।

गीतों का कारवां कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं विशाल और शेखर के संगीत निर्देशन में जगदीप साहनी की शब्द रचना को फिल्म सलाम नमस्ते से। इस गीत को गाया है वसुंधरा दास और कुणाल गांजेवाल ने।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं बंटी और बबली फिल्म का ये गीत। गीत को गाया है अलीशा चिनाए और शंकर महादेव देवन ने। गीतकार गुलजार और संगीतकार है शंकर एहसान लॉय।

अभी आप सुन रहे थे गीतों का कारवां, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है पहाड़ों के सुर। सभी सुनने वालों को एकता का नमस्कार। लोकगीतों के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अजय सिंह के गाए इस लोकगीत से।

पहाड़ों के सुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब करनैल राणा की मधुर आवाज में आपको सुनवा रहे हैं ये लोकगीत।

3.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम में अगला लोकगीत सुनवा रहे हैं ऋषि की आवाज़ में।

कुमारी सोना और सखियों की आवाज़ों में अभी ये लोकगीत सुना। पहाड़ों के सुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आखिरी लोकगीत शामिल कर रहे हैं कृष्णलाल सहगल का गाया हुआ।

0: के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
1: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
0: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 259 सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती की गई है। राज्य सरकार द्वारा इसी वर्ष सहायक स्टाफ नर्सों की ये दूसरी बड़ी भर्ती है। इससे पहले इसी वर्ष जून महीने में भी 372 सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की गई थी। इन नर्सों की तैनाती से सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी उद्देश्य से चिकित्सा संस्थानों में आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, विभिन्न जनहित के मुद्दों पर राज्य सरकार की कार्यशैली सहित आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति बनाने को लेकर कल भाजपा विधायक दल की एक अहम बैठक शिमला में हुई। भाजपा विधायक दल ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातार झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है और प्रतिशोध की भावना से विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। बैठक की जानकारी देते हुए भाजपा विधायक दल के सचिव रणधीर शर्मा ने बताया कि विधायक दल ने आगामी मानसून सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती के साथ सदन में उठाने की रणनीति बनाई है, जिसमें आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, खराब कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, सरकार द्वारा बंद की गई विकास परियोजनाएं और मानसून से प्रदेश में चरमराई मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा शामिल किया गया है। इस बीच राज्य सरकार द्वारा प्रतिशोध की राजनीति, भाजपा प्रतिनिधियों पर झूठे मुकदमों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज शिमला में विरोध प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन की जानकारी देते हुए भाजपा के मीडिया प्रभारी करण नंदा ने बताया कि आज होने वाले प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित भाजपा विधायक दल शामिल होगा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शुमार लाहौल स्पीति जिला की चंद्रताल झील को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया है। झील क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग सहित सेव चंद्रताल सोसाइटी और हिलिंग हिमालया स्वयंसेवी संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से ये अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शुमार चंद्रताल को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, सेव चंद्रताल सोसाइटी और हीलिंग हिमालयस के संयुक्त प्रयास से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान चंद्रताल मार्ग से 548.7 किलोग्राम ठोस कचरा एकत्र कर सुरक्षित निस्तारण के लिए भेजा गया। इससे पहले कैंप साइट संचालकों के साथ आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में ठोस और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के साथ प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के नियमों की जानकारी दी गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से लाहौल स्पीति में स्वच्छता बनाए रखने में सक्रिय सहयोग की अपील की है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: चंबा जिला में मेहला के पास आज सुबह एक निजी कार पर पहाड़ी से अचानक भारी पत्थर गिरने से एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। मणि महेश यात्रा पर जा रहे पंजाब के इस युवक की गाड़ी पर पहाड़ी से एक विशाल पत्थर आकर गिरा, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। चंबा जिला की विश्व प्रसिद्ध मणि महेश यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। इसके तहत प्रतिदिन केवल 5,000 श्रद्धालुओं को यात्रा पर जाने की अनुमति मिलेगी। यात्रा के प्रथम चरण में 25 से 27 अगस्त तक की यात्रा के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार ऑनलाइन पंजीकरण के बिना यात्रा मार्ग पर प्रवेश बंद कर दिया है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता लगातार जारी है। आज भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा और मंडी जिला में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इधर खराब मौसम के मद्देनजर सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में आज

0: और कल 2 दिनों के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार हो रही वर्षा से किन्नौर जिला में बसपा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कुप्पा बैराज बांध से आज सुबह अतिरिक्त पानी चरणबद्ध तरीके से छोड़ा गया है। बांध प्रबंधन ने नदी के साथ लगते इलाकों में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है और नदी क्षेत्र से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर बाद 3 बजे। नमस्कार।
1: आकाशवाणी शिमला से अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश हैं कवालियां।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कवालियां। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं निकाह फिल्म से ये कवाली। इसे गाया है महेंद्र कपूर, सलमागा और आशा भोंसले ने।

अभी आप सुन रहे थे कवालियाँ, FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर जी ने। लिखते हैं,
2: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
1: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओ, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता।
2: जी
1: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
2: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया, कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
2: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
1: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
2: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
1: विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
2: बिल्कुल सही कहा जी जी। अब तो लोग क्या, विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
1: जी बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देख कर ही उठते हैं।
2: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता।
1: जी वो तो है,
2: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है।
2: जी
1: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे।
2: जी
1: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
2: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा एक महीने बाद है, विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है, मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए जी जी क्या होगा।
1: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
2: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे, पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं
1: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
2: देखते देखते एक घंटा क्या, कई घंटे गायब हो गए
1: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
2: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद
1: और नोटिफिकेशन भी बंद।
2: बिल्कुल, नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल बोलेगा।
1: क्या बोलेगा?
2: मुझे भी देख लो।
1: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो विमलेश जी इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
2: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय।

0: है।
1: वो कैसे?
0: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है। इस विकल्प को चालू कर दें। वहां आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं। इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
1: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के ऐप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं।
0: जी,
1: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे ऐप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें, ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
0: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
1: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
0: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
1: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं, और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
0: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
1: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
0: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, मिलेंगे फिर एक
0: नई जानकारी के साथ।
1: श्रोताओं, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
0: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है परीक्षा।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
2: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहाँ के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
3: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
4: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
3: जी महाराज।
5: महाराज,
4: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
5: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
4: दीवान साहब।
5: महाराज,
4: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
5: आज्ञा दीजिए महाराज। कैसी शर्त?
4: शर्त ये है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले

0: राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
1: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
2: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत, अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप, श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए, आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
3: ये मैंने दिया पास। अरे दौड़ो दौड़ो और तेज दौड़ो।
4: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, उसे पास देना चाहिए।
3: लगता है खुद ही गोल करके मानेगा। अभी छीनता हूँ गेंद उससे।
2: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
5: आज खेल में बड़ा मजा,
6: बहुत मजा आ गया। यार गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
7: हाँ, गोल हो गया। किसी का
2: दिल खुश हो गया। तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी। उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
8: ए, इधर क्या देख रहे हो?
1: साहब, गाड़ी फंस गई है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
9: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
3: चलो साथियों, देर हो रही है, दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
6: चलो चलो चलो।
1: अरे भाई निकलो। लेकिन
9: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
2: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
10: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
1: हाँ, ठीक है,
10: कोशिश करते
1: हैं। हाँ,
9: है, है, है, है, है, है, है,

0: निकल गया।
1: और हुआ भी यही, युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
2: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
3: जी बाबा।
2: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
3: तो क्या इनाम देते हो?
2: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
1: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है। राज दरबार सजाया गया।
3: पूरा एक महीना हो गया है। आज फैसला।
4: तुम्हें क्या लगता है?
5: महाराज आ रहे हैं।
3: अरे अरे,
5: सुजान सिंह जी भी आ गए।
1: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
6: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ साह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
3: सही बात है।
6: उसका संकल्प दृढ़ है। वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
3: बिल्कुल सही कहा,
6: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
1: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
3: अच्छा इंसान, हमेशा सही काम करेगा।
2: बिल्कुल।
1: और देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ साह को बधाई दे रहे थे।
7: बधाई हो, बधाई हो पंडित जी, बहुत खूब चुनाव किया।
8: महाराज की
9: जय हो।
8: महाराज की
9: जय हो।
8: महाराज की
9: जय हो।
8: महाराज की
9: जय हो।
1: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
10: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मित्र की सहायता।
11: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहे।
12: एक जंगल था। उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दयालु था। वो सभी पक्षियों की सहायता करता था। जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था।

0: कौवे को भूख लगी। वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
1: ये शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा। शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
0: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,
1: सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो।
0: सब पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था। उसे भूख भी लग रही थी। वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूँ। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
1: अच्छा, अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो, सुनो भाइयों, सुनो।
2: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते। हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
1: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है। वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
2: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं। तुम हमारी चिंता न करो।
0: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: अरे मैं तो तुम सबको बता गया था, फिर भी तुम सब

0: इस जाल में कैसे फंस गए?
1: एक जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ। हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा देखो, शिकारी आ ही रहा होगा, लेकिन तुम सब साहस से काम लो। साहस और एकता से बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तुम सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते हो।
1: हाँ ठीक कहते हो कौवे भाई, ठीक कहते हो, ऐसा ही करेंगे।
2: कबूतरों ने ऐसा ही किया, सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले। कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला,
0: चूहे भाई, चूहे भाई।
3: क्या?
0: तुम्हारा मित्र कबूतर एक शिकारी के जाल में फंस गया है।
3: कहाँ है मेरा मित्र? मुझे अभी उसके पास ले चलो।
0: चूहे भाई, वो देखो, वहाँ सामने वो एक जाल में फंसा हुआ है। उसके साथी कबूतर भी जाल में फंसे हुए हैं।
3: तो चलो कौवे भाई, उनके पास चले। मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ।
0: हाँ हाँ, चलो
3: चलो चलो कौवे भाई,
0: चलो चलो।
2: चूहा और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुंचे।
1: चूहे भाई, जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो। शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है।
3: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
1: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
2: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया, सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया। फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए। चूहा अपने बिल में चला गया, कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया। वो आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। आपके मनोरंजन के लिए हम लेकर आए हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत दिल आशना है फिल्म से, पंकज उदास की आवाज।

0: एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

उषा खन्ना की आवाज़ में ये गीत आपने लिया था फिल्म साजन बिना सुहागन से। नीला आकाश फिल्म का ये गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में।

0: एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सैनिक भाइयों, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम कहानी फिल्म से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में।

कि हम बेकदर बेवफा ही सही बड़े शौक से।

तो सैनिक भाइयों, इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नर्मदा को अनुमति दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 12:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुनो सखी।

कार्यक्रम सुनो सखी सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को आपकी अपनी रेडियो सखी एकता का नमस्कार। सखियों, इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं हम अपने घर

0: गृहस्थी से जुड़े विषय आज के कार्यक्रम में भी लेकर आए हैं आपके लिए ढेरों जानकारियां। तो फटाफट से जुड़िए आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में। सखियों, कहते हैं दुनिया में सबसे पहला रिश्ता माँ और बच्चे का होता है, एक ऐसा रिश्ता जो सांसों से जुड़ा होता है और एहसासों से बंधा होता है। तो आज माँ और बच्चे के इसी रिश्ते पर आधारित है हमारा विषय। आज हम जानकारी देंगे आपको विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में, और इसके लिए जानकारी देने हेतु हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हैं डॉक्टर अनुराधा, जिला कार्यक्रम अधिकारी जो कि कार्यरत हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा कार्यालय में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए।
0: डॉक्टर साहब, तो शुरू करते हैं जानकारी के सिलसिले को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है?
1: जी, जो विश्व स्वास्थ्य स्तनपान सप्ताह है, ये 1 से लेके 7 अगस्त तक मनाया जाता है जी। और ये तकरीबन 1992 से हर साल मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो स्तनपान के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, कि लोगों को जागरूक किया जाए कि इसका महत्व क्या है, इसे कब से शुरू करना चाहिए और क्यों करना चाहिए जी। जिससे कि हम शिशु का मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर जो है, और कुपोषण को कम कर सकें, और स्तनपान से जुड़ी हुई जितनी भ्रांतियां हैं उनको दूर कर सकें
0: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब हम अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे जिले में इसे किस प्रकार मनाया जा रहा है।
1: जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 से 7 तारीख तक जो है इस सप्ताह को मनाया जा सकता है। आज के दिन जो है हमारे ज़िला स्तरीय गतिविधि जो है, जागरूकता गतिविधि, वो आयोजित की जा रही है CMO ऑफिस के सभागार में, जहाँ पे हमने आशा वर्कर्स को एकत्रित किया है, साथ में गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को जो कि स्तनपान करा रही होती हैं बच्चों को, तथा उनके साथ उनके परिवारजनों को इकट्ठा किया है, ताकि उनको स्तनपान के बारे में जितनी भ्रांतियाँ हैं उनको दूर कर सकें और उसका महत्व उनको बताया जा सके। इसमें जो है हम उनको मॉडल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराते हैं, स्तनपान कैसे कराया जाता है। तो वहाँ पे हमारा पूरा सेटअप होता है जिसके थ्रू जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आजकल जो युवा लड़कियाँ हैं वो ये चाहती हैं कि अगर हम दूध पिलाएंगी तो हमारी फिगर जो है खराब हो जाएगी, तो ये जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। आप अब हमें ये बताइए कि स्तनपान कब शुरू करना चाहिए और कब तक माँ का दूध जो है बच्चे के लिए ज़रूरी होता है?
1: जी, तो सबसे पहले तो माँ का दूध जो है वो पहला आहार है बच्चे के लिए, पहला टीकाकरण है
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने,
1: और पहली सुरक्षा है वो बच्चे की। सो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चे को जो है माँ के पेट पे रख दिया जाता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के लिए जी। और उसके बाद अगर आपने सुना हो कि ब्रेस्ट क्रॉल नाम की एक चीज़ होती है, कि बच्चा खुद ब्रेस्ट की तरफ जो है क्रॉल करके और स्तनपान शुरू कर देता है, तो जैसे ही डिलीवरी होती है उसके 1/2 घंटे से 1 घंटे के बीच में जो है स्तनपान शुरू कराना अति आवश्यक है। जो शुरुआती दौर में जो दूध आता है वो पीला गाढ़ा दूध होता है, जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ये कोलोस्ट्रम जो है बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, बहुत न्यूट्रिटिव होता है, ये बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। अक्सर लोगों में ये भ्रांतियाँ होती हैं कि जो ये पहला गाढ़ा दूध होता है इसको निकाल देना चाहिए।
0: पुराने जमाने में जो हमारी दादी नानी थी ये मानती थी
1: जी। तो लेकिन ये जो दूध है ये ज़रूर पिलाना चाहिए बच्चे को। सो सबसे पहले तो 1/2 घंटे और 1 घंटे के बीच में स्तनपान शुरू कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि पहले 6 महीने जो है बच्चे को स्तनपान के अलावा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, ना पानी, ना शहद, ना घुट्टी, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसमें पानी भी मिल रहा है, उसमें खाना भी मिल रहा है, सब कुछ बच्चे को मिल रहा है। तो पहले 6 महीने सिर्फ स्तनपान, 6 महीने के बाद जो है पूरक आहार, लेकिन स्तनपान फिर भी जारी रहेगा। एटलीस्ट 2 साल तक जो है वो बच्चे को स्तनपान कराना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ पूरक आहार 6 महीने के बाद शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, पर जो हमारी कुछ सखियां हैं जो जॉब करती हैं, तो 6 महीने तक तो मैटरनिटी लीव जो है मिलती है, पर कुछ सखियों को नहीं भी मिलती है, तो वो 6 महीने के बाद कैसे बच्चों को

0: दुकान जो है जारी रख सकती हैं।
1: देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो सुबह वो पिला के आएंगी, ठीक है, और साथ में उनको ये सिखाना ज़रूरी है कि दूध को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है या पंपिंग कैसे की जाती है, ब्रेस्ट में से दूध जो है निकाल के स्टोर कैसे किया जाता है। तो अगर वो उस चीज़ को सीख लेती हैं और अगर घर पे रख के आती हैं, रेफ्रिजरेटर में भी रख सकती हैं, और अगर बाहर रखना चाहें तो 4 घंटे तो मिनिमम वो रह सकता है दूध, और पीछे से घर पे जो भी हैं उनके बच्चे का ध्यान रखने के लिए वो कटोरी चम्मच से जो है उस दूध को बच्चे को दे सकते हैं। जिस वक्त माँ घर पे नहीं है उस वक्त ये किया जा सकता है। अगर किसी का घर नज़दीक है तो वो बीच में ब्रेक लेके बच्चे को फीड कराने आ सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं जिसके साथ ये चीज़ फॉलो की जा सकती है। पहला है एक्सप्रेस करना दूध, जो कि आना चाहिए तरीका कि किस तरह से निकाला जाता है, कैसे उसे स्टोर करना है और कब कब देने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में अगर नज़दीक है तो आप जाके बच्चे को फीड करा सकते हैं, कोई बच्चे को ला सकता है अगर आपके पास।
0: जी बिल्कुल, तो सही कहा कि अगर बच्चे को ला सकते हैं तो वो बच्चा भी माँ के पास जाकर जो है दूध पी सकता है।
1: जी बिल्कुल।
0: डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहेंगे कि स्तनपान का क्या महत्व है और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके।
1: जी तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि स्तनपान जो है वो ना केवल बच्चे के लिए बट माँ के लिए भी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है,
0: जो भावनात्मक एक रिश्ता बनता है,
1: हाँ जी, वो बनता है स्तनपान के थ्रू। तो बच्चा जो है वो माँ के साथ कनेक्ट होता है, साथ में पहला न्यूट्रिशन उसका, सबसे पहला पोषण जो है वो स्तनपान है। तो जो चीज़ जो फ़ायदा हो रहा है उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि किस चीज़ से बचा रहा है वो। तो अगर पोषण पूरा आपको सिर्फ दूध से मिल जा रहा है तो बच्चा कुपोषित नहीं रह सकता। अगर माँ उसको पूरा अपना दूध पिला रही हैं तो वो बच्चा कुपोषित नहीं रह सकता है, तो ये कुपोषण को कम करता है। दूसरी चीज़ कि बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, जो विकास होता है, ठीक है, वो इससे हो रहा है। तो अगर वो बच्चे को थ्रू आउट 6 महीने और 2 साल तक अगर दूध पिला रहे हैं तो जिन जो शब्द हम सुनते हैं कि स्टंटिंग, जैसे कि बौनापन होता है, ये बच्चे में होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, ये बहुत दुबले पतले होते हैं बच्चे, वेस्टिंग, वो भी जो है वो कम हो जाता है। इन बच्चों में वो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर ये जो है एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, जिसमें कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनसे बच्चों को बचाता है। तो जो आप हम कहते हैं ना कि वैक्सीनेशन हम शुरू करते हैं, टीकाकरण बच्चे का शुरू करते हैं, तो जब आपने पहला दूध अपना शुरू कर दिया तो आपने पहला टीका उसको उसी के साथ दे दिया। तो बहुत सारी बीमारियां जो बच्चों का की मृत्यु का कारण बनती हैं, जैसे निमोनिया है, दस्त लगना है और बहुत सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस हैं, उन सबसे जो है ये दूर रखता है बच्चे को। तो बच्चे के बार बार बीमार होने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं।
0: जी, आपका कहने का मतलब है इससे बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग बनती है।
1: जी बिल्कुल, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है।
0: डॉक्टर साहब, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी कि कई बार माताएं क्या करती हैं कि अपने दूध के साथ साथ बच्चों को डिब्बा बंद दूध भी पिलाती हैं, ये कहाँ तक उचित है?
1: जी देखिए, जितना भी बाहर की कोई भी चीज़ है वो बिल्कुल भी बच्चे को देने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत से लेके 6 महीने तक तो मैंने पहले ही बताया कि आपको पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो पूरक आहार देना है वो घर में बनी चीज़ें होती हैं, उसमें डिब्बे का प्रयोग करने की, डिब्बे का दूध की का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ माँ का दूध ज़रूर चलेगा, लेकिन घर की चीज़ें उनको मैश करके, जैसे 6 महीने के बाद शुरू कर देते हैं ना देना कि दाल बनाई जैसे, तो उसको मैश कर दिया और उसको केला मैश कर दिया, जो भी फ्रूट्स भी देने, वो सारी घर की चीज़ें होंगी। डिब्बा बंद जो दूध है उसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। जो बच्चों को फ़ायदे हैं उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा है बौद्धिक क्षमता का और बौद्धिक विकास का। तो जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनमें बौद्धिक विकास जो है वो बेहतर होता है, और जो बच्चे डिब्बा बंद दूध पीते हैं उनका बौद्धिक विकास उनके कंपैरेटिवली कम होता है। इसी तरह से जो डिब्बा बंद दूध बच्चा पीता है उसमें मोटापा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो दूध माँ का पीता है बच्चा वो ज़्यादा फिट होता है, ज़्यादा स्ट्रोंग होता है।
0: माँ को भी तो दूध पिलाने के कुछ फ़ायदे हैं ना डॉक्टर साहब?
1: जी बिल्कुल।
0: वो भी हमारे श्रोता सखियों के साथ ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि आजकल बहुत सी भ्रांतियाँ हैं कि माँ भी

0: जाती है कि हम ज़्यादा दूध बच्चे को ना पिलाएं कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा या हम बिजी हैं, तो क्योंकि स्तन कैंसर भी आप जानते हैं कि निरंतर बढ़ रहा है।
1: जी जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि माँ और बच्चे दोनों के लिए फ़ायदे हैं, तो माँ के फ़ायदों की अगर बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि प्रसव की जिस पीड़ा से वो गुजर के निकली होती हैं
0: जी
1: उसकी रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है अगर आप स्तनपान कराते हैं तो माँ की रिकवरी जो है वो बढ़ाने के लिए स्तनपान फ़ायदेमंद है। बहुत सारे कैंसर्स हैं जैसे कि स्तन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर जो है,
0: जी
1: इनकी संभावनाएं भी कम हो जाती हैं अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती हैं। जो हम कहते हैं उच्च रक्तचाप की समस्या आती है महिलाओं को, उसमें भी कमी देखी गई है उन महिलाओं में जो कि स्तनपान कराती हैं। इसके साथ एक बहुत आसानी होती है माँ को कि बच्चे का पूरा दूध उनके पास है ना,
0: जी
1: उनका सारा भोजन उनके पास है, उनको कुछ साथ में इकट्ठा लेने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना ईज़ ऑफ फीडिंग,
0: हाँ, कहीं
1: कि
0: जाना
1: कहीं
0: है तो कोई सामान ज़्यादा
1: सामान
0: ले।
1: नहीं लेके
0: जी
1: जाएंगे। जी
0: डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहेंगे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्तनपान के करवाने के लिए क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
1: जी देखिए ऐसा है, चुनौतियाँ जो हैं वो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जिनके साथ हमें जूझना पड़ता है या महिलाओं को जूझना पड़ता है जहाँ तक हम बात करें स्तनपान से संबंधित। तो इसमें जो ग्रामीण परिवेश में है बहुत सारी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई होती हैं इसके साथ, जिसमें कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि शुरुआती जो दूध है उसको नहीं देना है बच्चे को, या फिर इस बच्चे को दूध पूरा नहीं हो रहा है, अगर बच्चे को दूध पूरा नहीं हो रहा है तो इसको ऊपर से दूध देना पड़ेगा। ग्रामीण परिवेश में अक्सर ये चीज़ देखी जाती है, हालांकि शहरी क्षेत्रों में भी अक्सर देखते हैं। अब इसका मुख्य कारण ये होता है कि उनको ढंग से दूध पिलाना आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है दूध थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन दूध बनना जो है वो मस्तिष्क से होता है, दिमाग से होता है, ब्रेन से होता है।
0: जी
1: ये ऐसा नहीं होता है कि ब्रेस्ट में भरा पड़ा है दूध और वो आता रहेगा, ये दिमाग से होता है। तो अगर जितना बच्चा दूध पीता है उतना दूध और बनता है, अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, जो कि हमारी तकनीकें होती है कि किस तरह से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, प्रभावी ढंग से कैसे पिलाते हैं, अगर वो चीज़ नहीं कर पा रही है महिला तो उसमें हो सकता है दूध थोड़ा बहुत कम आए। अब इसमें क्या होगा कि उसको कहा जाएगा दूध तुम्हें कम हो रहा है, अब इसको ऊपर का दूध देना शुरू कर देते हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा कि ऐसा ही अक्सर घरों में होता है।
1: हाँ, तो उसकी तह तक कोई नहीं जाता कि क्यों दूध कम हुआ, लेकिन ऊपर से दूध देना शुरू कर देते हैं। फिर गांव के परिवेश में ये भी एक बहुत धारणा है कि शुरू में शहद देना है, जिस दिन पंजाब किया जाएगा उस दिन उसको शहद चटाया
0: नहीं, जब
1: जाएगा,
0: बच्चा जन्म लेता है उसी टाइम चटाया
1: हाँ
0: जाता
1: उस टाइम
0: है।
1: पे भी चटाया जाता है। सो ये जो भ्रांतियाँ हैं ये अक्सर ग्रामीण परिवेश में हम देखते हैं, और जहाँ तक शहरी परिवेश है वहाँ पे अक्सर हम ये देखते हैं कि माताएं जो हैं वो जॉब करती हैं,
0: जी
1: काम पे जाती हैं, तो कार्यस्थल पे जो है बच्चे को अगर वो ले जाना भी चाहें तो उनको वो जगह, वो प्राइवेसी वो नहीं मिल पाता जहाँ पे वो बच्चे को निजता से जो है स्तनपान करा सकें।
0: जी
1: और जो छुट्टी है वो अक्सर आप देखें कई जगह पे 6 महीने भी नहीं होती है,
0: जी जैसे हमने पहले ही बोला कि कुछ महिलाओं को तो नहीं मिल पाती है।
1: नहीं मिल पाती है, तो उनको भी लेकिन स्तनपान कराना तो ज़रूरी है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि उनको बच्चे को स्तनपान छुड़वाना पड़ता है, और जब वो घर जाती हैं सिर्फ तब स्तनपान होता है, बाकी टाइम पे वो कोई और चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। तो इसमें जो है सरकार जो 6 महीने का छुट्टी का प्रावधान है वो बहुत बढ़िया है, जिसमें कि एटलीस्ट 6 महीने के लिए उनको एक वक्त मिल जाता है जिसमें कि बच्चे को पूर्णतः वो अपना स्तनपान करा सकते हैं।
0: और माँ बच्चे का अपना रिश्ता भी मजबूत बनता है।
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर साहब, अब आगे हम जानना चाहेंगे कि स्तनपान संबंधी सहायता हेतु केंद्र और जो हेल्पलाइन है वो कैसे कार्य कर रहे हैं।
1: जो हेल्पलाइन है वो हमारी 104 हेल्पलाइन है, जिसके अंदर कि आप किसी भी तरह की समस्या अगर है स्तनपान से रिलेटेड है या प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, इन चीज़ों के बारे में कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहें तो वो 104 हेल्पलाइन जो है उसके ऊपर सवाल किया जा सकता है।
0: जी मतलब अगर कोई महिला जो है कभी मुश्किल में हो तो वो 104 पर जो है कॉल करके अपनी समस्या का निवारण जो है करवा सकती है।
1: जी
0: डॉक्टर साहब, आपसे जानकारी

0: का सिलसिला जो है हम जारी रखेंगे, पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
4: So easy.
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम सुनो सखी में फिर से सभी श्रोता सखियों का स्वागत है। सखियों, आज हमारे स्टूडियोज में हैं डॉक्टर अनुराधा और वो हमें जानकारी दे रहे हैं विश्व स्तनपान सप्ताह पर कि कैसे एक माँ जो है अपने बच्चे को सुरक्षित स्तनपान जो है करवा सकती है। तो डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहेंगे कि प्रभावी स्तनपान जो है वो किसे माना जाता है?
7: जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सबको ये जानना ज़रूरी है कि प्रभावी स्तनपान जो है उसे हम गुड अटैचमेंट या गुड लैचिंग के बारे में जब बताते हैं तब उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पोजीशन, कि जब आप स्तनपान करा रहे हैं तो आप खुद कैसे बैठे हैं और बच्चे का कैसे आपको आपने पकड़ा है या किस तरह से आप उसको पोजीशन किया है। तो सबसे पहले तो माँ जो है, आप देखिए माँ को बच्चा पैदा होने से लेके 2 साल तक अभी स्तनपान कराना है, तो 2 साल की जो गतिविधि है उसके लिए उनको अपना पोस्चर ठीक रखने की ज़रूरत है। तो माँ की पीठ जो है वो हमेशा सीधी होनी चाहिए और उसको पीछे से सहारा होना चाहिए। वो ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे उनके पांव समतल नीचे टच हो सकें, या फिर बिस्तर पे अगर चौकड़ी मार के बैठना चाहते हैं वैसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। वो बच्चे को स्तनपान कराने के लिए झुके ना, और बच्चा अगर नीचे है तो उसको पिलो या कोई कुशन लगा के उसको ऊंचा कर लें, तकिया लगा के उसको ऊंचा कर लें ताकि आपके ब्रेस्ट के बराबर आ जाए।
0: अपनी बाजू का सहारा भी दे सकती है।
7: हाँ, वो बच्चे के लिए आएगा। अब आता है कि बच्चे की पोजीशन कैसे करनी है। बच्चे की पोजीशन जो करनी है उसमें हम जब अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सिखाते हैं, अपने डॉक्टर्स को सिखाते हैं, आशास को, तो हम बताते हैं कि 4 स याद रखने हैं। ठीक है, पहला है सीधा, मतलब बच्चा जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए है, जैसे सिर कंधा कूल्हा एक लाइन में होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ना हो कि बच्चा आपकी गोद में लेटा है और जैसे सीलिंग की तरफ, ऊपर छत की तरफ देख रहा है, उसकी नज़र ऊपर की तरफ है, सिर ऊपर की तरफ है एंड पूरी बॉडी ऊपर की तरफ को है। अब आप जब उसको दूध पिलाने लगे तो आपने सिर्फ उसकी गर्दन मोड़ दी अपनी तरफ और बाकी बॉडी उसकी सीधी रही, तो ये सीधा नहीं है। पूरा बच्चा जो है वो आप अपनी तरफ को मोड़ेंगे ताकि उसका सिर कंधा और कूल्हा एक ही लाइन में रहे,
0: बिल्कुल सीधी रहे,
7: सीधा रहे। तो ये है सीधा। फिर समीप, माँ और बच्चे के बीच में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए, उनकी बॉडी दोनों के शरीर जो है आपस में टच होने चाहिए, बिल्कुल समीप होने चाहिए दोनों। सामने, एक दूसरे के आमने सामने, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे का मुंह ऊपर की तरफ को है और माँ जो है ऊपर झुक के उसको फीड कराने की कोशिश कर रहे हैं, आमने सामने होंगे। और सहारा, जिसकी आपने अभी बात की कि बच्चे को पूरी बॉडी को सहारा देना है, वो एक हाथ से, दो हाथ से, किसी भी तरह से दिया जा सकता है। बहुत तरह की टेक्निक्स होती हैं जिसमें अलग अलग तरह से सहारा दिया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बच्चे ने माँ की ब्रेस्ट को या स्तन को किस तरह से, उसका जुड़ाव उसके साथ है, जिसको हम लैचिंग बोलते हैं
0: जी।
7: जिसको चेक करने का कुछ बहुत आसान तरीके हैं, जैसे कि माँ का जो स्तन है उसके साथ जब बच्चा टच है तो उसका मुंह बहुत बड़ा खुला होना चाहिए। ठीक है, पूरा मुंह खुला होना चाहिए। जो स्तन का काला भाग होता है जिसे हम एरियोला बोलते हैं, जो निप्पल के आसपास का भाग होता है, वो अधिकतर भाग बच्चे के मुंह में होना चाहिए। अगर वो सिर्फ निप्पल को सकल करेगा तो माँ के जो निप्पल्स हैं वो क्रैक हो जाते हैं, वो कट फट जाते हैं और माँ को बहुत दर्द होता है।

0: है, इसकी वजह से भी माँ जो है वो दूध नहीं पिला पाती है।
1: अच्छा, इसीलिए कुछ सखियों को जो है दर्द की शिकायत रहती है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं।
0: जी, तो एक हो गया बच्चे का बड़ा मुंह खुला होना चाहिए, उसकी ठोडी माँ के ब्रेस्ट के साथ लगी होनी चाहिए।
1: जी
0: ठीक है, सिर थोड़ा सा पीछे रहे उसका, और साथ में जो है जब वो मुंह में दूध भरेगा तो उसके चीक्स भरेंगे, ठीक है, और जैसे हम कहते हैं ना ग्लप की साउंड आती है, ग्लप की इस तरह की आवाज़ आएगी जब वो बच्चा दूध पिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी है। एक जो ज़्यादातर माएँ क्या करती हैं कि एक स्तन पे पिला के थोड़ी सी देर में ही वो दूसरे स्तन पे शिफ्ट कर देती हैं। तो आप देखिए जो हमारा दूध आता है वो आता है दो तरह, दो पार्ट्स में विभाजित है वो।
1: जी,
0: पहला बोलते हैं जो शुरू में आता है उसको बोलते हैं हम फोर मिल्क, और जो बाद में आता है उसको हाइंड मिल्क बोलते हैं। तो जो फोर मिल्क होता है वो प्यास बुझाने के काम आता है, उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है, वो पतला होता है। और जो पीछे से बाद में दूध आता है वो हाइंड मिल्क, वो थिक दूध होता है,
1: मतलब उसमें सारे पोषक तत्व।
0: जी, उसमें फैट होता है, उसकी वजह से वेट बढ़ता है, उसकी वजह से बुद्धि बढ़ती है। तो माएँ ये याद रखें कि एक स्तन जो है पूरा खाली करा के तब दूसरे स्तन में जो है उनको लगाना है बच्चे को।
1: जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब। अब हम जानना चाहेंगे कि विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान आम नागरिक किस प्रकार जो है इसमें भूमिका निभा सकते हैं, कैसे इस अभियान से जुड़ सकते हैं।
0: जी, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो परिवार और समाज जो है उसकी भागीदारी इसमें बहुत ज़रूरी है। जो घर का माहौल है, जो दफ्तर का माहौल है, घर का माहौल है, वो एक सौहार्दपूर्ण माहौल हो जिसमें कि माँ जो है सम्मानजनक स्थिति में बच्चे को दूध पिला सके। दूसरा, जितनी भी भ्रांतियाँ जो समाज में फैली हैं वो सिर्फ सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट या ICDS डिपार्टमेंट का वो ना हो, सारे के सारे लोग जो है उन भ्रांतियों को ख़त्म करने में मदद करें, चाहे वो पानी पिलाने की हो, चाहे वो शहद देने की हो, इस तरह की भ्रांतियाँ, या कोई ये सोचे कि माँ को दूध नहीं आता है। देखिए, हम जितने जानवर पालते हैं, कभी आपने देखा कि किसी जानवर को
1: सही
0: माँ का दूध पूरा नहीं
1: कह रहे हैं आप,
0: है ना। और साथ में परिवार के जो सदस्य हैं वो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि माँ को किसी भी तरह का तनाव ना हो, क्योंकि मैंने बताया कि जो स्तनपान के लिए दूध आ रहा है वो मस्तिष्क से आएगा। अगर वो स्ट्रेस में रहेंगी तो हम इस चीज़ को फिर पूर्णतः नहीं फॉलो कर पाएंगे।
1: और माँ का जो खाना है वो भी पौष्टिक होना चाहिए, इसका भी परिवार को जो है ध्यान रखना ज़रूरी।
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल सही।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं कि हर नवजात को जीवन की शुरुआत में ही माँ का दूध मिले, क्योंकि बहुत बार जो है बहुत से शिशु जो है माँ के दूध से वंचित रह जाते हैं।
0: बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कोई भी बच्चा जो है वो माँ के दूध से वंचित रहे। तो श्रोताओं को मेरा यही संदेश है कि हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि हर बच्चा जो है, हर शिशु पहले एक घंटे के अंदर उसका स्तनपान शुरू हो जाए, पहला पीला गाढ़ा दूध जो कोलोस्ट्रम है वो उसको ज़रूर मिले। दूसरा, 6 महीने तक केवल और केवल स्तनपान किया जाए, इसके अलावा उस बच्चे को कुछ भी ना दिया जाए ताकि बच्चे को बीमारियों से बचाया जा सके। और एक आह्वान मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि जो जागरूकता शिविर होते हैं उसमें अक्सर हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं, तो मैं चाहूँगी कि पुरुष, घर के पुरुष भी उन चीज़ों में थोड़ा सा साझेदारी करें और जागरूकता शिविर या अवेयरनेस कैंप्स जो भी होते हैं उनमें जाके उन बातों को सुने, ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता रहे,
1: ताकि वो उस धात्री महिला का, गर्भवती महिला का जो है अच्छे से ध्यान रख पाएं।
0: जी, और अंत में मैं फिर यही कहना चाहूँगी कि जो माँ का दूध है शिशु का पहला अधिकार है, सुपोषण और उत्तम स्वास्थ्य का आधार है।
1: जी,
0: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। अभी हमारा जो है आपसे प्रश्न पूछने का सिलसिला जारी है, तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, वो इसमें कैसे अपनी भूमिका जो है अदा कर रहे हैं।
0: देखिए, हमारे जो सरकार है उनके द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे चलाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से स्तनपान को प्रभावी ढंग से करवाने के लिए और उसकी जागरूकता फैलाने के लिए और कुपोषण से लोगों को, बच्चों को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। इसमें जो इन तीन कैटेगरीज़ की आपने बात की, तो हमारी आशा वर्कर्स जो हैं उनका एक जो गृह आधारित नवजात देखभाल

0: कार्यक्रम है जिसमें HBNC कहते हैं हम, होम बेस न्यूबॉर्न केयर, जिसमें उन्होंने बच्चों को विजिट करना होता है। डिलीवरी होने के बाद जो है वो तीसरे दिन, सातवें दिन, चौदहवें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन और 42nd डे जो है उन्होंने जाके बच्चे को देखना होता है, क्या उसका वज़न बढ़ रहा है, क्या दूध पिला पा रही हैं, नहीं पिला पा रही हैं, तो वो उनको हेल्प करती हैं कि आप कैसे इनको प्रभावी ढंग से जो है वो दूध पिला सकते हैं।
1: बहुत ही अच्छी इसी बात है ये कि मतलब जो आशा वर्कर हैं घर घर जाकर ये काम कर रही हैं।
0: जी, और इसी तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं वो माताओं की के समूह बनाती हैं और उनकी बैठकें कराती हैं, उनके पोषण पे निगरानी रखती हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट मदर्स हों या धात्री माताएं हों या बच्चे हों। और जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हमारा जो ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता दिवस होता है, हर महीने मनाया जाता है, उसमें जो है माताओं की जाँच होती है, उनके पोषण पर ध्यान रखा जाता है और उनको परामर्श दिया जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहेंगे कि स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी जो प्रमुख स्कीम्स हैं वो संचालित की जा रही हैं।
0: जी, जो अगर मैं शुरू से शुरू करूँ तो हमारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है 2005 से चल रहा है और उसके अंतर्गत हमारे बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो माताओं और बच्चों के लिए चल रही हैं। कुछ स्कीम्स जिनकी मैं बात करना चाहूँगी, एक हमारा मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन करके माँ नाम से एक कार्यक्रम चलता है
1: जी,
0: 2016 से चल रहा है वो, जिसमें कि एक घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करना, 6 महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना, जिससे कि मातृ बच्चे का शिशु मृत्यु दर जो है जिसको हम कम कर सकें और कुपोषण कम कर सकें, इस उद्देश्य से ये चल रहा है। एक और हमारा प्रोग्राम जो है वो है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, ये ICDS विभाग के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे कि माँ का पोषण भी कम ना हो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान में, डिलीवरी के बाद भी। तो इसमें 5,000 की राशि जो है वो माताओं को इंस्टॉलमेंट्स में दी जाती है, पहले बच्चे पे, और दूसरे बच्चे पे अगर लड़की होती है तो 6,000 की राशि दी जाती है।
1: ये सभी माताओं को मिलती है?
0: हाँ, बस वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होनी चाहिए।
1: जी।
0: और पोषण अभियान चल रहा है, जैसे आप जानते हैं कि हमारा सितंबर महीना जो है वो पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, तो ये पोषण अभियान जो है इसमें कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए जो है वो स्तनपान और आहार पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें जो जन्म से लेके 6 साल तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जो धात्री महिलाएं हैं और हमारी जो किशोरियां हैं, उन सबके पोषण के ऊपर काम किया जाता है,
1: जैसे आंगनबाड़ी में मिलता है जो।
0: जी जी जी जी हाँ
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी और आप हमारे स्टूडियोज में आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका मुझे यह बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद डॉक्टर साहब। श्रोताओं, याद रखिए, माँ का दूध केवल भोजन नहीं, प्यार, माँ की सुरक्षा और स्वस्थ जीवन की पहली सौगात है। विश्व स्तनपान सप्ताह के इस अवसर पर आइए हम सब मिलकर यही संकल्प लें कि हर माँ को सही जानकारी, सम्मान और सहयोग मिले। इसी संदेश के साथ आज के सुनो सखी कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया सुनील कुमार ने। इसी के साथ प्यारी सखियों, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। दिन के 1 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो

0: संसद परिसर में हमारे संवाददाता से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी पर अब हर सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है।
1: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: वहीं सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। श्री गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में हर वर्ष लगभग 1,80,000 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति ने आज इस फैसले की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

झूला झूलते हैं। बताइए, आपके आसपास कहीं झूला टंगा है किसी पेड़ की टहनी पर या घर में? बताइएगा, क्या आपने झूला झूला इन दिनों? फटाफट लिखिएगा अपना एहसास, कितनी ऊंची पींगे बढ़ाई आपने ये भी बताइएगा।

लता मंगेशकर, आशा भोंसले और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था बहू बेगम। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और धुन रोशन की थी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि धमाकेदार शुरुआत से लगता है आज सावन में ही भादो आ जाएगा। क्या बात है, यानी आप भी आनंदित हो रहे हैं और सावन में भीग गए हैं, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीत बहुत ही प्यारे होने वाले हैं क्योंकि सावन जो आ गया है विविध भारती के आंगन में। भाई, आपके आंगन में भी तो सावन आ गया है और सब श्रोता मिलकर मंदाकिनी जी के साथ मस्ती से आनंद लेने वाले हैं। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बंधन फिल्म के महेंद्र कपूर जी की

ये जो आवाज थी शानदार गाने से सावन की शुरुआत सुरीला सफर कार्यक्रम में हुई, उसके लिए बहुत बहुत आभार। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहली बार ये गीत सुनने को मिला है, सुरीला सफर में बज रहा है या बहुत लंबे से समय के बाद ही इस गीत को बजाया गया है, धन्यवाद देती हैं आप। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर की सुरीली यात्रा अत्यंत सुखदायी लग रही है, क्योंकि आज की विशेष कड़ी आपके द्वारा सावन में वर्षा की ठंडी ठंडी फुहार जैसे कर्णप्रिय गीतों से सजाई गई है। भाई जब सावन का मौका है और सुरीला सफर है, हम और आप साथ हैं, मिलकर इस यात्रा पर निकले हैं, तो यकीनन जो सफर है वो सुरीला होना लाजिमी है ना। हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना आकाश का मन हुआ कि चलो धरती से मिले, हाथ बढ़ाकर उसके स्पर्श की पावन अनुभूति का आनंद मैं भी लूं, अपने लंबे लंबे हाथ पानी की धार के रूप में फैलाएं और अंततः स्पर्श कर ही लिया, बस फिर क्या था, माँ तो माँ ही होती है। खुश हो हरा भरा श्रृंगार करके, अच्छा श्रृंगार करके झूमने गाने लगी और तब से वे दोनों हर साल मिलते हैं और इस मिलन के उत्सव को उनके साथ हम सभी झूम झूम कर मनाते हैं। बहुत सुंदर इबारत आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज बारिश रूपी झड़ी लगने वाली है, गीतों की बूंदों के रस में डूबे हुए स्नेहिल मंदाकिनी जी और सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार करता हूँ। ये सच है कि ऋतु में सावन खूब भाता है, बचपना हो युवा हो या 50 से ऊपर, बारिश में भीगने का अपना आनंद होता है। हाँ, पर मन के भाव हर उम्र में अलग अलग हो सकते हैं, पर बारिश रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे, आज इस मौसम में लगी कैसी अगन, बहुत अच्छे लगते हैं गीत सुनना। बिल्कुल आपने सही कहा, चाहे बचपना हो चाहे युवावस्था हो या 50 के पार का हमारा मन हो, ये जो बारिश है, ये जो सावन है, ये जो मौसम है, हमें हर उम्र में उतना ही उल्लासित रखता है जितना हम हर वक्त रहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी भी मौसम को किन अर्थों में लेते हैं। अच्छा, तो हमने आपसे पूछा था कि झूले पड़ गए हैं, आपके घर आंगन में भी झूले लग गए होंगे, किसी पेड़ की शाखा पर झूले टंग गए होंगे, क्या आपने झूले झूले हैं? अभी ढूंढते हैं आपके जवाब क्या आए। ये बताइएगा कि आपके शहर में सावन बरसा के नहीं, फटाफट बताइए। तो आप बताएंगे कि आपके शहर में बरसात हुई कि नहीं, हुई तो कितनी हुई, कब से हुई, और आपने सावन का जो ये आनंद है लिया या नहीं। ये आपका मन सूखा रेगिस्तान है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुरीला सफर में आज हमारी कोशिश यही है कि हम भीग जाएं तन मन से। यह आवाज़ लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम आशीर्वाद, गुलजार साहब के बोल, वसंत देसाई की धुन।

0: लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म का नाम था आशीर्वाद। हमारे श्रोता ने लिखा है कि कहा जाता है कि सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो ये दर्शाता है कि हर अच्छे काम की शुरुआत में मुश्किलें और नकारात्मकता आती ही हैं। भगवान शिव द्वारा इस विष को अपने गले में रोकना ये सिखाता है कि समाज की भलाई के लिए कभी कभी कड़वी बातें भी सहनी पड़ती हैं। जो इंसान अपमान और आलोचना को झेल कर भी शांत रहता है, वही असल में महान बनता है। बहुत सुंदर। हमारे श्रोता ने हमारे एक सवाल का जवाब दिया है। हमने पूछा कि क्या आपके शहर में बरसा है पानी सावन बरसा कि नहीं। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ गुजरात में अभी सावन नहीं आया, उत्तर पूर्व भारत में गए सोमवार के आसपास सावन शुरू हो गया है, पर पश्चिम में सावन महीना देर से आता है। इन्होंने लिखा है, अरे आपने हमारा नाम बदल दिया, मीनाक्षी जी। बड़ा सुंदर नाम रख दिया आपने हमारा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन हमारे तीन तहसील में बारिश नहीं हुई है, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर और जामनगर में बारिश नहीं हुई। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल और आसपास के क्षेत्र में पानी नहीं बरस रहा है, बहुत चिंता हो रही है। बाकी गर्मी तो कम है, मौसम बहुत सुहावना है, चारों ओर हरियाली, तालाब, जंगल से घिरा हुआ शहर है हमारा। अगर अच्छा पानी गिरता है तो शिमला मसूरी का मजा आता है। क्या बात है, हम बिल्कुल गुजारिश करते हैं भगवान से, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के शहर में पानी बरसे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले महीने से मैं बारिश की गीत सुनकर थक गई थी, पर हमारे शहर में बारिश नहीं हो रही ही, पर पिछले सोमवार से हमारे शहर में रिमझिम सावन बरस रहा है। आज भी सुबह से एकदम बिल्कुल फुहार हो रही है और बहुत बढ़िया हरियाला मौसम हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है ना आपको। आप लिखती हैं कि भाई विविध भारती स्टूडियो में भी सावन आ गया है। बिल्कुल, यहाँ तो सावन आ गया है स्टूडियो में, और सुरीला सफ़र में भी तो हम निकल पड़े हैं ना, जहाँ सावन की बौछारें हमें भीगो रही हैं। भीगे हैं ना आप, बताइए मुझे, भीगे हैं कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया है। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि कहा जाता है कि सावन मास में ही अच्छाई, तो हमने आपका विचार पढ़ दिया था, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं सलील चौधरी का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है 2 बीघा जमीन। अच्छा बताइएगा, हमारे एक श्रोता ने कहा आपके दो सवालों का क्या हुआ। नहीं नहीं, आज हम खूब सारी बातें करने वाले हैं, खूब सारे सवाल आपसे करने वाले हैं, सीधे साधे प्यारे से, जिनका जवाब आप इस सफर में चलते चलाते दे देंगे, है ना। बताइएगा आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है, बारिश, ठंडी हवा, चाय या किसी अपने का साथ।
1: जग जग जग जग जगन जगन गिन गिन रे।
0: हमारे बहुत सारे श्रोता खेत खलियान में बैठकर ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, बताइएगा कैसा लग रहा है आपको वहाँ बैठकर।

हमारे श्रोता लगातार हमें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम आपसे थोड़े से नाराज हैं, आप आजकल बहुत दिनों बाद आती हैं। वैसे तो हमने सोचा आज हम सुरीला सफर नहीं सुनेंगे क्योंकि कुछ ऐसे काम है जो हम नहीं कर पा रहे, उसे करना बहुत ज़रूरी था, पर अब लगता है कि आपको हम सुनेंगे और जब सावन की बातें हैं तो हम क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है। फिर दिल ने धीरे से कहा, हो जाओ शामिल, देखो न सब ने कितने प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं, तुम भी लगी हो इन सब में, बस फिर क्या था हम लिखने लगे, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप इस तरह से इतना काम होते हुए भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और हमारे साथ इस सुरीले सफ़र पर निकल पड़ते हैं। एक श्रोता ने कहा है कि सावन हर साल आता है मगर हर बार कुछ नया छोड़ जाता है, कभी भीगी मिट्टी की खुशबू में कोई पुरानी याद, कभी झूले की पींग में बचपन, कभी पपीहे की पुकार में किसी का इंतजार, पेड़ों पर उतरती हरियाली जैसे धरती ने हरे रंग की चूड़ियां पहन ली हो और बादल आसमान की पेशानी पर ठहरी कोई खामोश दुआ बन गया हो। शायद इसलिए हमारे फिल्मी गीतों ने सावन को सिर्फ देखा नहीं, उसे जिया है। हर धुन में कहीं रिमझिम की बूंद है, कहीं मोर के पंखों की थिरकन, कहीं विरह की भीगी सांस तो कहीं मिलन की मुस्कान। सावन दरअसल मौसम नहीं, यादों का भीगा हुआ पन्ना है जिसे जिंदगी हर बरस फिर से खोलकर पढ़ती है। बहुत सुंदर, बहुत गहरी इबारत आपने लिखी है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारत ऋतुओं की विविधता का देश है लेकिन जो आत्मीयता, रसमयता और भावुकता सावन के महीने में छिपी है वो अद्वितीय है। सावन केवल वक्त का एक महीना नहीं है, ये भारतीय जनमानस के लिए प्रेम, विरह, हरियाली और आस्था का एक जीवंत उत्सव है। सावन आते ही प्रकृति अपना सबसे सुंदर रूप धारण कर लेती है। सावन रस का महीना है, चाहे वो पानी का रस हो, संगीत का रस हो, प्रेम का रस हो या फिर भक्ति का रस हो। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना उल्लास, उमंग, खुशी और प्रकृति को भी खुशनुमा बना देता है। मोर नाचने लगते हैं, कोयल की कूक गूंजने लगती है, पानी की बूंदें धरती पर पड़ती है, सारा वातावरण खुशनुमा हो जाता है और हरियाला सावन ढोल बजाता आता है। सावन का महीना और इस तरह से हम सावन के महीने को जीते हैं। तो हमारे श्रोता लगातार लिख रहे हैं लेकिन सवालों का जवाब भेज रहे हैं कि नहीं। भाई आज तो बिल्कुल सीधे साधे सवाल आपसे किए जा रहे हैं ताकि सुरीला सफर में कहीं रुक के हमें दिमाग पर ज्यादा जोर न देना पड़े कि आज जो हमने पूछा उसका जवाब क्या हो सकता है। तो हमने आपसे सीधा साधा सवाल किया था कि आपके शहर में सावन बरसा या नहीं, आपने इसका जवाब दिया है। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि आपके आस पड़ोस में, आपके घर खेत खलिहान में या आपके आसपास

झूले लगे कि नहीं आपने, झूला झूला कि नहीं, इसका जवाब शायद अभी तक नहीं मिला है। वहीं अब हम इस सुरीला सफर में आपसे जानना चाह रहे थे कि आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है। मतलब सावन बरसता है तो बारिश का मजा लेते हैं, ठंडी हवाओं का, या अदरक की चाय का, या किसी अपने के साथ उस सावन का मजा लिया जाता है, या कई लोग चाय की टपरी की ओर भी चले जाते हैं जहाँ हमें कुल्हड़ की चाय मिलती है। याद है आपको वो समय जब आप चाय की टपरी पर जाकर कुल्हड़ की चाय पिया करते थे? याद करिए उन दिनों को और लिख भेजिए कम से कम शब्दों में ये अपनी बात जो आपने अपनी जिंदगी में महसूस की है। यह आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म का नाम है कौन है अपना। बीडी मिश्रा का लिखा गीत है और एसएन त्रिपाठी का संगीत है। बहुत कम बजता है गीत।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन मास का आगमन हर दिल में एक नई उमंग जगाता है, इसलिए सभी को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। स्वयं भगवान शिव को भी ये महीना अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि इस समय प्रकृति का कण कण उनकी कृपा से जीवंत हो उठता है। इस पावन मास में बेटियां अपने मायके लौटती हैं, घर आंगन में झूले सजते हैं, सावन के मेले लगते हैं और चारों ओर मखमली हरियाली छा जाती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने स्वयं को खुशियों के हरे रंग से सराबोर कर लिया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय लोक जीवन में सावन का बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। सावन केवल बाहरी वातावरण को ही शीतल नहीं करता, बल्कि इंसान के भीतर छिपी संवेदनाओं को भी जगा देता है। कवियों और साहित्यकारों ने सावन पर अनगिनत रचनाएं लिखी। फिल्मी गीतों से लेकर शास्त्रीय संगीत के राग मेघ मल्हार तक सावन हर कलाकार की प्रेरणा रहा है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपके द्वारा साझा किए गए शब्दों में सावन की भावना जीवंत हो उठी है। सचमुच ये बहुत अच्छा अनुभव होगा, ऐसा हम समझते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना आ गया, जीना नहीं आता था लेकिन सावन का महीना आया। बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने किया है। और श्रोता लिखते हैं कि अदरक की चाय के साथ किसी अपने का साथ हो तो सावन का मजा दोगुना हो जाता है। आपने पूछा था कि आप सावन को किस तरह से बिता रहे हैं, उसका जवाब दिया है इन्होंने कि आपके लिए

उनका सबसे रूमानी एहसास क्या है? आपने लिखा है कि अदरक की चाय के साथ किसी अपने का साथ हो तो सावन का मजा दोगुना हो जाता है। मेरे शहर में सावन की झड़ी लगी हुई है और मौसम काफी रूमानी हो गया है, क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी पुणे शहर में आषाढ़ की घनघोर बरसात के साथ अब सावन वाली धूप बारिश की आंख मिचोली दिखाई दे रही है। हरी भरी प्रसन्न सृष्टि के साथ हमारा तन मन भी प्रफुल्लित हो गया है, बहुत सुंदर। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अब तो बालपन वाले झूले कहाँ मिलते हैं मंदाकिनी जी, जो पेड़ों पर लगे रहते थे अब तो पार्क में झूले होते हैं। अच्छा आज भी जब आप गाँवों में जाते हैं ना तो वहाँ पर आपको पेड़ों पर झूले टंगे हुए मिलेंगे, है ना। गाँवों में ढाणियों में जाकर देखिए, वहाँ खेतों में खलिहानों में पेड़ों के आसपास झूले लगते हैं और छोटे छोटे बच्चे और स्त्रियां घूंघट अपने में, वो अपनी पूरे पारंपरिक पोशाक में होती हैं मतलब, और झूला झूलती भी आपको मिल सकती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए आज का सुरीला सफर तो आपने सावन के नाम कर दिया है, सुन रहे हैं हम भी आपके साथ हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना भारतीय जनमानस के प्राणों में बसता है। तपती गर्मी से व्याकुल धरती जब वर्षा की पहली फुहार से तृप्त होती है तो चारों ओर मिट्टी की सौंधी महक फैल जाती है। ये समय केवल ऋतु परिवर्तन का नहीं बल्कि प्रकृति के पुनर्जन्म का उत्सव है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ मखमली हरी चादर बिछ जाती है। बागों में सखियों के खिलखिलाते चेहरों के साथ पेड़ों पर झूले सजते हैं और आकाश में काले बादलों को देख पपीहे कितान और मोरों का नृत्य तेज हो जाता है। सावन का हर दिन लोकगीतों, त्योहारों और महादेव की भक्ति के रंग में डूबा रहता है, जो मानवीय संवेदनाओं, विरह और मिलन के भावों को जीवंत कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये सुरीला सफर आपके साथ हम चल रहे हैं और सावन के गीतों का आनंद लेंगे। सावन का महीना ऐसा महीना होता है जहाँ देखो हरियाली हरियाली होती है। इस महीने में अपने आप ही मन खुश रहता है और उस सफर पर हम और हमारी कैप्टन मंदाकिनी जी हमारे साथ होंगी। नहीं भाई, हम सब मिलकर, हम सभी मित्रगण जो हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे दोस्त, सब मिलकर इस सुरीला सफर का आनंद आज उठा रहे हैं और आप इस सुरीला सफर में हमारे साथ हैं, ये बहुत खुशी की बात है।

तो जब बात चल रही है सावन की, तो जब बादल खुलकर बरसते हैं तो कैसा लगता है? तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आनंद की वर्षा कर रही है ना? और कभी कभी सावन की इस भीड़ में मन अकेला भी तो हो जाता है, पर हम तो सुरीला सफर के इस मौके पर निकल पड़े हैं। हमारे अंदर कहीं अकेलापन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अपने अनकहे दर्द को कहना चाहते हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि सुरीला सफर की इस यात्रा में हमारे साथ आ जाइए और अपनी तन्हाई को दूर करिए इस गीत के साथ।

उषा खन्ना का संगीत था और गौहर कानपुरी की रचना, आवाज मोहम्मद रफी की थी। फिल्म का नाम था दो खिलाड़ी। लगता है हमारे श्रोताओं को जो है पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। इसीलिए तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है हमारे सवाल के जवाब में कि आपके लिए सावन का सबसे रुमानी एहसास क्या है। आप लिखते हैं कि गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। चलिए हम पढ़ते हैं आपके इन जज्बातों को। आप लिखते हैं, पहली बूंदों को अदरक वाली चाय, गर्म पकौड़े और सुरीले सावन गीतों की सुनते हुए अपने मनमीत के साथ मजा लेना ही बढ़िया एहसास लगता है। क्या खूब। एक श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत कम सुनाई देने वाले मधुर सावन गीत आ रहे हैं, धन्यवाद। वहीं एक श्रोता ने कहा है, हमें तो सावन में बारिश हो रही हो तब गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मजा आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन माह में हल्की रिमझिम वर्षा के साथ गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का आनंद लेते हुए झूले पर, अच्छा टेरेस पर डाले गए झूलों पर बैठना अधिक सुहाता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी खेतों में पड़े हैं और शिव जी पर नियमित प्रातः जलाभिषेक सब पत्नी हम कर रहे हैं। सारे माह बेटियों बहुओं ने व्रत रखने का संकल्प लिया है। एक समय भोजन करेंगे, शिव नाम का जाप होगा और अभिषेक होगा। बहुत खूब। वहीं श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी पड़े हैं और व्रत भी किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि चाय और पकौड़े को तो सावन की जान माना जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की शुरुआत ने हमारे यहाँ बारिश का आनंद देना शुरू कर दिया। हम घर बैठे बारिश के साथ रेडियो पर आपके प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं और झांसी में 15 दिन बाद पानी बरसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और क्या कहना चाहिए, बधाई, ये आपके शहर में पानी बरसा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने सावन का आनंद हमेशा ही लिया है, बचपन में कागज की नाव बनाकर तैराना, कॉलेज के दिनों में भीगते हुए सावन का आनंद लेना और रेडियो पर सावन के गीतों का मजा लेना, सर्विस पीरियड में अवकाश के दिन अपनी पत्नी के साथ खिड़की के फुहारों और हरियाली का आनंद लेना, अब सेवानिवृत्त होने के बाद अदरक, काली मिर्च और इलायची की शुद्ध दूध की चाय और गर्मा गर्म प्याज के पकौड़ों का, हाँ हमारा भी मन कर गया है। मज़ा अपनी पत्नी के साथ लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो जब भी बारिश होती है तो पतिदेव पकौड़े की फरमाइश करते हैं और फिर हम दोनों बारिश का मज़ा लेते हुए साथ साथ पकौड़े का भी मज़ा लेते हैं। बहुत सुंदर, यही तो जीवन है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन महीने की बरसात की फुहार, चाय की प्याली और पकौड़े के स्वाद कुछ अलग ही होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन की बारिश में चाय और पकौड़ों की जुगलबंदी इस रूमानी एहसास को दोगुना कर देती है। गर्मा गर्म पकौड़े, कट्टी भी ठंडक और बारिश की रिमझिम के बीच

आज आलू और मिर्च के करारे पकौड़ों की बाइट मन को तृप्त कर देती है। इलायची अदरक वाली चाय पकौड़ों के साथ खौलती हुई अदरक इलायची की चाय की चुस्की रूह तक सुकून पहुंचाती है। मौसम का असली मजा खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखते हुए चाय पकौड़े का आनंद लेना है और सावन का सबसे खास और ये सुखद पल बन जाता है। भाई आपकी चाय और पकौड़े की बात पढ़ते पढ़ते आपकी फीलिंग्स को महसूस करते करते हमारी भी इच्छा हो गई है कि एक गर्मा गर्म चाय और कुछ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाई जाए। अच्छा तो हमने एक सवाल पूछना चाहा भी था आपसे कि क्या कभी आपने बारिश में कागज़ की नाव बनाई। हाँ बचपन में तो ज़रूर बनाई होगी। हमारे एक श्रोता ने अभी जवाब भी दिया कि उन्होंने बरसात में खास तौर से कागज़ की नाव को तैराया है। कितना मज़ा आता था ना घर आंगन में जब हम जो नाली है उसमें एक कपड़ा ठूंस देते थे ताकि पानी बाहर न जाए और कागज़ की नाव उस पर चलाए करते थे और हमें लगता था कि हमने जैसे असल में नाव बना ली है और हम उस पर तैर रहे हैं। अच्छा बताइएगा कि सावन का नाम सुनते ही आपके दिल में सबसे पहली कौन सी याद ताज़ा हो जाती है, कम से कम शब्दों में बताना है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।

हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि मेरे लिए सावन की रिमझिम फुहारें, खिड़की पर आती ठंडी हवा की लपटें। अरे आपने तो एक अलग ही शब्द इस्तेमाल कर लिया। हाथों में अदरक इलायची वाली कड़क चाय का गर्म कप और बैकग्राउंड में बजते हुए सदाबहार रुमानी गाने, ये किसी जन्नत के एहसास से कम नहीं लगते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। और जब कोई संगीत प्रेमी इस तरह की कल्पना करता है या इस रोमानियत से जीता है तो उसकी ज़िंदगी क्या कहने। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे नागपुर वाले अपार्टमेंट के टेरेस पर मैंने झूला रखा है और शाम को उस पर बैठकर झूलते हुए हरियाली देखता हूँ और ठंडी हवा का आनंद उठाता हूँ। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन में दोस्ती यारों के साथ चाय की दुकान पर मिलाप बढ़ जाता है और वार्तालाप और हंसी मजाक से समय बिताना कुछ अलग ही मजा देता है। बिल्कुल। एक श्रोता ने कहा है कि सुबह से दीदी बनारस में बारिश हो रही है, मेरा फेवरेट आनंद लेने की जगह वही होती है, बारिश में बस कुल्हड़ वाली सौंधी सौंधी खुशबूदार चाय पीता हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर में बारिश काफ़ी कम हुई है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। एक श्रोता कहते हैं कि फिलहाल तो हमारे जबलपुर में बारिश नहीं हो रही है, गर्मी तपन भी है, ना ही ऐसा कोई बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, सिर्फ विविध भारती का सहारा है जो हमें ठंडी ठंडी फुहार वाले गीत सुना रहा है, जब बारिश होगी तो पकौड़े और अदरक वाली चाय मिलेगी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के महीने में अपनी व्यस्तता बढ़ जाती है क्योंकि भोले भंडारी को खुश भी करना है, घर के ही मंदिर में शिव जी को जलाभिषेक करना, बेलपत्र और फूलों से पूजा करना दैनिक गतिविधियों का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। साथ ही सोमवार को फलाहार वाला व्रत रखकर तन और मन को डिटॉक्स भी करना होता है। हाथों को हरी चूड़ियों और मेहंदी से सजाना भी सावन के महीने की विशेषता है। उस पर से बारिश की ठंडी फुहारें आसपास के वातावरण को और खुशनुमा बना देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के शानदार गीत, आज तो मैं और मेरा प्यार भरा नमस्कार आपको, शानदार सुरीला सफर का कार्यक्रम, बारिश और भी तेज हो रही है मेरे शहर में, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सभी को सावन का मौसम दुख और सुख दोनों का मिलन है। पहले सावन में मायके जाते थे, झूला झूलते थे, सखियों से मिलते थे, अब वो सब नहीं हो पाता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली, मैंने उनको सिर्फ इस गाने की दो लाइनें लिखी थी कि तेरी दो टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए रे, क्या बात है। बस फिर क्या था, उनको पता चला और उन्होंने छुट्टी दे दी और मेरा ये सावन का अनुभव हर साल सावन में याद आता है। वाह, अब तो ना मायके से कोई आता है ना ही कोई बुलाता है, पुरानी यादों को याद करके ये सावन बीत जाता है। यही जिंदगी है ना, जिंदगी में हर पल एक से नहीं होते हैं, कभी खुशी कभी गम होते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की पहली फुहार में आज काशी नगरी भीग गई है, मौसम बहुत सुहावना हो गया है, जहां बारिश अभी तक नहीं पहुंची थी वहां भी सावन की वर्षा पहुंच चुकी है। बाबा विश्वनाथ जी के से प्रार्थना करती हूँ कि अभी सावन की सुंदर छटा चलती रहे। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अरे आपने तो मंदाकिनी शब्द के अलग अलग अक्षरों का अर्थ लिख दिया है, बहुत लंबा खत आपने लिखा है, बहुत लंबा संदेश, चलिए फिर कभी इसको पढ़ेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इबारत को पढ़कर मालूम हुआ कि सावन के महीने की क्या विशेषता है और सावन के ऊपर आज मधुर और कर्णप्रिय गीत सुनने को मिलने वाले हैं, तो हम इसके लिए आपके साथ सुरीला सफर में चलने को तैयार है। भाई अब तो हम अंतिम सोपान तक पहुँच चुके हैं, तो चलिए सुनते हैं प्रीति सागर की आवाज में, इनका साथ दे रहे हैं भूपेंद्र, फिल्म का नाम है भूमिका।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जो काम इंसान यूं ही नहीं करता वो काम बारिश करवा देती है। भवन की सफाई, पेड़ पौधों को साफ करना, पीने का पानी, पशुओं के चारे की व्यवस्था, ये बरसात ही तो करती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि कटक उड़ीसा में सावन आया, आकर भिगो भी गया, बारिश हुई, ऊपर छत्तीसगढ़ में बहुत बारिश हुई, हीराकुंड डैम से पानी भी निष्कासित हो रहा है, नदी नाले पानी से भरे हुए हैं। बहुत दिनों के बाद बारिश आई, लेकिन खुशी के साथ दुख भी दिया, कई जिलों में बाढ़ आने से बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम ऐसे प्रकृति को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि हमारे ही लोग इस अतिवृष्टि से कितने परेशान हैं, और जानमाल को जब नुकसान होता है तो वाकई मन रो पड़ता है। जी, अब तो मिलने मिलाने का वक्त खत्म हो गया है, और अब आपको हमें यानी मंदाकिनी जोशी को इजाज़त देनी होगी कार्यक्रम सुरीला सफ़र से। तो हम लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है भोर या सवेरा पर। साथियों, भोर प्रकृति की वो मुस्कान है जो धीरे धीरे खिलती जाती है और रात के घने अंधकार के घमंड को अपनी मुस्कुराहट के सौंदर्य से समाप्त कर देती है। ये केवल दिन की शुरुआत भर नहीं बल्कि आशा, ऊर्जा और नव जीवन का सुंदरतम उत्सव है। जब पूर्व दिशा में उषा अपनी सुनहरी चुनर फैलाती है तो ऐसा

प्रतीत होता है मानो आकाश स्वयं पर इठला रहा हो, मानो आकाश की झोली से भोर हाथ भर भर के सोना उछाल कर धरती पर बिखेर रही हो। रात भर चंद्रमा और तारों की छत्र छाया में विश्राम करती

घास की पत्तियों पर सजी ओस की बूंदें मोतियों की तरह दमकने लगती हैं। मंद मंद बहती शीतल हवा फूलों की सुगंध को अपने साथ बहाकर पूरे वातावरण में बिखेर देती है। वृक्षों की डालियों पर बैठे पक्षी अपने मधुर कलरव से प्रकृति के इस जागरण का स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण सृष्टि किसी अदृश्य संगीत की लय पर थिरक रही हो। भोर जीवन का वो संदेश है जो कहता है कि कोई भी अंधकार स्थायी नहीं होता। कितनी ही लंबी और भयावह रात क्यों ना हो, लेकिन अंत में उसे उजाले के सामने झुकना ही पड़ता है। यही कारण है कि सवेरा मानव जीवन में आशा और विश्वास का प्रतीक माना गया है। ये हमें प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों और निराशाओं के बीच भी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हर संघर्ष के बाद सफलता का सूर्योदय अवश्य होता है।

भोर हमें ये भी सिखाती है कि हर नया दिन एक नया अवसर है। बीते हुए कल की असफलताओं और दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का अवसर। जैसे सूर्य प्रतिदिन बिना थके अपनी किरणों से संसार को आलोकित करता है, वैसे ही मनुष्य को भी निरंतर कर्म करते हुए अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहिए। सच तो ये है कि भोर प्रकृति द्वारा रचित सबसे सुंदर काव्य है। इसकी हर किरण में उम्मीद का गीत है, हर हवा के झोंके में नव जीवन का संदेश है और हर उगते सूरज में अनंत संभावनाओं का प्रकाश है। भोर हमें याद दिलाती है कि जीवन रुकने का नहीं, बल्कि हर दिन नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का नाम है। इसलिए सवेरा केवल समय का परिवर्तन नहीं, बल्कि मन और आत्मा के जागरण का उत्सव है।

मृदंग झांझ जप बाजत तापर नाचत कृष्ण कन्हैया गोपिन के संग राज रचावत नाच चावत ताता तैया थई तैया थई तैया खेलत गेंद गिरी यमुना बिच नित्य कियो तहां नागन थैया गोप के इंद चढ़ो बिज ऊपर गोपी करत सब हा हा थैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंसी बजावत देन।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।

0: संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
1: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
3: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुँच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
4: After a detailed assessment of the evolving
3: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
0: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
4: Headline inflation has edged up.
3: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
4: As projected earlier.

0: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए आरबीआई ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
1: रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर,
2: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
1: Q4 at 6.8%।
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
4: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल है, पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में ये भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरे ब्रिक्स

0: संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
1: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी की बोल, मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम वक्त।

0: बहाने क्यों करती हो हम पे तुम भी मरती हो, बहाने क्यों करती हो हम पे तुम भी मरती हो, अभी तो नया सांस है आज हंसी तो कल भी हंसोगी।
1: किशोर कुमार की आवाज में आपने श्रीमान फंटूश का गीत सुना। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे।
0: बहाने क्यों करती हो।
1: और ये स्वर है मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम है सहेली। गीत रचना इंदिवर की और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

अपने प्यार पर तुमसे बड़ा नाज है। अजी ये गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, अजी ये गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, अभी तो नया आजाद है।

0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है रिश्ते नाते। गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन मदन मोहन की।

कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है दो बदन। शब्दकार शकील बदायूनी है और धुन रवि की है।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा और धुन कल्याण जी आनंद जी ने दी।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, आवाजी मोहम्मद रफी और शारदा की, फिल्म का नाम है गुमनाम।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3 बजने को हैं अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर स्माइक चर्चा रिले की जाएगी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की आज सातवीं वर्षगांठ है। वर्ष 2019 में आज ही के दिन संसद ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त किया था। इससे पहले अनुच्छेद 370 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना संविधान था। ये एक अस्थायी प्रावधान था जिसने राज्य को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया था। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के सभी कानून और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू हो गई हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सात वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता व खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदायों और उन लोगों को उनके अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धर्मशाला महाविद्यालय में आज छात्र हितों से जुड़ी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने प्रदेश में हुई फीस वृद्धि को वापस लेने, छात्र संघ

0: ऐसे विद्यार्थी परिषद की जो है फीस हाइक को लेकर डिमांड पूरी नहीं होती है, तो आगामी समय में विद्यार्थी परिषद जो है भूख हड़ताल तक और जो है शिमला में बैठे उस प्रशासन के पास जो है कुछ करने है, तो विद्यार्थी परिषद जो है पूरा प्रयास करेगी। ऐसे विद्यार्थी परिषद ने पिछले दो दिन पहले पूरे प्रदेश में हर इकाइयों में जो है विद्यार्थी परिषद ने चाहे ADC हो चाहे DC हो SDM तक जो है कुछ विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन भी दिया है।
1: इधर प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों, प्रतिशोधपूर्ण राजनीति, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग के विरोध में आज शिमला में धरना प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन में भाग लिया। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर ताले लगाने की राजनीति शुरू की। उन्होंने कहा कि सरकार का 4 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन सरकार आज भी बंदी व तालाबंदी की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाई है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं सहित नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है और ये स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश की जनता अब कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर देखना चाहती है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनावी हार से बौखलाई कांग्रेस सरकार अब प्रशासन का दुरुपयोग कर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता लगातार जारी है। बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के यशवंत विहार में कई घरों में बारिश का पानी भर गया, जिससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में जल निकासी का कोई समाधान न होने के चलते उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस समस्या के स्थायी समाधान की प्रशासन से मांग उठाई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज कांगड़ा और मंडी जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। इसके साथ ही मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 5.25% पर यथावत रखने का फैसला किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है HP शिवा परियोजना, 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में 3500 किसान बागवान हो रहे लाभान्वित। वाचक स्वर है प्रभा शर्मा का।
3: प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बागवानी क्षेत्र प्रमुख आधार स्तंभ है। राज्य सरकार की नीतियों और बागवानों के अथक प्रयासों से आज बागवानी क्षेत्र प्रगति के नए आयाम छू रहा है। आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक तकनीकों और जलवायु अनुकूल खेती के जरिए किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में बागवानी विभाग द्वारा लागू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य बागवानों की आय बढ़ाना, पैदावार सुधारना और प्रदेश में सतत बागवानी पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत कई प्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जहां सेब बागवानी नहीं हो सकती अथवा सफल तरीके से नहीं हो पा रही है, वहीं अन्य फलों के लिए सरकार की HP शिवा परियोजना के तहत लगभग 4000 हेक्टेयर क्षेत्र को उच्च घनत्व वाले बागीचों के दायरे में लाया जा रहा है, जिससे करीब 3500 किसान बागवान लाभान्वित होंगे। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत लगभग 870 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बागीचों, हाइब्रिड सब्जियों और मसालों की खेती के दायरे में लाया गया है, जिससे लगभग 300 किसान बागवान लाभान्वित हुए हैं। संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाउस फार्मिंग का भी विस्तार किया है, जिसको लेकर सरकार ने 16 करोड़ रुपए के निवेश से पॉली हाउस के जरिए लगभग 1.89 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर किया है। इससे करीब 900 किसान बागवान लाभान्वित हुए हैं। इस पहल ने किसानों बागवानों को वर्ष भर उच्च मूल्य वाली सब्जियों और फूलों की खेती करने में सक्षम बनाया है और साथ ही उत्पादकता व आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसी के साथ ही बागवानों को ओलावृष्टि और खराब मौसम से बचाने के लिए पिछले 3 वर्षों में लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को एंटी हेल नेट के दायरे में लाया गया है, जिससे 6,454 किसानों को करीब 44 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का

0: लाभ मिला है। इसके अलावा 39 करोड़ रुपए की लागत से 12,739 किसानों को पावर टिलर, पावर स्प्रेयर और अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी गई है। खेती में आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से मजदूरों पर निर्भरता कम हुई है और काम करने की क्षमता बढ़ी है। इन उपायों ने बारिश, ओलावृष्टि से फसल को होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया है और बागवानों के लिए बेहतर आय सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। बागवानी विभाग ने बीते 3 वर्षों में लगभग 4,24,00,000 रुपए के निवेश से 53 मशरूम उत्पादन और खाद बनाने वाली यूनिटें शुरू की हैं। इन यूनिटों से किसानों, बागवानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध हुए हैं। राज्य सरकार ने फसल कटाई के बाद के प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित किया है। फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए करीब 11,44,00,000 रुपए से निजी क्षेत्र सेक्टर में 4 कोल्ड रूम, 2 कोल्ड स्टोरेज यूनिट, 2 ग्रेडिंग लाइन और 2 फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई हैं। ये सुविधाएं फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, उत्पाद की गुणवत्ता को सुधारने और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत करीब 2000 हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से जोड़ा गया है। इस पर करीब 10,70,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं और 2185 किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। सरकार का दावा है कि इन तकनीकों से जल संरक्षण के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी बढ़ी है। साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत बागवानों को आधुनिक खेती के लिए ड्रोन तकनीक से कीटनाशकों का छिड़काव और उच्च स्तर की वैज्ञानिक ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस परियोजना से बीज से बाजार की अवधारणा पर काम किया जा रहा है, जिससे युवाओं और महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, वैज्ञानिक सलाह, बेहतर विपणन व्यवस्था और मजबूत आधारभूत ढांचे पर केंद्रित इन प्रयासों के दम पर प्रदेश बागवानी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।
1: अभी आप सुन रहे हैं चर्चा, विषय था एचपी शिवा परियोजना, 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में 3500 किसान बागवान हो रहे लाभान्वित। वाचक स्वर था प्रभा शर्मा का। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद उठाइए।
3: पल्लू और राजसी गरिमा के लिए जानी जाती है।
4: और ममता जी, ये केवल एक परिधान नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और बुनकरों की अद्भुत कला का जीवंत प्रतीक है। और माहेश्वरी साड़ी का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी महेश्वर में ये स्थापित की थी। उन्होंने गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों से कुशल बुनकरों को महेश्वर बुलाकर उन्हें बसाया। उनके संरक्षण में ऐसी साड़ी तैयार की गई जो राज परिवार की गरिमा के अनुरूप होने के साथ साथ हल्की, सुंदर और उपयोगी भी थी।
3: बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और तभी से माहेश्वरी साड़ी की परंपरा आगे बढ़ती रही। माहेश्वरी साड़ी हस्तकरघे पर बहुत सावधानी और धैर्य से बुनी जाती है। इसमें सूती और रेशमी धागों का सुंदर संयोजन भी किया जाता है। पहले धागों की रंगाई होती है, फिर उन्हें करघे पर चढ़ाकर पारंपरिक तकनीक से बुनाई की जाती है। एक उत्कृष्ट माहेश्वरी साड़ी तैयार करने में कई दिन और जटिल डिजाइन होने पर कई सप्ताह तक का भी समय लग जाता है।
4: और ममता जी, ये साड़ियाँ ना वजन में बहुत ज्यादा हल्की और पहनने में आरामदायक होती है। सूती और रेशमी धागों का संतुलित मिश्रण होता है। दोनों ओर से समान दिखाई देने वाले रिवर्सिबल बॉर्डर इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और पल्लू पर सामान्यतः 5 समानांतर धारियां बनाई जाती है और गर्मियों में भी सहजता से पहनी जाती है। सादगी और शाही गरिमा का ये साड़ियाँ सुंदर मेल है।
3: और ये भी बता दें कि माहेश्वरी साड़ियों के डिजाइन महेश्वर किले, नर्मदा नदी की लहरों, मंदिरों की नक्काशी और प्रकृति से प्रेरित होते हैं। इनमें चटाई, लहरिया, हीरा, ईंट, चमेली, रूपमती, नर्मदा लहर वगैरह वगैरह पारंपरिक पैटर्न बहुत लोकप्रिय हैं।
4: और रंगों की अगर बात की जाए, रंगों में लाल, हरा, बैंगनी, नीला, काला, गुलाबी

0: सुनहरा, फिरोजी, मैरून दोहरे रंगों का भी आकर्षक संयोजन देखने को मिलता है। और इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे नीम सिल्क, शुद्ध सिल्क, सूती माहेश्वरी, टिशू माहेश्वरी और कतान माहेश्वरी, ये प्रसिद्ध हैं।
1: और चेक्स और स्ट्रिप डिजाइन वाली साड़ियां भी होती हैं। हर तरह की साड़ी का अपना एक अलग सौंदर्य है और उपयोग भी है। और महेश्वर के हजारों बुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। और सोनाली जी, एक बात और है कि इस जो साड़ी की ये परंपरा है, इससे कितने लोगों को रोजगार मुहैया होता है। जो बुनकर होते हैं, अपनी कुशलता से जब साड़ी तैयार करते हैं तो उनकी आय का जरिया भी यही होता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर ये कार्य करते हैं और उनकी मेहनत, धैर्य और सृजनशीलता ही माहेश्वरी साड़ी की वास्तविक पहचान है। ये हस्तशिल्प न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराती, बल्कि ये एक उद्योग के रूप में काम करती है। समाज और देश तक इसकी पहुंच है।
0: जी, और माहेश्वरी साड़ी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि इस साड़ी की विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता माहेश्वर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। GI टैग नकली उत्पादों पर रोक लगाने, बुनकरों के अधिकारों की रक्षा करने और इस पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये साड़ियाँ जो है देश ही नहीं विदेशों में बहुत लोकप्रिय है। विवाह, फिर धार्मिक समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी आयोजन और औपचारिक अवसरों पर इसे विशेष पसंद किया जाता है। आधुनिक फैशन डिजाइनरों ने भी पारंपरिक डिजाइनों को नए रंगों और शैली के साथ प्रस्तुत कर इसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ाया है।
1: महेश्वरी साड़ी केवल रेशम और सूत का ताना बाना नहीं, बल्कि नर्मदा की निर्मल धारा, महेश्वर के किले की भव्यता और बुनकरों के स्वप्नों से बुनी हुई भारतीय संस्कृति की अनुपम चादर है। इसे ओढ़ना, इसे पहनना मानो इतिहास, परंपरा और सौंदर्य को एक साथ आत्मसात करना है।
0: और माहेश्वरी साड़ी भारतीय हथकरघा परंपरा की एक अमूल्य धरोहर है। इसमें इतिहास की गरिमा है, संस्कृति की सुगंध है और बुनकरों के श्रम का अनुपम सौंदर्य समाहित है। और ये साड़ी हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के साथ साथ स्वदेशी हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा भी देती है।
1: और हम इस समय प्रेरणा पा रहे हैं ये गाना सुनवाने के लिए। सुनते हैं ये गाना, फिर और बातें करते हैं।

0: भाई सोनाली जी, एक बात बताइए कि लड़ाई झगड़े का असर तो मन पर होता है, पर आप बताइए कि जरा आप जब झगड़ कराती हैं, झगड़ लेती हैं अपने पतिदेव से, तो उसका असर कितनी देर तक रहता है?
1: उसका असर तो बहुत देर तक रहता है ममता जी, पर भूलने के सिवा कोई चारा नहीं होता है। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके साथ कैसे होता है?
0: मैं तो झगड़ती नहीं।
1: ऐसा नहीं हो सकता।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं,
1: ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई पति पत्नी नहीं होते कि जिनके बीच लड़ाई नहीं होती।
0: हम तो पति पत्नी के बीच तो झगड़ते ही हैं सोनाली जी। हमने भाई बहनों में बहुत झगड़े किए हैं और परिवार में कौन ऐसा है जिससे हमारा झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन वो झगड़ा ना बहुत क्षण के लिए होता है और थोड़ी देर बाद झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं कि झगड़ा किस बात पे हुआ था। जैसे जब दो बहनें हम झगड़ा करते थे तो बाद में सोचते थे कि आखिर झगड़े का मुद्दा क्या था। घर वाले पूछते थे बात किस बात, झगड़ा किससे शुरू कैसे हुआ। कभी बैठने की जगह को लेकर कि हम यहाँ बैठेंगे, कभी सोने को लेकर कि यहाँ हम सोएंगे और इस बिस्तर पे तुम, तो पहले हम जाएंगे या पहले हम ये किताब पहले हम पढ़ेंगे, ये मैगजीन पहले हम पढ़ेंगे, इस पर हमारे भाई बहनों में ज्यादा झगड़ा हुआ। और तो और रेडियो सुनने के लिए कि कोई तेज आवाज में सुनना चाहता है, कोई धीमी आवाज में, तो उस पर बहुत जम के झगड़े हुए। तो ये जो छोटे छोटे झगड़े हैं ना, ये कभी कभी यादगार हो जाते हैं। ये प्रेमिल झगड़े हैं, स्नेहिल झगड़े।
1: ये नहीं, ये घर घर की कहानी होती है। पर भले ही झगड़े में मतभेद हो जाए पर मनभेद नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हमारे श्रोताओं ने बहुत सफाई से, प्यार से इस बात को छुपा लिया है, अपनी बात उजागर नहीं की। अब हमने
1: डर
0: तो
1: गए होंगे ना
0: कि पत्नी से डांट खानी पड़ेगी,
1: कि उन्होंने आपने वहां लिख दिया, सबको पता चल गई घर की बात।
0: तो हमने तो इसलिए बता दिया और आपने भी बता दिया कि हम तो झगड़ते हैं बाकायदा।
1: ये तो बहुत ही तो सामान्य सी बात है।
0: हाँ, लेकिन झगड़े का असर जब घर पर होता है, बच्चों पर पड़ता है, तब फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए। वहां पर झगड़े पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लड़ाई झगड़ों का प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, फिर बच्चों का हृदय तो बहुत कोमल होता है। ऐसे माहौल में वे हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं। घरेलू तनाव के कारण बच्चे डिप्रेशन, अत्यधिक चिंता और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। उनका मानसिक विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर हिंसक और दूसरों के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि वे अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते।
1: एक हमारे साथी ने यह भी लिखा है ममता जी कि अभिभावकों की लड़ाई में बच्चों पर असर। मतभेद तो सभी परिवार में चलते ही रहते, लेकिन मन का भेद कभी नहीं होना चाहिए। 31 तारीख को मेरी सहेली के बेटे बहू ने तलाक लिया। नन्ही सी बेटी 4 साल की है, उसे माता पिता दोनों चाहिए। वीडियो कॉल करती है और पापा के पास जाने की जिद भी करती है। माता पिता तो अपने निजी कारण से अलग हो ही गए। सोचती हूँ कि अब उस बच्चे की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आएंगे और वे उन सबको किस तरह लगी। इन्हीं बात कितनी, यानी कह लीजिए कि भावनात्मक रूप से वो बच्ची जो है थोड़ी सी परेशान भी होगी कि वो पापा के पास भी जाना चाहती है और मम्मी के पास भी रहना चाहती है।
0: बिल्कुल।
1: पर किसी कारणवश दो अलग अलग हो गए हैं, पर ये विचार करके ही हमें तकलीफ हो रही है। तो उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी, ये हम सोच भी नहीं सकते।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये हमारी जो श्रोता हैं इन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही है। ऐसे अखबार में एक घटना हमने पढ़ी थी जिसमें निचोड़ ये था उस घटना का कि पति पत्नी ने तलाक लिया और कोर्ट से बाहर आ रहे हैं पति पत्नी, और छोटी बच्ची है वो जिद कर रही है अपने माता पिता के पास जाने के लिए। पिता उसे रखने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका लालन पालन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, उसकी मेरी नौकरी है। और माँ ये कह रही है कि इसका भरण पोषण मैं कैसे करूँगी क्योंकि अभी तक उसको गुजारा भत्ता नहीं मिला है और वो कहाँ से इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन करेगी। तो दोनों अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं और बच्ची जार जार आंसू रो रही है कि वो कहाँ जाए, उसे चाहिए माँ का साथ, पिता का साथ। तो ये जो स्थिति होती है और दयनीय स्थिति है, ऐसी नौबत आने नहीं देना चाहिए। कई बार माता पिता के बीच जो टकराव होता है, अब हम सभी ये भी कहते हैं कि जब घर में तनाव ज़्यादा हो जाए, लड़ाई झगड़े इस हद तक पहुँच जाए, तो अलग होना बेहतर होता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं तो ये नहीं सोचते कि इस अलगाव का आने वाली पीढ़ी पर क्या असर होने वाला है। बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा, बच्चा किसके पास जाना चाहेगा, क्यों वो माँ के पास अकेले रहना चाहेगा, क्यों वो पिता के पास अकेले रहना चाहेगा। उसे तो दोनों चाहिए ना, उसे माता पिता का घर भी चाहिए, प्यार भी चाहिए और

0: माता पिता के घर, मतलब नानी का घर भी चाहिए, दादी का घर भी चाहिए, तो दोनों जब छूटते हैं, दो में से कोई छूटता है, तो बच्चे के कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि बाल मन बहुत कोमल होता है, माता पिता क्या किसी भी लड़ाई का असर उनके मन पर बहुत ज्यादा होता है। वही एक साथी लिखते हैं कि माता पिता के बीच होने वाले लगातार झगड़ों और मन मुटाव से बच्चों के कोमल मन पर बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ता है। इससे बच्चों में असुरक्षा की भावना, मानसिक तनाव और पढ़ाई में एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं पैदा होने लगती है, मानसिक और भावनात्मक असर डालती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों पर ही पड़ता है, माता पिता पर भी इसका असर पड़ता है। हमारे परिवार में ऐसा हुआ है। ये तो अच्छा है कि परिवार के लोगों को संभालने से बहुत कुछ अनहोनी नहीं हो सका, पर एक परिवार का टूटना तो दुखद ही रहा।
0: बिल्कुल सही है, और कभी भी टूटना या तोड़ना अच्छा नहीं होता है, तो चीज़ों को टूटने से बचाना चाहिए। चीज़ें भी टूटती हैं तो भी बुरा ही लगता है, लेकिन कई बार स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, तब उस ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब नियमित लगातार घर में हिंसा होने लगती है, शारीरिक हिंसा और पटक फोड़ होने लगता है, बर्तन पटकना, ये सब जब स्थिति ज़रूरत से आगे बढ़ जाती है, तब फिर ऐसे में अलगाव बेहतर होता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है, अब ज़माना बदल गया है, अब हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं इन चीज़ों की, लड़ाई झगड़ों के लिए काउंसलिंग होता है, पति पत्नी के अलग काउंसलिंग होती है, और काउंसलर्स मतलब दोनों के बातों को सीक्रेट रखते हैं, और इस मामले में आपके पास सर्च करने के लिए जरिया है बहुत सारा, लोगों से पूछ सकते हैं, अखबार है, गूगल है, जहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो झगड़ों को अवॉइड करें, चाहे उसके लिए आपको जो करना हो, काउंसलिंग करना हो, सलाह लेना हो, दोस्तों मित्रों या परिवार वालों से सलाह लेनी चाहिए, उनको बीच में लाना चाहिए ताकि आपके झगड़े कम हो, क्योंकि उसका असर निश्चित रूप से बच्चों पर पड़ता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का घर बच्चों के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है, जब इस सुरक्षित जगह पर ही लगातार तनाव और कलह बनी रहे तो बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि जिन घर में रोज झगड़े होते हैं वहां के बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अभिभावकों को यह समझना होगा कि बच्चों के सामने लड़ना उनके बचपन को छीनने जैसा है, यदि मतभेद हो भी तो उन्हें बच्चों के सामने लाकर बंद कमरे में शांति से सुलझाना चाहिए। और बच्चों की सिर्फ यही इतनी नहीं होती है खामियां, आगे चलकर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, एकांतवासी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, अंतर्मुखी हो जाते हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा हिंसक भी हो जाते हैं। और सोनाली जी, हम आपको बताएं कि एक कपल के बारे में उन्होंने हमें बताया कि उनके बीच झगड़े होते थे, तो जब झगड़े शुरू हो तो कमरा बंद कर लेते थे और म्यूजिक चला देते थे, रेडियो या कोई भी गाना, ताकि झगड़ने की आवाज़ बाहर ना जाए, और फिर जम के झगड़ा करके फिर बाहर आते थे। तो ये भी एक तरीका है झगड़ने का,
1: यानी बच्चों को पता ही नहीं चला कि अंदर क्या हुआ, अंदर तो डांस कर रहे थे या गाना गा रहे थे मम्मी पापा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जो जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे वैसे ही उसका अनुसरण करते हैं, तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि बच्चों के सामने बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े ना।
0: जब झगड़े की नौबत आए तो एक प्यारा सा गाना गुनगुना लेना चाहिए एक दूसरे के लिए, तो झगड़े टल तो जाते हैं। सुनते हैं ये गाना।

तेरा मेरा साथ रहे, हमारा और श्रोताओं का साथ बना रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर कुछ बातें और करते हैं इस संदर्भ में।

0: आवाज में सुनना इस पर से आपके बीच में लड़ाई होती थी।
1: हमारी बहनों, दो बहनों की बहुत लड़ाई होती थी।
0: तो ऐसे ही इसी तरह का एक कमेंट हमारी सखी ने लिखा, ये कहते कि रेडियो तेज सुना इस पर हमारा आज भी झगड़ा होता है, पर वो तो मस्ती में फिर हम रेडियो लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बात नहीं करते, फिर वही मस्ती वाली बात है। कितनी अच्छी बात है ना?
1: बिल्कुल। और ये भी होता था कि मतलब होता होगा हमारे श्रोताओं के बीच भी कि ये रेडियो तो तब उस समय एक ही रेडियो हुआ करता था।
0: हाँ।
1: अब तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं जो कई कई सेट होते हैं घरों में, आप एक किचन में सुन लो, एक दूसरे कमरे में,
0: और मोबाइल से भी सुनते हैं,
1: मोबाइल पे भी सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे श्रोता बताते रहते हैं। हमारे तो एक श्रोता हैं जिन्होंने बताया था कि उनके पास 11 रेडियो सेट है और वो सब बड़े वाले रेडियो सेट। तो अभी शौक भी है, अगर रेडियो से इतना प्यार है तो लोग इस तरह से रेडियो रखते हैं। बहरहाल, बात लड़ाई झगड़े की चल रही थी और तकरार की चल रही थी, तो एक श्रोता ने लिखा है कि लेखिका शिवानी जी के उपन्यास में पढ़ी थी मैंने, गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा होता है उतना ही हमारे प्यार की दीवार मजबूत होती है, मतलब जितनी लड़ाई हो उतनी दीवार मजबूत होती है, इसलिए पति से खूब लड़िए थोड़ी देर के लिए। वो कहते हैं ना कि मियाँ बीबी के झगड़ा दूध में पड़ी मलाई के समान होना चाहिए और मलाई तुरंत हट जानी चाहिए।
0: तो यानी लड़ाई झगड़ा तब होगा जब हम आपस में बातचीत करेंगे, हम अगर हम किसी से हेल्प लेंगे, हम किसी की मदद करेंगे तभी तो बातचीत करेंगे। यानी उस बातचीत के पीछे घर में जो है ना, पति पत्नी एक दूसरे की मदद भी करेंगे, तो फिर थोड़ी बहुत मनमुटाव होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। पर ये मनमुटाव बहुत बड़ी लड़ाई में परिवर्तित ना हो जाए और इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर ना पड़े, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और एक साथी ने हमारे लिखा है कि लड़ाई किसी के भी बीच हो, चाहे वो बच्चे या अभिभावक हो या हमारे पड़ोसी हो, सभी पर बुरा असर पड़ता है। लगातार हो रहे झगड़े का मानसिक और भावनात्मक असर बच्चों पर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे ज़रूर होते हैं लेकिन ऐसे माहौल में मन के कच्चे बनने में ज़रा देर नहीं लगती। घर के माहौल को देख स्कूल में या बाहर किसी के साथ भी आक्रामक बनने की संभावना बढ़ जाती है, इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ने लगता है, उनका ग्रेड कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: अब एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे बड़ी बात पति पत्नी को झगड़ना ही क्यों है। अब ये तो सवाल बहुत बड़ा है, क्यों झगड़ना है, मुद्दा क्या होता है?
0: जानबूझ के कोई लड़ता नहीं।
1: मुद्दे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, घरेलू झगड़े तो बहुत ही छोटे छोटी बातों पर कि तुमने ऐसा कहा, नहीं नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, अरे तुमने मुझे इस बात के लिए याद नहीं दिलाया, देखो ये तौलिया यहाँ पर रख दी, चादर गीली तौलिया रख दी,
0: सब्जी लाने के लिए बोला था तुमने एक ही तरह की सब्जियां लेके आ गए, सारी हरी वाली हरी पत्तेदार सब्जी लेके आ गए, अभी मुझे साफ करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, लड़ने के लिए कोई
1: खास बड़ा कारण नहीं होता, बहुत छोटे कारण होते हैं जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं, और पति पत्नी के बीच या फिर कई बार जब व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है तो बड़े झगड़े भी होते हैं, तो दीवार खड़ी हो जाती है। मान लीजिए कई बार संबंधों की बात आती है, संबंधों में दरार जब पैदा होती है तो फिर उन झगड़ों को बचाना ही बेहतर होता है। और वो कहा भी जाता है ना कि बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है, बच्चे तो भावनात्मक रूप से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि कई बच्चों का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है और पढ़ाई ऐसी उनकी चौपट हो जाती है कि वो फिर आगे उनका करियर ही नहीं बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
0: बस हमें सामंजस्य रखना चाहिए रिश्ते के बीच में, कि भाई बहुत ज़्यादा उसे किसी भी चीज़ को ना बहुत अधिक हम महत्व देते हैं, कि वही वही बात, ताने मारना, बार बार आलोचना करना।
1: वैसे एक बात बताइए, सुना लीजिए, जब आपके पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो आप क्या करती हैं, कैसे निपटारा करती हैं?
0: भाई मैं तो ऐसे करती हूँ, पैर में चप्पल पहनती हूँ, निकल जाती हूँ।
1: पति महोदय सुन रहे होंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ी देर बाद एक दूसरे से जिसने भी जो भी सोचे कि हम समझौता कर ले, एक चाय का ऑफर, एक कॉफी का ऑफर, कुछ खाने के लिए, चाय पीनी है क्या,
0: मैं बना रहा हूँ तुम पियोगी क्या,
1: हाँ ये वाला, उसके बाद मुझे लगता है कि झगड़े खत्म हो जाते हैं। या कोई मीठी सी चीज रखी है घर में, तो मैं तो ये खाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, दोनों को करना चाहिए, तो आपको भी खाना है, या फिर चलो यहाँ घूमना चाहते हैं, चलना है क्या तुम्हें मॉर्निंग, मतलब सुबह की सैर के लिए, शाम को घूमने, या चलो पिक्चर देखने चलते हैं।
0: अरे बहुत सारे हैं उसके, तो बहुत सारे की साड़ी ला दी, गिफ्ट ला दी, हाँ, चलिए ये साड़ी खरीदना
1: तुम्हारे लिए ले आए,
0: या फिर क्षमा कर देना सबसे जरूरी बात।
1: लेकिन वहां पर ईगो आ जाता है ना, बीच में जो अहम अहम नाम की दीवार है,
0: बहुत मोटी दीवार होती है
1: वो ऐसा करने नहीं देती है। चाय बनाने तो जा रहे हैं, मन कर रहा है कि पूछ लेते हैं, नहीं नहीं इसने तो मुझे बहुत बुरा बुरा बोला था, नहीं पूछते हैं, छोड़ो हटाओ।

0: ही नहीं, ये आज तो मैं पूछूंगी ही नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए मैं तो बात करने ही नहीं वाली।
1: तो सबसे जरूरी है ये जो अहम की दीवार है इसे तोड़ देना। और हमारे लिए इस समय क्या जरूरी है?
0: गाना सुनना।
1: सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गाना।

0: माफ करिए सोनाली जी, जरा कमेंट्स जो पढ़ रही है ना, धीरे धीरे चुपके चुपके जरा जोर से पढ़ के सुनाइए।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि भैया,
0: अरे मैंने आपसे माफी मांगी, आपने कुछ कहा ही नहीं।
1: ममता जी
0: ये होता है माफी का असर कि इतनी खिलखिलाहट खिल जाती है
1: और इतने प्यारे अंदाज में कोई बोलेगा ना तो
0: दिल आ जाता है। क्या लिखा है?
1: एक हमारे सखी ने कहा है कि ये जो है ना, ये क्षमा करने का, यानी ये कहने का कि भाई मैं चाय बनाऊं क्या, नहीं आपने जो बोला था तो इसमें ना मन में होता है कि ऐसा बोल दे कि चलो मैं चाय पर मन, वो जो दिल की बात है ना, जुबा तक ही नहीं आती है।
0: हाँ भाई, अहम की दीवार जो होती है ना, तो उस अहम की दीवार को तोड़ना है और जब वो टूट जाएगा तो ये आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज हम लोगों की बातों से जितने झगड़े हुए होंगे सुलट के जाएंगे,
1: वो बिल्कुल सुलझने वाले हैं
0: शाम तक चाय के साथ।
1: कोई तो भी चाय बनाएगा, कोई पकोड़े बनाएगा, है ना।
0: हाँ बिल्कुल, और कोई चटनी भी बनाएगा। अभी चटनी की रेसिपी भी बतानी,
1: बहुत सारी रेसिपीज आई है हमारे, बहुत सारी सखियों ने अलग अलग तरह की रेसिपीज लिख कर भेजी जो हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी अच्छी अच्छी चटनियां भी बन सकती है। शब्दों की चटनी बहुत बनी है आज।
0: लेकिन क्षमा के बारे में हमारे श्रोताओं ने जो लिखा वो भी हम एक एक करके पहुंचा देते हैं उन तक। एक हमारी सखी है जो नियमित रूप से लिखती है, इन्होंने लिखा है कि क्षमा के धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती

0: दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय समय पर ग्लानि की अनुभूति होती हो, लेकिन हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं और इसका दर्द भी हम यदा कदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
1: क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, क्षमा मांगने और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए। पर यकीनन क्षमा करने में स्वयं को बहुत हल्कापन हो जाता है और बड़े भारी मानसिक बोझ से हम बरी हो जाते हैं। हमने इसको खुद आजमाया है। क्या बात है।
0: कई बार क्षमा मांगकर दुख भी होता है, अगर गलत बात के लिए क्षमा मांगनी पड़े, जैसे कई बार जबरदस्ती आपको माफी मांगनी पड़ जाती है दबाव के चलते, परिवार में, समाज में, दफ्तर में या कहीं ऐसी सार्वजनिक स्थल पर आपको जबरदस्ती सॉरी कहना पड़ता है, तो वहाँ आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान वहाँ
1: जाता है,
0: हाँ, चोटिल होता है। तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी के दबाव में आकर माफी ना मांगे।
1: जी
0: बिल्कुल।
1: वैसे एक साथी ने लिखा है कि पहले मेरा स्वभाव था, गलती चाहे हो ना हो मैं क्षमा मांग के बात को खत्म कर देना ही पसंद करती थी, पर जब देखा कि इसका भी गलत ही लोग फायदा उठा रहे हैं, तब मैंने कुछ अपने को रिजर्व करा और थोड़ा सा चुप रहकर निग्लेक्ट करना मुझे बेहतर ऑप्शन लगा। ये भी ऑप्शन अच्छा है कि भाई आप थोड़ी सी दूरी बना ले तो फिर इन सब समस्याओं से थोड़ा बहुत छुटकारा तो हम पा सकते हैं।
0: अब क्षमा के जब हम टिप्पणियां पढ़ रहे हैं तो एक टिप्पणी हमें मिल गई है जो झगड़े वाली, जो क्षमा के साथ मैच हो रही है। इन्होंने लिखा है, हमारी सखी है, हमारा और हमारे घर में झगड़ा होता है कि साहब जी को टीवी देखना पसंद है और मुझे रेडियो सुनना। तो मैं कमरे में जब रेडियो चलाती हूँ और वो टीवी चलाते हैं, मैं तो मैं दूसरे रूम में फ़ोन लेकर चली जाती हूँ। उनका कहना है कि रहो भी कमरे में, फिर भी मैं टीवी तो चलने देती हूँ, म्यूट कर देती हूँ और अपना रेडियो चलता रहता है। हम लोग दोनों रेडियो सुनते हैं और वो टीवी देखते हैं।
1: आप कान में हेडफोन लगा लीजिए ना।
0: हाँ, वो भी एक तरीका
1: है। ऑप्शन अच्छा है।
0: हाँ, और ये भी तरीका है कि अपनी मतलब कि रेडियो सुनवा देती हैं जबरदस्ती मतलब चित्र दिख रहा है और रेडियो सुना जा रहा है, ये भी एक तरीका है। और
1: एक साथी ने लिखा है, क्षमा बड़न को चाहिए, चोटन को उत्पात। क्षमा बड़प्पन की निशानी है। क्षमाशीलता कमजोरों का नहीं बलवानों का गुण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि आत्मा को शुद्ध करती है और रिश्तों में जहर घोलने वाली नकारात्मकता को समाप्त करती है।
0: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और भी तो कुछ टिप्पणी
1: है। एक साथी लिखते हैं कि क्षमा धरातल पर दो व्यक्तित्व भरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय समय पर ग्लानि की अनुभूति होती हो, किंतु हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं, इसका दर्द भी हम यदा कदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
0: क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि क्षमा मांगने में और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी कभी क्षमा करने में ज़्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज़्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए। दरअसल क्षमा करने वाला ज़्यादा बड़ा कहलाता है क्षमा मांगने वाले से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्थिति ऐसी बन जाती है कि जहाँ माफ़ी के लायक वो काम नहीं होता है, तो वहाँ पर जिसने माफ़ किया वो बड़ा हो जाता है।
1: पर एक बात ये भी है ममता जी, कि जो रिश्ता होता है ना, कांच की तरह होता है कि अगर कांच चटक जाए तो फिर उसे जुड़ता नहीं। इस रिश्ते में दरार हमेशा के लिए रहती है, बस कोशिश हो कि उसे टूटने से, बिखरने से बचा दिया जाए। एक साथी कहते हैं कि सिर्फ दो अक्षरों का शब्द है, लेकिन उस दो अक्षरों के शब्द में अपार शक्ति है। क्षमा, जिसे विरास से भूषणम कहा जाता है, किसी से क्षमा मांगना ये अपनी निर्बलता नहीं है। क्षमा स्वतंत्र रूप से उपचार करने वाली, सुख और शांति के द्वार खोलने वाली कुंजी है, जो सबसे बड़ा उपहार है।
0: क्या बात है। अब सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हुए सुनते हैं ये गाना।

0: सोनाली जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी बात बहुत छोटी होती है और हम ये सोचते हैं कि वो माफ़ी मांगे, और वो सोचते हैं पहले हम बोले, पर किसी को बढ़कर बात कर तो लेनी चाहिए।
1: यही तो बात आपने कही थी ममता जी, कि उसके बीच में अहंकार की मोटी सी दीवार होती है, पर बात कर वो दीवार को तोड़ देना चाहिए।
0: बिल्कुल, और एक पल आपका आत्मसम्मान चोटिल होता है, लेकिन जैसे ही झगड़े खत्म होते एकदम नॉर्मल सा हो जाता है माहौल, तो इसलिए वो नॉर्मल कर लेने में ही भलाई है,
1: सभी अगर... की और खासकर बच्चों की भलाई है।
0: हाँ बिल्कुल। और एक श्रोता के कई श्रोता आज लिख रहे हैं कि आपका ये जो डिस्कशन है प्रोग्राम में वो बहुत अच्छा है, और जो विषय आपने चुना है बहुत अच्छा है, ऐसा लिखा है।
1: और एक साथी ने लिखा है कि हमारी भी लड़ाई खत्म हो गई है और अच्छा, अब हम चाय पीने वाले हैं।
0: क्या बात है भाई। ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और सोनाली, हमारा तो उद्देश्य यही होता है कि हमारी बात दूर तक पहुंचे और देर तक असर करे। तो अगर किसी श्रोता ने ये लिखा है तो हम सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप में से किसी से झगड़ा हुआ है, अनबन हुई है, तो बस एक प्याला चाय बनाइए एक दूसरे के लिए और
1: मिटा दीजिए दूरी,
0: माफी मांगिए और खत्म कर दीजिए झगड़ा।
1: एक और, अब चटनी की ओर बढ़े।
0: हाँ, चटनी भी बना सकते हैं,
1: अमरूद की चटनी। इसके लिए एक मध्यम आकार का अमरूद है पका हुआ, एक कप धनिया, दो तीन हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, स्वादानुसार सफेद नमक, एक नींबू का रस और दो तीन चम्मच पानी। चटनी बनाने की विधि, अमरूद को अच्छे से धोकर पोंछ ले, इसके आगे पीछे का हिस्सा काट दे, अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े करे और इसके कड़े बीज बाहर निकाल कर रख दे। मिक्सी के जार में कटे हुए अमरूद, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डालें। अब इसमें जीरा पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक और नींबू का रस मिलाएं और ज़रूरत के अनुसार दो तीन चम्मच पानी डालकर इसे दरदरा या अपने पसंद अनुसार पीस लें और आपके स्वादिष्ट और चट

0: अमरूद की चटनी तैयार है, इसे पराठे या भोजन के साथ परोसे।
1: क्या बात है भाई, श्रोता हमारे ये आजमाएंगे। अब एक चटनी की रेसिपी बहुत लंबी सी लिखी है, है तो कहने को चटनी जो बहुत छोटे छोटी मात्रा में परोसी जाती है, लेकिन रेसिपी बहुत लंबी है। देखते हैं क्या लिखा है। तिल और सूखे धने की चटनी, ये चटनी मेरी नानी बनाया करती थी। सामग्री इस तरह से है कि सफ़ेद तिल आधा कप, साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच, सूखी लाल मिर्च 4 से 5, लहसुन की कलियां और ज़ीरा 1 छोटा चम्मच, कड़ी पत्ता और हींग 1 चुटकी, नमक स्वाद के अनुसार। बनाने की विधि, एक भारी कढ़ाई में तिल को धीमी आंच पर हल्का चटकने तक भून लें, इसे एक प्लेट में निकाल लें। उसी कढ़ाई में साबुत धनिया, ज़ीरा, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालें। इन्हें धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि मसालों से अच्छी खुशबू ना आने लगे। इन्हें भी तिल वाली प्लेट में निकाल लें। अब लहसुन को सूखा भून लें, सारी सामग्री को ठंडा होने दें, फिर इसमें नमक हींग डालकर दरदरा पीस लें। स्वादिष्ट चटनी तैयार है। ये काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होती और इसे आप बाजरे या मक्के की रोटी, थेपला या गरम पराठे के साथ खा सकते हैं।
0: एक सखी ने करौंदे की चटनी लिखकर भेजी है। ये करौंदे को काटकर उसके बीज निकाल दीजिए, उसमें लहसुन हरी मिर्च डालकर पीस लें, ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल मिला दें, स्वादिष्ट चटनी तैयार होती है। और कदम्ब को काटकर सूखी भुनी लाल मिर्च, भुना जीरा, धनिया, काला नमक और थोड़ा गुड़ के साथ पीस लें। इसमें लहसुन नहीं डालते, आपकी इच्छा हो तो आप डाल दें। ये खट्टी मीठी चटनी रोटी और पराठे के साथ अब बहुत अच्छी लगती है। करौंदी की चटनी में आप धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, पर बरसात के दिनों में हम पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कम करते हैं। करौंदा लहसुन मिर्च के साथ थोड़ा मोटा मोटा पीसा जाता है। ज़्यादातर लोग इसे पकाए हुए भुट्टे के साथ खाते हैं। और एक ने लिखा है कि चटनी बोलते ही मुंह में पानी आ जाता है। चटनी खाने में आजकल प्रमुख है। चटनी कई प्रकार की बनाई जाती है। टमाटर की, हरी मिर्च, लहसुन की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनती है। वैसे चटनी पुदीने की बनती है। धनिया, हरी मिर्च, थोड़ी अदरक, टमाटर, लहसुन सबको मिलाकर बारीक काटकर मिक्सी में पीस लिए चटनी तैयार होगी। गरम गरम पराठे या रोटी के साथ खाओ तो बहुत मज़ा आएगा। सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी सब्जी से बोर हो जाओ, घर में चटनी बना लो, मज़ा आ जाएगा।
1: क्या बात है। तो आज सोनाली जी, जो आज ये तकरार वाली चाय बनेगी उसके साथ थोड़े पकौड़े और ये चटनी,
0: चटनी है ना? क्या बात है। ये ऐसी तकरार बार बार होनी चाहिए
1: कि उसके बाद चाय पकौड़े मिले।
0: मिल जाए।
1: तो चलिए अब प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं।

0: भाई इस प्रोग्राम से जाने का मन कभी नहीं करता है और लगता है कि प्रोग्राम का समय कम पड़ गया है।
1: मुझे
0: और
1: लगता है श्रोताओं का भी यही हाल होगा, है ना?
0: उन्हीं की बात पे कह रही हूँ क्योंकि वही लिख रहे हैं कि जल्दी से बीत जाता है ये एक घंटा। हमारे लिए भी ऐसा ही एहसास होता है, लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आलोक शर्मा मौजूद हैं। आलोक, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद यूनुस भाई, यहाँ आना अपने आप में एक सम्मान की बात है। विविध भारती में, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, और बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने विविध भारती में बतौर आपातकालीन उद्घोषक तीन दिन बिताए हैं। तीन रातें असल में। उन दिनों जब हम लोग वाणी कोर्स किया करते थे, तो शुरुआत में जो आपातकालीन उद्घोषक होते थे उनको रात की ड्यूटी मिलती थी।
1: बिल्कुल।
2: तो तीन रातें मैंने
1: ओवरनाइट ट्रांसमिशन
2: बिताई हैं।
1: सही है। लेकिन चूंकि बचपन को याद किया, तो बचपन जो है आलोक आपका, वो कॉमिक से जुड़ा हुआ है, ये चस्का कहाँ से लगा था?
2: बचपन बड़ा मज़ेदार है। मेरा बचपन असल में कॉमिक्स और रेडियो दोनों से जुड़ा हुआ था।
1: बिल्कुल।
2: तो क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे, और मेरी जो माता जी हैं उनको रसोई संभालनी पड़ती थी, दुनिया भर के मेहमान होते थे घर में, तो सबको संभालना पड़ता था। और मेरे ख्याल से मैं शायद 5 या 6 महीने का रहा हूँगा, तो एक छोटा रेडियो था, वो मेरे बगल में वो चला दिया करती थी, और मैं वो रेडियो सुन के मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है। तो मेरे ख्याल से रेडियो मेरे जीवन में

0: फ्लैश गॉर्डन बहादुर, तो इन सबके साथ मैं बड़ा हुआ एक तरीके से कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये वो दौर था जब कॉमिक्स किराए पर भी मिल जाती थी और
0: जी हाँ जी
1: दोस्तों से
0: हाँ,
1: अदला बदली करके पढ़ी जा सकती थी।
0: वो दौर मेरे जीवन में थोड़ा बाद में आया, क्योंकि मेरे ननिहाल में इतनी किताबें थी कि मुझे किराए पे
1: बाहर से
0: किताबें लेने
1: लेने की
0: जाने की
1: जरूरत
0: ज़रूरत
1: नहीं
0: ही
1: थी।
0: नहीं थी, क्योंकि उस समय में बाल पत्रिकाएं भी बहुत होती थी, पराग, नंदन, चंदा मामा,
1: बाल
0: गुड़िया, बाल
1: भारती,
0: भारती, राजा भैया, कई किताबें थी,
1: ढेर
0: कई
1: ढेर,
0: तरीके,
1: बहुत
0: ढेरों ढेर।
1: सारी
0: और
1: थी।
0: पराग तो मैं अभी भी कहता हूँ कि पराग का बंद होना मेरे ख्याल से हमारी जो पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। पराग, धर्मयुग,
1: बिल्कुल,
0: जो वो सारी किताबें आ रही थी, तो ये सारी किताबें जो साप्ताहिक थी वो हफ्ते के हफ्ते ननिहाल आती थी। इंद्रजाल कॉमिक्स मेरे ख्याल से पाक्षिक, और पाक्षिक के बाद साप्ताहिक हो गई थी, मासिक किताबें आ रही थी, तो किताबों का एक पूरा पुलंदा था वहाँ पे, जब भी जाओ तो सब मिल जाता था। और मेरे नाना जी डॉक्टर थे, मगर वहाँ एक आज़ादी थी उस घर में, तो ऐसा नहीं कि फिल्मी पत्रिकाओं को नीची निगाह से देखा जाए, तो वहाँ मायापुरी भी थी, वहाँ माधुरी भी थी, वहाँ फिल्मफेयर भी थी, हर तरह की किताबें थी, और उन किताबों के बीच मेरा बचपन गुजरा।
1: वाह,
0: तो जो मुझे पसंद आती थी मैं वहाँ से उठा के ले आता था मेरे पास, और मैंने पढ़ना सीखना और कॉमिक्स पढ़ना सीखना दोनों मेरा एक साथ हो रहा था, तो शिक्षा और कॉमिक्स दोनों साथ में चल रही थी।
1: बिल्कुल। तो ये जो कॉमिक्स का चस्का है, इसका सबसे मजेदार बात यह है कि घर पर कोई विरोध नहीं था।
0: पूरा ये नहीं कहूँगा कि पूरा विरोध नहीं था क्योंकि थोड़ा होता है ना कि आप जुनूनी पाठक बन जाते हैं एक टाइम पे, फिर आप खाना पीना छोड़ के पढ़ने लगते हैं, सुध बुध
1: बिल्कुल,
0: छोड़ के पढ़ने लगते हैं,
1: कोर्स की
0: और
1: किताब के अंदर
0: कोर्स की
1: कॉमिक्स
0: किताब के अंदर
1: रखिए।
0: कॉमिक्स रख के पढ़ने लगते हैं। तो ये तो हुआ, और ये इस हद तक चला गया वो जुनून के फिर तो घर पे थोड़ा विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं लगे हैं। तो ये एक मैं कहूँगा कि बाकी दुनिया में अगर ये 100% हो रहा था तो मेरे साथ 30% हो रहा था, मगर हो रहा था
1: जरूरी
0: कि
1: तौर पर हो
0: हाँ,
1: रहा था।
0: ज़रूरी तौर पे
1: हाँ।
0: हो रहा था कि एक और कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ कॉमिक्स पढ़ रहा है पूरे समय। तो ये हुआ, मगर बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत ज़्यादा विरोध नहीं था, पापा
1: क्या
0: जी को थोड़ा बहुत
1: बाकी
0: था।
1: बच्चे जो कुछ पढ़ रहे थे, आप उससे कुछ अलग पढ़ रहे थे या आप भी सेम चीजें पढ़ रहे थे?
0: नहीं, मैं मेरे ख्याल से उनसे काफ़ी अलग चीज़ें पढ़ रहा था, क्योंकि जो मेरी पीढ़ी के पाठक हैं वो आमतौर पे मनोज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स वाले पाठक रहे हैं। मैं क्योंकि वो चीज़ें भी पढ़ रहा था जो मेरे मामा या मौसियाँ पढ़ रहे थे, तो मेरे से एक पीढ़ी ऊपर, तो उसमें इंद्रजाल कॉमिक्स भी थी,
1: बिल्कुल,
0: उसमें इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया थी, धर्मयुग में बच्चों का कोना था, कार्टून कोना डब्बू जी था, जो मेरी जनरेशन के, मेरी पीढ़ी के लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन मैं वो पढ़ रहा था। इसके अलावा भी, क्योंकि मैं भिलाई में पला बढ़ा, औद्योगिक नगर है छत्तीसगढ़ का, पहले वो मध्य प्रदेश था, तो भिलाई में इंडो रशिया कोलैबोरेशन में ये स्टील प्लांट बना था, तो रूस और भारत के लोग वहाँ रहते थे शहर में,
1: बिल्कुल।
0: तो हमें बहुत सारी इंटरनेशनल कॉमिक्स भी मिल जाती थी, तो मार्वल, डीसी, एस्ट्रिक्स, ओबेलिक्स, टिनटिन, ये भी उपलब्ध थी हमें पढ़ने के लिए। बहुत लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन मुझे इनका भी चस्का उसी समय से लग गया था।
1: बल्कि रशियन किताबें भी जो
0: लोक
1: उस जमाने
0: कथाएं
1: में
0: हैं,
1: हिंदी
0: हाँ
1: अनुवाद आया
0: हाँ
1: करते थे, वो भी मौजूद
0: बेहतरीन,
1: रहे होंगे।
0: हाँ, यूक्रेनी लोक कथाएं,
1: बिल्कुल,
0: रूसी लोक कथाएं, गोर्की की कहानियां,
1: बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन तक
0: मुल्ला
1: छापा
0: नसरुद्दीन, हाँ मुल्ला
1: था।
0: नसरुद्दीन था एक बहुत अच्छा
1: राधुका
0: कैरेक्टर,
1: प्रकाशन
0: हाँ राधु का
1: पूरा।
0: प्रकाशन, और उसमें कैरेक्टर होता था नाजानू, हाँ
1: क्या
0: नाजानू की
1: बात है,
0: कहानियां।
1: वाह।
0: और एक मैगजीन आती थी मीशा, तो मीशा में एक कैरेक्टर होता था, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, वो दलिया खाता था और उसको ताकत आ जाती थी, तो ऑलमोस्ट पोपाई पोपाई के जैसा था, मगर
1: बिल्कुल,
0: काफ़ी मज़ेदार कैरेक्टर्स थे ये, तो इनकी भी उपलब्धता थी, और उस समय तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में थी,
1: क्या बात
0: तो
1: है,
0: मतलब मीशा तो मेरे ख्याल से सबने पढ़ी है मेरी
1: सबने
0: जनरेशन में।
1: पढ़ी,
0: जी
1: बिल्कुल।
0: जी जी
1: तो इस दौर को याद करते हुए एक गाना सुनते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
0: जी बिल्कुल, तो
1: कौन सा गाना होना चाहिए?
0: बचपन के दिन भी क्या दिन थे।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: बचपन के दिनों की सैर कर रहे हैं और इतनी तरह की कॉमिक्स की हम बात करें, जब ये कॉमिक्स आप पढ़ते थे आलोक, तो कल्पनाओं की वो कौन सी दुनिया थी जिनमें आप सैर करते थे और क्या अपने लिए कुछ सोचते थे इन कॉमिक्स से जुड़ा हुआ?
1: तो इसकी एक बड़ी मजेदार कहानी है। हमारे घर में टीवी नहीं था। हमारे घर में पहला टीवी जब आया तो मैं 26 साल का था।
0: मतलब बहुत ही लेट आया।
1: बहुत ही लेट आया। तो ऐसा नहीं है कि टीवी पता नहीं था, टीवी पड़ोस में था, हम देख लेते थे वहाँ जाके। तो मेरे ख्याल से 1985 का साल था, टीवी पे संडे की फिल्म आ रही थी, कब क्यों और कहाँ। उसमें प्राण साहब का एक खतरनाक रोल था जिसमें वो मुर्दे का रोल करते हैं, उनकी आंखें बल्ज होके बाहर निकली हुई हैं। तो वो देख के मैं बहुत बुरी तरह से डर गया।
0: अरे
1: हाँ, उसके बाद प्राण नाम से मुझे दहशत हो गई।
0: लेकिन ये प्राण नाम दो जगह चलता था।
1: हाँ, ये मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मेरे पिताजी को ये लगा कि अगर मुझे मेरे मन से प्राण नाम की दहशत हटानी है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि जो चाचा चौधरी है, मेरा सबसे प्रिय किरदार, उसके सर्जक भी प्राण हैं, उनका नाम भी प्राण है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो PRA-01 लिखा होता है कॉमिक्स के ऊपर में, वो प्राण है।
0: हाँ।
1: और जो चाचा चौधरी बनाते हैं उनका नाम भी प्राण है। मैं 4 या 5 साल का रहूंगा उस समय, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक खांचा बन गया कि वो जो प्राण है फिल्मों में वही चाचा चौधरी भी बनाते हैं।
0: वाह,
1: बहुत
0: वाह,
1: लंबे
0: वाह।
1: समय तक, करीब 1-1.5 साल तक। और बाद में वो फोटो भी, जो प्राण की फोटो आती थी कॉमिक्स के पीछे, प्राण का जन्म कसूर ब्रैकेट में अब पाकिस्तान में,
0: पाकिस्तान
1: हाँ, में हुआ था। तो वो जो पूरा, तो मैं उस तरह से कॉमिक्स पढ़ता था, मैं वहां से पढ़ता था, प्रकाशक मुद्रक तक पढ़ता था मैं कॉमिक्स।
0: बिल्कुल।
1: तो वो उनका जो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था 85 के आसपास, वो थोड़ा सा प्राण, जो अभिनेता प्राण है, उनके जैसा ही दिखता था वो।
0: नहीं,
1: मुझे मुझे ऐसा लगता था।
0: ये तो जैसा आप देख रहे हो वैसा,
1: हाँ,
0: दिख
1: जैसा
0: रहा
1: वो
0: है।
1: हाँ, जैसी जिसकी नजर। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वही है। दूसरी चीज, मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के पहले कार्टूनिंग के कोर्सेज किए थे, वो कार्टून्स बनाते थे।
0: ओके।
1: हाँ, पारिवारिक व्यापार के क्षेत्र में वो आ गए थे, लेकिन उनका दिल जो था वो कार्टूनिंग में था। तो मुझे ये जरूर पता था कि ये कार्टून्स हैं और इनको कोई बनाता है। और ये जो प्राण वाली कहानी हुई, उसके बाद एक आदत बैठ गई कि अगर मैं कोई कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो मैं जानना चाहता था इसको लिखा किसने हैं, इसको बनाया किसने हैं। कल्पना की उड़ान जरूर थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इन्हें कोई बनाते हैं, लोग बनाते हैं।
0: तो उस
1: और
0: दौर
1: ये
0: के
1: एक प्रोफेशन
0: कौन-कौन
1: है।
0: से नामों से आप परिचित हुए?
1: अब बहुत सारे, असल में तो जैसे मुझे 5-6 साल की उम्र से पता था कि ली फॉक फैंटम लिखते हैं और साइबरी उसको ड्रॉ करते हैं, हालांकि उनसे पहले विल्सन मैकॉय और बहुत सारे लोग थे।
0: पहले ही
1: लेकिन
0: बॉक्स
1: उनका
0: में नाम आता था
1: हाँ,
0: ली
1: पहले
0: फॉक।
1: बॉक्स में नाम आता था ली फॉक।

0: साइबेरी करके, फॉक एंड बेरी लिखा होता था, तो मुझे पता था ये फैंटम भी लिखते हैं, ये मैंड्रिक भी लिखते हैं, फ्लैश गॉर्डन जो है वो एलेक्स रेमंड बनाते हैं, रिप कर भी बहुत सारा एलेक्स रेमंड बनाते हैं, बहादुर जो है वो आबिद सुरती लिखते हैं, गोविंद ब्राह्मणिया ड्रॉ करते हैं, ये उस 5-6 साल की उम्र में मैंने ये नाम रट लिए थे, क्योंकि मेरे लिए ये भी जरूरी था, चाहे जितनी भी किताबें उस समय आ रही हों, एक सीमा रहती थी इन किताबों की ना, आपको 3 मिलेगी 4 मिलेगी 5 मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिनका काम आपको बहुत पसंद है, तो बजाय एक किरदार को फॉलो करने के आप उनके क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं कि उनके जो सर्जक हैं, कि अगर मुझे आबिद सुरती का काम पसंद है तो मैं आबिद सुरती का और काम ढूंढूंगा, अगर मुझे प्राण का काम पसंद है तो फिर शायद मैं चाचा चौधरी बिल्लू पिंकी खत्म करने के बाद जाब और दाबू भी पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पर्टिकुलर एक क्वालिटी आ रही है उनके काम की। तो ये उस समय की ट्रेनिंग है मेरे ख्याल से जो अभी तक है। मैं अभी भी कोई कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता, मैं जनरली क्रिएटर फॉलो करता हूँ।
1: बहुत बढ़िया बात है। तो कॉमिक्स की ये दुनिया आपको क्या करियर की किसी दुनिया की तरफ ले जा रही थी, या तब कुछ और सोच रखा था जब मम्मी पापा पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना है?
0: नहीं, अच्छी चीज़ ये थी कि हमसे कभी पूछा ही नहीं गया बड़े होके क्या बनना है, तो वो प्रेशर था नहीं सर पे। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं कार्टून्स बनाने लग गया था बहुत बहुत यंग एज में, 4-5 साल का रहूँगा, तो मैंने जैसे सारे बच्चे करते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत महान ड्राइंग्स नहीं कर रहा था मैं, लेकिन मुझे शेहाब की ड्राइंग्स बहुत पसंद आती थी। शेहाब साहब छोटू लम्बू किया करते थे, और मुझे लगता है कि वो अपने समय की नहीं अभी के भी सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में एक हैं, तो शेहाब साहब की जो कला थी वो मुझे बहुत पसंद थी, उनको मैं काफ़ी कॉपी करता था। कार्टूनिस्ट प्राण को कॉपी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम लाइंस में वो बहुत सारी चीज़ें निकाल लेते थे, तो मुझे ये था कि मैं कार्टून्स बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये प्रोफेशन बनेगा नहीं बनेगा उसकी कोई क्लैरिटी ऐसी थी नहीं मेरे मन में। कार्टून मैं स्वांता सुखाए अपने लिए बना रहा था। एक और चीज़ ये थी कि पिताजी का काम ऐसा था कि हमारे ट्रांसफर्स होते थे बहुत, एक शहर से दूसरे शहर, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि हर बार नई स्कूल होगी, नई क्लासेस होंगी, नए सहपाठी होंगे, अब फिर से नए दोस्त बनाने हैं, फिर से नए दोस्त बनाने हैं, हर 2-3 साल में स्कूल बदल रहा है, फिर से नए दोस्त बनाने हैं, तो अपने आप में वो काफ़ी प्रेशर वाला काम होता है उस उम्र में। और उस उम्र में अगर मैं अब वापस पलट के देखता हूँ, तो ये जो कॉमिक्स के किरदार थे ये मेरे परमानेंट दोस्त थे, ये शहर दर शहर मेरे साथ चलते आ रहे थे, तो इनके साथ मेरा जो जुड़ाव था वो किसी असल दोस्त से ज़्यादा हो चुका था जब तक मैं अपने टीनेज में या किशोर वय जिसको बोलते हैं वहाँ पहुँचा। तो ये एक चीज़ थी जिससे मेरा जो अटैचमेंट बोलते हैं वो कॉमिक्स से बढ़ा दिया। मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का रहूँगा तब मुझे लगा कि मैं कार्टून्स बना सकता हूँ और मैं ये भेज सकता हूँ छपने के लिए। अच्छा। वो कॉन्फिडेंस रैंडमली आ गया था और घर में प्रेशर था पढ़ाई को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर भी, लेकिन ये मनाही नहीं थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो बस उसका फ़ायदा मिला, मैंने कार्टून्स बना के भेजना शुरू किया, संपादक के खेत सहित सारे कार्टून्स वापस आने शुरू हुए।
1: लिफाफा
0: भेजता था, वो तो भेजना पड़ता था, जवाबी लिफाफा टिकट लगा हुआ, वो तो नियम ही था
1: जी।
0: तो शुरू में कार्टून्स नहीं बनाए थे, शुरू में मैंने सोचा कि मैं बहुत आलेख वगैरह लिखूंगा, मतलब वो उस उम्र में ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्ञान है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ, तो कुछ भी कर सकते हैं और वो रहना चाहिए, मुझे लगता है वो बाल सुलभ कॉन्फिडेंस सब में पूरी उम्र रहना चाहिए, ता उम्र रहना चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है पहला जो मैंने लेख लिखा था वो था डोडो पर, और वो मैंने भेजा था सुमन सौरभ में, और अच्छा। सुमन सौरभ से वो रिजेक्ट होके आ गया था, लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसे संकोच शर्म नहीं आई थी, मैंने ठीक है दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप लिख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद मैं ड्राइंग्स बेहतर करता हूँ लिखने से। तो हमारे शहर में एक कार्टून मैगजीन निकला करती थी, अभी भी निकलती है, 30 साल से निकल रही है वो मैगजीन, कार्टून वॉच नाम है उसका। तो कार्टून वॉच मेरे हाथ लगी किसी के दोस्त के घर पे और मैंने उसमें कार्टून्स देखे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग तरीके का था, तो वो देख के लगा ये अगर ये छप रहे हैं तो मैं तो छप ही जाऊँगा। हाँ, और वो जो संपादक थे त्रिम्बक शर्मा, उनको मैं त्रिम्बक भैया बोलता हूँ अब, तो त्रिम्बक भैया असल में सबको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना निहायत ही घटिया कार्टून हो तो छोड़ देंगे, नहीं तो छप जाते थे कार्टून। तो मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ, एंड बनाया मैंने कार्टून्स, 2-3 बनाए और दोनों तीनों छप गए पहली बार में, मतलब कार्टूनिंग में मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ, कार्टूनिंग में मुझे लगा कि यहाँ तो चंडीगढ़ गए, पहले ही दिन पहले ही कार्टून गए और 15 दिन में छप के आ गए।

0: किताब आ गई घर पे, उस किताब को लेके मैं घूमता रहा कई महीनों तक। लेकिन हर महीने उसके बाद मैं नियम से कार्टून बनाता रहा। तो इस तरीके से कार्टूनिंग के करियर की शुरुआत हुई मेरी जब मैं शायद 13 या 14 साल का था,
1: और वो भी भिलाई में।
0: भिलाई में। तो उसके थोड़े से पैसे मिलते थे, 100 रुपये, चाहे जितने भी कार्टून। तो ऐसा नहीं था कि पर कार्टून मिलेगा, क्योंकि मैगजीन भी छोटी थी, तो 100 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। 100 रुपये में आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे।
1: यस।
0: हाँ, तो और कॉमिक्स तो खरीद ही सकते थे। अब मतलब कॉमिक्स के लिए घर में बोलना या यहाँ वहाँ भागना दौड़ना नहीं करना पड़ता था। मुझे याद है 56 रुपये का सेट आता था।
1: हाँ,
0: दो सेट में
1: और वो बड़ा महंगा लगता था।
0: 56 रुपये बहुत महंगा था, लेकिन मुझे 100 रुपये मिल रहा था महीने का, तो मैं 2 सेट खरीद सकता था महीने का। तो इस तरीके से मेरी पहली लाइब्रेरी की शुरुआत हुई कॉमिक्स की।
1: क्या बात है, लाइब्रेरी एज इन दूसरों को किराए से देने लगे।
0: मैं हमेशा, मेरा कभी ये विचार था ही नहीं कि मैं किराए पे कॉमिक्स पढ़ूंगा। हाँ, मुझे मेरी कॉमिक्स मेरे पास चाहिए थी।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए मैं मतलब एक समय था 2-3 साल जब किराए से पढ़ी किताबें, मतलब मुझे लगता था इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो मेरी होनी चाहिए,
1: अपनी
0: जितनी बड़ी।
1: होनी
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: एक दशमेश लाइब्रेरी करके हमारे शहर में लाइब्रेरी हुआ करती थी भिलाई में, गोल मार्केट में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और मेरा लाइफ का, मेरे मतलब जीवन का एक ही लक्ष्य था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो चाहिए, इससे छोटी नहीं चलेगी। तो फिर मैंने मतलब दशमेश तो बंद हो गई और हमने अपनी लाइब्रेरी शुरू की और बहुत अच्छी तरह से रन की। मतलब वो हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बोलते हैं अंचल, हमारे अंचल की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी जो हम लोग रन कर रहे थे।
1: कितने साल चलाई
0: वो हमने चलाई करीब 4 साल।
1: अच्छा, और किताबें सब वापस आई सही सलामत।
0: हाँ, मतलब देखिए जब ये व्यवसाय बन जाता है ना तो थोड़ा नफा नुकसान तो होता है। तो नफा नुकसान होता था, लोग चुरा के ले जाते थे, फिर हमको ढूंढने जाते थे उनके मोहल्ले में। तो वो एक अपने आप में एक
1: अलग कहानी,
0: अलग कहानियां हैं। वो एक अलग, मेरे ख्याल से वो हमारा मालगुड़ी डेज है।
1: बहुत सही बात है, बहुत मजेदार बात। लेकिन क्या कार्टूनिंग की कोई बाकायदा ट्रेनिंग लेने की जरूरत महसूस हुई या ऐसा कोई मौका आया?
0: अब लगता है कि ले लेनी चाहिए थी, लेकिन तब कॉन्फिडेंस उस जगह पे था कि कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा था, जो बना रहे हैं सब छप रहा है। और फिर उन मैगजीन्स में भी छपने लगा जो मैगजीन्स में पढ़ रहा था। तो मेरा काम चंपक में आने लग गया, बाल भारती में आने लग गया, बालहंस में आने लग गया। उस समय की करीब करीब हर मैगजीन में काम आने लग गया था और पैसे भी मिलते थे उसके।
1: तो
0: मजे की बात
1: पैसे।
0: ये थी कि पैसे भी आ रहे हैं और वो ठीक ठाक पैसे थे। मतलब उस समय में एक 15-16 साल का लड़का अगर 500 रुपये भी महीने के बना ले रहा है,
1: बहुत ज्यादा
0: तो
1: रकम
0: बहुत
1: थी तो।
0: बड़ी रकम हो जाती है वो। तो वो पैसे भी आ रहे हैं, आपकी एक लाइब्रेरी भी चल रही ठीक ठाक, और आप कार्टून्स भी बना रहे हैं, तो फिर
1: तो
0: पढ़ाई कौन
1: सेट था
0: करेगा,
1: मामला।
0: पढ़ाई कौन करेगा।
1: अच्छा, फिर
0: मैं 9वीं में फेल हो गया।
1: अरे बाप रे बाप।
0: हाँ,
1: मतलब ये तो बम गिर गया,
0: तबाह हो गया मैं।
1: अच्छा,
0: तो 9वीं में मैं फेल हो गया, मुझे समझ
1: इसके
0: नहीं
1: आगे
0: आया।
1: की कहानी सुनेंगे, आप ब्रेक लगाते हैं, एक गाना सुनते हैं, कहां तक ये मन
0: सोचना
1: को अंधेरे
0: पड़ेगा।
1: चलेंगे
0: चलिए
1: कहां

0: नवी में आप फेल हो गए?
1: नवी में मैं फेल हो गया।
0: ये इसकी उम्मीद थी कि नहीं थी?
1: उम्मीद तो कोई नहीं रखता है।
0: हाँ, कि फेल हो जाऊंगा।
1: फेल हो जाऊंगा
0: मतलब पढ़े नहीं थे कुछ?
1: नहीं, मुझे समझ में नहीं आया पूरा नवी कैसे गया, मुझे नहीं पता है।
0: वैसे नवी होता भी फिसलदार मैदान ही है।
1: नवी को थोड़ा सा टफ बनाया जाता है ताकि बच्चा दसवीं में अच्छे स्कोर करे और स्कूल का एक स्कोर बना रहे, तो उसको स्कूल का स्कोर बनाने के लिए मुझे लगता है नवी को टफ बना दिया।
0: नहीं, और ये समझाना कि भाई मिडिल स्कूल पीछे छूट गया,
1: छूट गया,
0: होश में आ जाओ।
1: नहीं, वो तो आप हाफ पेंट से फुल पेंट पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा था कि मिडिल स्कूल तक हाफ पेंट था, फिर फुल पेंट आया, तो फुल पेंट आई मतलब आप जिम्मेदार हो जाओ। मैं नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत थी ना, मतलब आप एक तरफ लाइब्रेरी भी चल रही है, आप कार्टून्स भी बना रहे हो, स्कूल में टीचर्स भी आपको एक अलग निगाह से देखते हैं कि इसके तो कार्टून्स छप रहे हैं। तब तक मेरे लेख वगैरह भी छपने लग गए थे। तो मतलब क्लास नाइन्थ का एक लड़का है जिसका हर महीने
0: कहीं ना कहीं
1: कुछ छप रहा है, तो वो अपने आप में एक अंदर से तो अपने आप में एक रॉकस्टार वाली फीलिंग रहती है कि हम ही हमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: भले बाकी सारी चीजों में आप शून्य हो, लेकिन एक वो जगह है जहां आमतौर पर कोई पहुंचता नहीं है, वहां जाके आपने अपना आसन जमा रखा है। तो डांट पड़ती थी स्कूल में कि ये सब करते रहोगे, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये है वो है। मुझे लगा था निकल जाएगा, नहीं निकला। अब नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मज़ेदार बात मैं बताऊंगा आपको कि जो नवी में मैं फेल हुआ, उस दिन तो मौत थी मेरी। मतलब लाइफ का, जीवन का सबसे बड़ा फेलियर है वो। क्योंकि आपके सारे दोस्त आपसे एक साल आगे चले गए, अब आपके साथ बच्चे पढ़ेंगे। उस समय में तो ये लगता है एक साल छोटा तो बच्चा ही है, अभी तो 5 साल छोटे भी बराबर के लगते हैं। लेकिन वो था, मोहल्ले वालों को आप क्या जवाब देंगे? सबको पता है आप नाइन्थ में थे, पूरे मोहल्ले को अगर पता चला कि आप दसवीं नहीं गए, आप वापस नाइन्थ रिपीट कर रहे हो, तो क्या होगा? एक तरीके से सामूहिक बहिष्कार हो जाता है जो बच्चा फेल होता है उसका। उसमें बच्चे की गलती है नहीं है,
0: हमारे यहाँ वो तो सोचा ही नहीं जाता। वो जो स्टिग्मा वाली बात है
1: ना, तो स्टिग्मा आ जाता है वो। तो स्टिग्मा तो आ गया था, और आप अपनी नजरों में तो गिर ही चुके हो। तो एक आप अपनी नजरों में गिरे हो, एक आप अपने पेरेंट्स की नजर में गिरे हो, फिर छोटे भाई बहन है उनकी नजरों में भी गिरे हो, क्योंकि अभी तक आप रोल मॉडल थे और आपने मतलब काफी कुछ अच्छा किया हुआ है, अभी तक आप उनकी नजर में भी गिर गए हैं। मोहल्ले वालों को किसको सच बताएं किसको ना बताएं पता तो सबको चलेगा, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी हैं। अब उनसे झूठ बोलेंगे आप या सच बोलेंगे, आप फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं? फिर आपके जो दोस्त हैं वो एक क्लास आगे चले गए हैं, तो आप उनके साथ स्कूल भी नहीं
0: जाते, नजरें कैसे मिलाएंगे?
1: हाँ। उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि एक फेल होने वाले बच्चे के साथ उनके बच्चे खेलें।
0: हाँ।
1: तो ये जो पूरा एक हमारे समाज ने इस पूरी चीज को जैसा स्टिग्मा बना दिया है, उससे मैं गुजरा पूरे एक साल।
0: देखिए
1: बाकी लोग तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आप वो अपने अंदर लेके चल रहे होते हैं वो फेलियर को, और वो फेलियर ताजा ही
0: है। घर वालों का एटीट्यूड क्या था?
1: कुछ खास ऐसा, मतलब पिताजी ने बोला कि अब चलो मेरे साथ काम भी करना पड़ेगा शुरू तुमको, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में तो लग नहीं रहा कि तुम्हारा कुछ होने वाला है। तो मैंने उनके साथ काम करना भी शुरू किया।
0: क्या काम था वो?
1: मेरे फादर चॉकलेट्स वगैरह ये करते थे, होलसेल में चॉकलेट्स किराने दुकान वालों को सप्लाई करते थे।

0: तो फिर उन्होंने पूरा भिलाई शहर का जो सप्लाई वो मुझे दे दिया। भिलाई शहर मतलब ऐसा बहुत शहर नहीं, कुछ 25-30 दुकानें जो हम रेगुलरली जहाँ सामान सप्लाई किया करते थे, तो वो मुझे दे दिया उन्होंने कि ये तुम करोगे अब। हाँ, तो मैंने वो शुरू किया। लाइब्रेरी फिर भी चल रही थी, कार्टून फिर भी बन रहे थे,
1: अच्छा, ये सब
0: हाँ,
1: चल रहा था।
0: और ये सब चल रहा था। उसके साथ में मैंने फादर को हेल्प करना भी शुरू किया। वो भी मेरे ख्याल से मेरे 48 साल के तो हो गए थे तब तक मेरे फादर, तो वो शुरू किया मैंने। मुझे ये लगा कि मुझे ये भी समझ में आया कि बिज़नेस कैसे होता है। मैं आमतौर पे लोगों से बात करने में कतराता था, तो मेरी जो शर्म थी जो मोहल्ले में और लोगों के बीच थी वो ख़त्म होने लगी, वो झिझक हटने लगी मेरी। मुझे पता नहीं अगर इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट बोल सकते हैं या नहीं, मगर थोड़ा सा एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट आया मेरे अंदर उससे। बहुत बाद में, करीब मेरे ख्याल से उसके 30 साल बाद, मैंने एक शो लिखा, और उस शो को लिखते समय मैंने जो लीड कैरेक्टर है उसका शो का, उसको क्लास 9th में फेल करवाया। इसलिए नहीं कि ये रेवेंज था, इसलिए कि मुझे बहुत मन था कि मैं दुनिया को बताऊं कि जब एक
1: फेल्योर
0: बच्चा फेल
1: का
0: होता है
1: उस
0: तो वो
1: बच्चे के ऊपर
0: अपने
1: क्या असर
0: अपने
1: पड़ता है।
0: आप में वो एक मौत से गुजर रहा होता है, उसके
1: करेक्ट।
0: ऊपर नई चीज़ें मत ला दो, क्योंकि वो खुद अपनी नज़रों में गिरा हुआ है। तो उसकी जितनी हेल्प कर सको कर दो, हेल्प नहीं कर सकते तो नया गड्ढा मत खोदो उसके लिए। तो ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए।
1: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: किस शो में लिखा था ये आपने?
1: ये एक शो था Z5 पे जिसका नाम है फायरफ्लाइज, पार्थ और जुगनू। तो हम लोग बात कर रहे थे, शुरू से डिस्कशन ये था कि ये क्लास में टॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग टॉपर्स की कहानियां बहुत देखते हैं, हम उसकी कहानी नहीं देखते जो पीछे छूट जाता है। तो हमेशा से वो आइडिया था कि इसकी कहानी वो होगी कि ये पीछे छूट जाए। तो फिर मैंने अपने अनुभवों में वापस जाके उसको कुरेदा और मैंने कहा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 9th में फेल हो गया है। तो सबसे पहले तो हमको जाके नया एजुकेशन सिस्टम चेक करना पड़ा कि 9th में फेल होते हैं नहीं होते हैं। फिर पता चला कि होते हैं। हाँ, जहाँ वो कहानी बेस्ड है वहाँ तो होते हैं। तो फिर उस चीज़ को लेके बहुत सारी चीज़ें जो मैंने झेली थी, बहुत सारी चीज़ें जो लोगों ने मुझे बोली थी, वो सब कुछ वहाँ मैंने उस कहानी में कहा। और बहुत सारे लोग उसके बाद, बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आए, एक दो पॉडकास्ट में पॉडकास्टर्स ने मुझे बताया कि वो भी उस दौर से गुजरे हैं। एक एक दो दो बार फेल होना या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगातार फेल हो जाना 3 बार, वो सब उस स्टिग्मा से बहुत लोग गुजरे हैं। उसको सही वॉइस नहीं मिली है अभी तक, वो निकल के नहीं आया, कथारसिस नहीं हुई है लोगों की। तो मुझे लगा ठीक है, मेरी कथारसिस के बहाने मतलब और बहुत सारे लोगों की कथारसिस हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनुभव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कड़वे हैं, अगर अंदर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक जगह पाके निकल जाते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इस पूरे दौर से निकले आप कैसे और फिर आगे चीज़ें कैसे बढ़ी?
1: ये बहुत मतलब फिक्शनल साउंड करेगा, लेकिन हम लोगों के वहाँ उसको सेकेंड ईयर बोलते थे फेल होने के बाद।
0: अच्छा,
1: 9th सेकेंड ईयर।
0: ये एक तरह की राहत,
1: एक तरीके की राहत थी।
0: हाँ।
1: तो मेरा जो सेकंड ईयर था उसमें पता नहीं कैसे मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन के भी निकला, जबकि मैं पढ़ भी नहीं रहा था।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब अब खोने के लिए कुछ था ही नहीं ना।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: तो घबराहट नहीं थी।
0: हाँ।
1: तो अब मैं ज्यादा खुल के मजे कर रहा था क्लास में।
0: हाँ।
1: क्योंकि ये सब मेरे से छोटे थे, मेरे क्लासमेट्स, दिमाग में तो यही था। तो अब मुझे जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी पिछले साल अपने साथ के लोगों के साथ में, वो बेचैनी पता नहीं कहीं गायब हो गई। तो जैसे मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में सबसे कम मार्क्स आए थे मेरे सेकंड ईयर में, इन तीनों में मैंने टॉप किया। और हमारे यहाँ 7-8 सेक्शंस होते थे। तो केमिस्ट्री की टीचर का तो मैं मतलब बहुत ऐसा प्रिय छात्र बन गया था, क्योंकि मोल थ्योरी ये वो पता नहीं कैसे मुझे समझ में आने लगी चीज़ें। तो 9th और 10th यूं करके निकल गए, मतलब चुटकी बजाते 9th और 10th निकल गए। मैं रैंक्स अच्छे ला रहा था, मेरी लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो गई थी इस बीच में।
0: अच्छा।
1: हाँ, मेरी लाइब्रेरी हमारे शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक थी। मैं मतलब 14 साल के बाद जब मैं भिलाई एक बार गया था, मेरी लाइब्रेरी की सील लगी हुई किताबें मैंने रद्दी में खरीद के वापस लाए थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि 14 साल तक वो किताबें सर्कुलेट हो रही थी उसी शहर में।
0: क्या बात।
1: हाँ, तो ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, मेरी लाइब्रेरी बड़ी हो गई। मेरे फादर का काम मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। तो वो एक और बेशर्मी भी आ गई थी, चमड़ी मोटी हो गई ना आपकी, आप जितना सुन सकते थे, जितना झेल सकते थे, आपने झेल लिया था। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित हुआ मेरे लिए, कि वो फेलियर उस समय के लिए तो मौत थी, मगर अगले 1-2 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मेरे चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा हाथ था उस चीज का।
0: तो एक नए सिरे से बनने की तैयारी थी
1: जी, वो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रतिशोध की ज्वाला भी थी।
0: बिल्कुल। ये कॉमिक्स वाला वर्ड आ गया।
1: सुपर कमांडो दो की पहली किताब। हाँ, प्रतिशोध की ज्वाला थी वो। और वो सम मेरे लिए काम कर गई बेसिकली। तो
0: बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ एक गाना सुनते हैं
1: जी। बिल्कुल।

0: मुंबई कैसे आ गए आप लोग?
1: हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है।
0: अच्छा,
1: तो मैं कॉमिक्स में काम करना चाहता था, लेकिन जब तक मैं 20 का हुआ तब तक भारत में कॉमिक्स खत्म हो गई थी।
0: धीरे धीरे धीरे धीरे करके
1: मेरी पीढ़ी, मेरे ख्याल से कॉमिक्स पढ़ने वाली आखिरी पीढ़ी थी। अभी लोग आ रहे हैं वापस, लेकिन उस समय तो सब खत्म हो गया था। सो जब मैं 20 का हुआ और मैंने मेरा कॉलेज खत्म किया, कॉलेज भी मैंने मजबूरी में खत्म किया था, मेरा मन नहीं था कॉलेज करने का। मतलब 12वीं आते आते तक मुझे समझ में आ गया था कि ये शिक्षा प्रणाली मेरे लिए तो नहीं बनी है। बहुत लोगों के लिए बनी है, मैं शिक्षा प्रणाली के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मेरे लिए नहीं थी वो। क्योंकि अब मैं जब स्कूल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उनकी कहानियां याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया। तो वो शिक्षा प्रणाली से मेरा थोड़ा सा, मैं उखड़ चुका था 12वीं करते करते तक, और मुझे लगा कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ। मेरे लिए जब तक मैं कोई चीज़ को खुद करके ना देखूँ, मेरे लिए सीखना बहुत मुश्किल है। तो मैं घर आके किताबों को पढ़ के खुद से अपनी थ्योरीज बना के किया करता था चीज़ें। कार्टून्स छप रहे थे लेकिन मुझे मज़ा आना बंद हो गया था कार्टून्स में। मुझे एक अवार्ड मिला था आर के लक्ष्मण से।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, ये उसी स्कूल और कॉलेज के बीच में दो बार मिले थे नेशनल अवार्ड्स। तो उसमें एक बार आर के लक्ष्मण ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा प्लान बी क्या है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा प्लान बी क्या होता है? तो उन्होंने बोला अगर कार्टूनिंग में नहीं हुआ तो क्या करोगे। तब तक मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, तब तक मुझे पता था मुझे यही करना है। तो ये बड़ा कठिन सवाल मेरे सामने आया, और वही आर के लक्ष्मण अगर फेंक रहे हैं वो सवाल आप पे, तो आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत गंभीरता से मैंने इस पे विचार किया। मुझे ये समझ में आया कि पॉलिटिकल कार्टून्स की उम्र नहीं होती, सुबह छपता है शाम तक बासी हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त ये कर रहे थे, मैं ये करना चाहता था। मैं अखबारों के ऑफिसेज जाता था, कार्टून्स देखे आता था, कभी छप जाते थे कभी नहीं छपते थे, कभी कोई अखबार वाला कॉल कर देता था कि इतना 3 कॉलम बचा हुआ है कुछ ड्रॉ करके दे दे जल्दी से।
0: अरे,
1: तो 3 कॉलम का फटाफट कुछ ड्रॉ करके दिया, उन्होंने 50-60 रुपए दे दिए। तो ये चल रहा था, इसको बहुत लोग संघर्ष बोलते हैं, हमारे लिए बहुत मजे का काम था। क्योंकि एक ही सड़क पे सारे अखबारों के ऑफिसेज होते थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कहीं ना कहीं छप जाता था।
0: वाह।
1: और कुछ दोस्त थे जो परमानेंट जॉब में लग गए थे इन अखबारों में, वो अभी भी उन अखबारों के साथ काम कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं, मेरा मन नहीं लगता था। मेरा मन उन शहरों में नहीं लग रहा था जहाँ मैं बड़ा हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से निकलना होगा और मैं कार्टून नहीं बनाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था इस मामले को लेकर कि मैं पॉलिटिकल कार्टून्स नहीं करूँगा। इसलिए नहीं कि मुझे उससे कोई दिक्कत है, इसलिए कि 1999 सन 2000 का साल था वो, और देश की हवा बड़ी विचित्र सी थी। दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने देखा कार्टूनिस्ट प्राण की एक लेगेसी है, अनुपम सिन्हा की एक लेगेसी है, ली फॉक की एक लेगेसी है, ये मेरे हीरोज़ हैं। तो अगर मैं लेगेसी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे आर के लक्ष्मण बनना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे 50 साल कार्टून बनाने पड़ेंगे। और मुझे ऐसा इतना पेशेंस मेरे में नहीं था, अभी भी नहीं है। हाँ, मतलब मैं लगातार काम कर सकता हूँ, लेकिन वो एक शिद्दत के साथ एक ही चीज़ करते रहना और फिर उसमें किसी दिन जाके एक लेगेसी क्रिएट करना, वो बहुत दूर की कौड़ी है। तो ये उससे अटैच भी हूँ और डिटैच भी हूँ। अटैच हूँ जब तक मैं उसको बना रहा हूँ, डिटैच हूँ द मोमेंट ये मेरे हाथ से मैंने बाहर भेज दिया, उसके बाद मैं उसको पलट के भी नहीं देखूंगा। लेकिन जब तक मैं उसके साथ हूँ तब तक मैं उसके

0: साथ पूरी तरह से हूँ। तो वो पॉलिटिकल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था,
1: वो
0: सोशल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, कॉमिक्स बंद हो चुकी थी। तो उस दौर में मुझे ऐसा लगा एनिमेशन मेरे लिए सबसे मुफीद करियर होगा, और एनिमेशन कुछ नहीं पता था मुझे उसके बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि एनिमेशन सीखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर से पैसे मांग नहीं सकता हूँ, तो अब मुझे कहीं जाके स्टूडियो में किसी जगह पे जाके नौकरी मांगनी पड़ेगी, और वहाँ जाके मैं एनिमेशन सीख भी लूँगा और मैं एक एनिमेटर बन भी जाऊँगा। तब तक मुझे नहीं पता था कि एनिमेटर कौन होता है, इन बिटवीनर कौन होता है, डायरेक्टर कोई और होता है। मेरे दिमाग में मैं डायरेक्टर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको डायरेक्टर बोलते हैं। तो उसकी भी बड़ी लंबी सी कहानी है कि मुझे नहीं पता था लाइट बॉक्स क्या होता है। तो मैं जेरोक्स मशीन वाले के वहाँ खड़े होकर दुकान में मैं लगातार जेरोक्स करके उसको मूवमेंट देता था ड्रॉइंग्स को। अदनान सामी का एक गाना आया था लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे पूरा एनिमेट किया था जेरोक्स कर करके।
1: अरे
0: वो कहीं मेरे पास रखा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो उसके इजी तरीके भी हैं। मुझे डिफिकल्ट तरीके पता थे क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़े थे। तो मैं उस तरीके से ही काम कर रहा था। तो एनिमेशन के लिए भी बहुत हाथ पैर मारे मैंने। भारत में एनिमेशन का कोई
1: सिस्टमैटिक मामला नहीं था,
0: स्कोप ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। एक फिल्म बन रही थी जो मैं क्लास नाइन्थ में था तब से बन रही थी, वो अभी तक बनी नहीं थी। नाम भागमती है। भागमती फाइनली उन्होंने लाइव एक्शन और एनिमेशन मिला के कुछ बना दिया था बाद में। मैं तब मेरे ख्याल से ऑलरेडी एनिमेशन में आ गया था तब तक। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, और जो कोर्सेज थे वो बहुत महंगे थे, तो मैं वो नहीं कर सकता था वो कोर्सेज। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले तो मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ेगा। तब तक हम उड़ीसा शिफ्ट हो चुके थे भिलाई से, और ये बहुत छोटा सा गांव था, इसका नाम अथाबिरा है। मतलब वहाँ आप आलोक शर्मा अथाबिरा लिख के चिट्ठी डालिए मेरे घर आ जाती थी, इतना छोटा गाँव था वो। तो उसके लिए उस गाँव से निकलना बहुत ज़रूरी था। उस बीच में गौतम कॉमिक्स नाम की कंपनी शुरू हुई थी जिसने मार्वल और डीसी पब्लिश करना शुरू किया था। तो मैंने अपना बहुत सारा काम उनको भेजा। उन्होंने बोला ये सब कचरा है, मेरे पिछले 6-7-8 साल की मेहनत को। उन्होंने बोला ये क्वालिटी हमें चाहिए नहीं। तो अब मेरे मन में ये हुआ कि इनको, मतलब अभी तक तो मैं तुरम कहाँ था, जो भी भेज रहा था सब छप रहा था, ये अचानक एक कौन आ गया है जो मुझे बोल रहा है कि सारा खराब है, हमको ये कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं उनको मिलने गया बैंगलोर, वहाँ मैंने जाके टेस्ट दिए। तो वो भी एक चीज़ है कि मुझे टेस्ट वगैरह देने से कोई गुरेज नहीं है, मैं अभी भी देने को तैयार होता हूँ। सैंपल कोई मांगे मुझसे, मैं अभी भी सैंपल करने को रेडी रहता हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट आपका ऑडिशन है ही हमारा।
1: बिल्कुल,
0: बड़े बड़े एक्टर्स अगर माइंड नहीं करते ऑडिशन देना, तो मतलब मुझे क्यों इस बात से गुरेज हो कि मुझे ऑडिशन देना पड़ रहा है। तो मैंने वहाँ जाके फिर फाइनली ऑडिशन दिया। बहुत खींचतान के बाद मेरा काम उनको समझ में आया, उन्होंने मुझे बैंगलोर बुला लिया, और मेरा पहला पब्लिश्ड काम मार्वल कॉमिक्स में आया।
1: वाह वाह वाह।
0: तो पहली कॉमिक्स जो मैंने की वो मार्वल कॉमिक्स थी। मैं अनक्रेडिटेड था, मैं इंकर था स्पाइडरमैन इंडिया में। तो स्पाइडरमैन इंडिया अब तो बहुत बड़ा कैरेक्टर बन गया है, 2004 में वो नया नया कैरेक्टर आया था, अब तो स्पाइडर वर्स वगैरह आ गया है। तो वहाँ से मेरी कॉमिक्स की जर्नी शुरू हुई, लेकिन तब तक मैं समझ गया था कि कॉमिक्स बहुत मेहनत का काम है। मैं लिखना ज़्यादा पसंद करूँगा ड्रॉ करने से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं। उस जगह तो मेरे ख्याल से भारत के और विश्व के सबसे बेहतरीन कलाकार स्टूडियो में थे, तो उनके बीच में जाके 12th प्लेयर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्यों ना मैं लिखना शुरू करूँ। और मैं उनको कहानियाँ सुनाता था, क्योंकि मुझे कहानियों का शौक बचपन से रहा है। तो उनको कहानियाँ पसंद आने लगी, उन्होंने कहा कि तू लिखना क्यों नहीं शुरू करता है, तू लिखेगा तो हम चाहेंगे कि उन कहानियों पर हम लोग ड्राइंग करें। वहाँ से थोड़ा सा लिखने की तरफ मेरा रुझान बढ़ना शुरू हुआ। तब तक मैं लिखता नहीं था, गौतम कॉमिक्स था, गौतम मार्वल के साथ कर रहा था ये चीज़ें। तो ये आर्टिस्ट ने मुझे बोला, लेकिन तब तक ये हो गया था कि मैं ब्रेक चाहता था उस चीज़ से, ड्राइंग से, क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज़ को आप बहुत प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी डेडलाइंस हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से ना जो उसका जो आनंद है ना वो पूरा रस
1: निकल जाता है।
0: अब वो काम बन जाता है।
1: Yes.
0: कि आप बैंक में हैं या कॉमिक्स बना रहे हैं, दोनों एक काम हो गया है। तो जब ये हो गया है तो, और बैंक का काम इनफैक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं। ये तो बहुत एकाकी काम है। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, जिसमें मैंने 6-7 साल अपने दिए थे, उसमें से आनंद थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। और मुझे उस बीच में जापानी कॉमिक्स मांगा, जिनको बोलते हैं मांगा, मुझे बहुत पसंद आने लगी। तो मैंने चाणक्य पे एक मांगा बनाना शुरू किया खुद से, और मुझे बोला गया कि मंगा का भारत में कोई भविष्य नहीं है, तो इसको तुम बंद कर दो। तो मैंने कुछ 30-40 पन्ने उसके बना लिए थे, मैंने उसको बंद किया। मैं एक रेडियो स्टेशन गया, FM रेडियो तब नए नए आए थे, जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया, मैंने

0: में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था, क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे
1: बिल्कुल
0: स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहाँ मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहाँ मैं आप सबको सुनता था, कमल शर्मा थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मज़ेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में, तो मैं बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था, तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा, फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन ख़राब कर दिया, ख़राब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था, तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं ये मन्ना दे की आवाज़ है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था, तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था
1: काम
0: ऑडिशन
1: का
0: देने
1: आदमी
0: लेकिन आदमी काम का
1: हाँ
0: है। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे ऑडिशन में, अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, वो 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए उसके बाद।
0: नहीं, कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं, जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ की है रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे? मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी, तो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो
1: वाह
0: फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो का मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज़ भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है, वो
1: करेक्ट
0: हाँ चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज़ भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के
1: बिल्कुल
0: सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: यहां एक गाना सुनते हैं
0: लिफ्ट करा दे।
1: अदनान समी की आवाज।

0: ये था इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।
1: आज के मेहमान।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो शुकुन से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Article 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हो रही बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। श्री रिजिजू ने दावा किया कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। राज्यसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और वापसी के लिए चर्चा शुरू कर दी है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में और संशोधन करके भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है और भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार और फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की है।

सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रिया

0: 5% and reduced the inflation forecast to 5% from 5.1% in the current financial year. The Supreme Court has said that authorities must exercise restraint while responding to young student protesters. The Apex Court said any violent response to prevent violence would only aggravate the situation. A bench led by Chief Justice of India Suryakant today made the remarks while hearing a plea seeking action against the CJP over its alleged role in recent violence during protests in Delhi and other parts of the country. And with that, we end this news bulletin.
1: एक सौ तीन दशमलव चार मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं गैर फिल्मी भजन। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सोनू निगम के गाई इस भक्ति रचना के साथ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी भजन, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:25 और 38 सेकंड हुए हैं। समय है कार्यक्रम युवा मंच का।

0: आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश। जी हाँ युवा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम युवा मंच में। जी हाँ, आज होता है वेडनेसडे यानी कि बुधवार, और आज हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पोर्ट्स बीट्स पर। आज हमने आपके लिए बहुत ही खास कार्यक्रम रखा है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी है, और आज हमने इनवाइट भी किया है अपने स्टूडियो में। तो आज हम बात करेंगे, विषय रहेगा ऑनलाइन शिक्षा बदलते समय की नई ज़रूरत। जी हाँ, और इस विषय में बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर विशाल सूद जी को। जी हाँ, निदेशक दूरवर्ती एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला से। जी हाँ, आज वो स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो विशाल, प्रोफेसर विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद, और सभी हमारे श्रोताओं को नमस्कार।
0: जी हाँ, साथ साथ में हमारे युवा दोस्तों का भी हम स्वागत करेंगे इस कार्यक्रम में। उनके लिए ही है और उनके लिए ही इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आज हम लेकर आए हैं। तो बात कर रहे हैं हम आज ऑनलाइन शिक्षा बदलते समय की नई ज़रूरत। आज का युग जो है वो सभी हमारे युवा दोस्त जानते हैं कि डिजिटल युग है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और कंप्यूटर ने हमारी जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया है। शिक्षा भी इससे अछूती नहीं रही। पहले जहां पढ़ाई के केवल स्कूल और कॉलेज की चार दीवारी तक सीमित थी, वहीं आज विद्यार्थी घर बैठे देश विदेश के शिक्षकों से सीख सकते हैं। यही ऑनलाइन शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है, क्यों सूद जी?
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन शिक्षा को आप किस दृष्टि से देखते हैं?
1: देखिए, पहले तो सभी हमारे जो युवा दोस्त जो इस आकाशवाणी के युवा मंच कार्यक्रम से जुड़े हैं, सभी श्रोताओं को, सभी युवा दोस्तों को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। और ऑनलाइन शिक्षा आज के समय में एक महत्वपूर्ण जो है वो अंग बन गई है पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था का। और पहले, जैसा कि आपने कहा कि पहले चार दीवारी तक या किताबों तक सीमित थे, लेकिन आज वो समय नहीं रहा है। आज समय जो है वो तकनीकी का है, आज समय जो है वो ऐसे विकास का है जिसमें हम चांद तक पहुंचे हैं, या हम हर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। उसमें आज ज़रूरत है

0: ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम अपनी जो आने वाली जनरेशन है और आज की जो जनरेशन है उसको ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जागरूक करें, उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको वो एनहेंस करें, उनकी स्किल्स की डेवलपमेंट के ऊपर, कौशल विकास के ऊपर हम इस ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आगे उनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दी आपने। और ये ज़्यादातर COVID-19 जो महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने हमें ये साबित कर दिया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि तकनीक का सही उपयोग किया जाए तो शिक्षा कभी रुक नहीं सकती।
0: बिल्कुल
1: जी, आज कई विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करा रहे हैं। वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन कक्षाएं, ई बुक्स और डिजिटल नोट्स ने शिक्षा को पहले से अधिक आसान और सुलभ बना दिया है। क्या कहते हैं आप इस बारे में?
0: देखिए, जब ऑनलाइन शिक्षा की हम बात करते हैं तो मैं विशेषतः अगर अपने हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करूं तो यहां हम भी ऑनलाइन शिक्षा जो है वो प्रदान कर रहे हैं अपने दूरवर्ती एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र CDUE के माध्यम से, और उसमें हम ई बुक्स, ESLM जिसको हम बोलते हैं, ई सेल्फ लर्निंग मटेरियल, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, PDFs हैं और स्टडी मटेरियल है, उसको जो है वो अपने छात्रों को प्रदान करते हैं और वो अपने घर द्वार पे बैठ के, अपना जो उनका प्रोफेशनल स्पेस है उसमें बैठ के वो उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, और उस माध्यम से वो हमारे केंद्र के जो हमारा CDUE है, दूरवर्ती और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र, उसके माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा अपने युवा दोस्तों को, अपने श्रोताओं को, कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का ये केंद्र 5 कार्यक्रम, MA हिस्ट्री, MA इकोनॉमिक्स, MA पॉलिटिकल साइंस और MBA और MCA, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, इनको हम पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से जो है वो अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, ये तो कितना सही और कितना इजी हो गया हमारे स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए, है ना सर? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के ऑनलाइन शिक्षा केंद्र CDUE के माध्यम से वर्तमान में किस प्रकार के ऑनलाइन पाठ्यक्रम और भी उपलब्ध हैं क्या?
0: देखिए, हम अभी 5 कोर्स जो है वो रन कर रहे हैं, जिसके लिए आज जो जुलाई 2026 का सत्र है उसके लिए प्रवेश जो है वो जारी है, और उसमें अगर कोई भी छात्र, खासकर जो हमारे वर्किंग टीचर्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या ऐसे लोग हैं जिनको छुट्टी नहीं मिल सकती, वो रेगुलर नहीं अटेंड कर सकते, वो इन कोर्सेज में MBA में, MCA में एनरोल कर सकते हैं और उसके लिए समर्थ माध्यम से जो है वो जा सकते हैं। और हमारी वेबसाइट जो है www.cuhimachal.ac.in, उसके ऊपर जाके वहां ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये 2 साल के कोर्स हैं, पूरी तरह से UGC और DEB के द्वारा, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो जो भारत सरकार की एक संस्था है, उसके द्वारा ये मान्यता प्राप्त कोर्स हैं, और चाहे प्रमोशन हो, चाहे रिक्रूटमेंट हो, उसके लिए ये सारे कोर्स जो हैं वो अपने आप में वैलिड हैं।
1: जी जी, बहुत ही सही बात है। ऑनलाइन शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय और किसी भी स्थान से पढ़ाई कर सकते हैं। यदि कोई पाठ समझ में ना आए तो उसे दोबारा देखा जा सकता है। इससे सीखने की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता
0: है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: हाँ, तो एक बार फिर से बता दीजिए हमारे युवा दोस्तों को कि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया क्या है?
0: देखिए, ऑनलाइन कार्यक्रमों में अगर प्रवेश कोई भी छात्र लेना चाहता है, और विशेषतः अगर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के CDUE में जिसके लिए एडमिशन्स चली हुई हैं, तो उसके लिए जो पात्रता है वो केवल मात्र स्नातक, अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA, BSc, BTech, BCom, और उसके बेस के ऊपर, उसमें कोई परसेंटेज की कोई जो है वो बाध्यता नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। और दूसरा, आवेदन प्रक्रिया के लिए हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे समर्थ पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका लिंक वहाँ पे दिया है, उसमें वो वहाँ पे अप्लाई करें, और वहाँ पे उनके लिए अपने जो 10th+2 और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट की PDF कॉपी जो है अपने पास रेडी रखें, ताकि इमिडिएटली वो अपलोड कर सकें वेबसाइट के ऊपर। और इसका मैं एक और अपने श्रोताओं को, युवा साथियों को, जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इन प्रोग्राम्स की फीस जो है वो बहुत ही नॉमिनल है, और उनको ये लगेगा ही नहीं कि हमने इतना अच्छा कोर्स, इतना अच्छा ऑनलाइन प्रोग्राम जो है वो घर बैठ के जो है वो इतने कम फीस में कर लिया। तो

0: उनके लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज भी है।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत सही बात है ये। और चलिए लेते हैं एक छोटा सा हम कमर्शियल ब्रेक, मिलते हैं थोड़े ही टाइम में।
2: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
3: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
2: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।
2: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
3: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
2: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।
1: जी, एक बार फिर से स्वागत हमारे युवा दोस्तों का और हमारे श्रोताओं का, और विशाल जी आपका भी। तो आप ये बताइए कि क्या विश्वविद्यालय भी अब नियमित पाठ्यक्रमों के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंच बना रहे हैं? इस दिशा में क्या परिवर्तन देखने को आपको मिल रहे हैं?
0: देखिए, जो हमारा विश्वविद्यालय है वो केवल मात्र नियमित शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, उसके साथ साथ हमारे जो ऑनलाइन कार्यक्रम हैं जिनको हम CDUE के माध्यम से जो है वो दे रहे हैं, इस CDUE को हमने जुलाई 2025 में पिछले साल जो था वो शुरू किया था। और उसके बाद हमें जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे बहुत इसमें जो है वो हमें सपोर्ट मिली, उनका बहुत इसमें सहयोग मिला। और इसमें हमारे अच्छा एक जो प्रवेश है पुराने दो सत्र, एक जुलाई 2025 का और एक जनवरी 2026 के सत्र में बहुत अच्छी एडमिशन्स इन ऑनलाइन कार्यक्रमों में हमारे पास आई। और ऐसा अच्छा रिस्पांस, और इवन कई हमें छात्र ऐसे भी मिले ऑनलाइन कार्यक्रमों में जो रेगुलर को छोड़ के ऑनलाइन में आना चाह रहे थे, उनका कारण ये था कि वो साथ में कमाना भी चाह रहे थे और साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखना चाह रहे थे। तो अर्न बाय लर्न जो है उसके ऊपर जो वो जाना चाह रहे थे, तो बहुत एक अच्छा परिवर्तन उनके माइंडसेट में, उनकी सोच में और उनके इस ऑनलाइन कार्यक्रमों की तरफ देखने को मिला है।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा, ऑनलाइन शिक्षा के सामने बहुत कुछ चुनौतियां भी हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको घर भी चलाना होता है, तो वो चाहते हैं कि अर्न करने के साथ साथ अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो बात ही क्या है, है ना सर? तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। यदि कोई विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है तो उसे आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले किन बातों की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए?
0: देखिए, कोई भी छात्र अगर इन CDUE के कार्यक्रमों में, 5 ऑनलाइन कार्यक्रम हमारे MBA, MCA, MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में अभी प्रवेश लेना चाहता है, तो सबसे पहली बात तो है कि 1 सितंबर 2026 उसकी अंतिम तिथि है, उसको सबसे पहले ध्यान में रखें। दूसरा, आवेदन करने के दौरान, क्योंकि पूरी की पूरी जो ये कार्यक्रम है वो ऑनलाइन है, प्रवेश ऑनलाइन होगा, तो उसके पास ऑनलाइन अपना जो PDF 10वीं की, 10th की, प्लस टू की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट उसके पास उपलब्ध होनी चाहिए। उसके साथ साथ अपना जो अगर कोई कैटेगरी को वो रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट की PDF कॉपी हो, और साथ में जो है वो अपना सारा जो डिटेल्स हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स, वो उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए, वो ताकि उसको अप्लाई करती बार कोई दिक्कत ना आए। और दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने पहले बताया कि भारत सरकार की जो संस्था है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, उसके नियमों के अनुसार हर एक बच्चा जो ऑनलाइन कार्यक्रम में एनरोल होगा, एडमिशन लेगा, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड UGC में जाता है ऑनलाइन ही। जैसे ही वो एडमिशन लेता है, इमीडिएटली ऑन रियल टाइम बेसिस वो UGC को ट्रांसफर होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि उसका UGC DAB ID एक क्रिएट उसको करना पड़ता है, UGC डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ID, और एक साथ में उसका ABC ID, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID जो है, ये भी भारत सरकार का है। ये दो ID उसको क्रिएट करने होते हैं, और उनको किस तरह अप्लाई करने से पहले, तो ये जो ID है उसके लिए जो लिंक है,

0: है और उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो हमने अपनी वेबसाइट पे भी दी है और लिंक भी वहां पे दिए हैं, तो वो इजीली पहले उनको बनाए और फिर हमारा जो समर्थ पोर्टल है उस पे वो अप्लाई करें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ।
1: जी बहुत सही इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आज के समय में केवल किताबों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, डिजिटल तकनीक का सही उपयोग करना, नई चीज़ें सीखना और समय के साथ स्वयं को बदलना भी उतना ही आवश्यक है।
0: जी बिल्कुल।
1: जी तो लेते हैं एक छोटा सा और कॉमर्शियल ब्रेक, मिलते हैं थोड़े ही समय के बाद। MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
2: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
3: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।
3: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
2: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
3: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।
1: जी हाँ, स्वागत है हमारे फिर से युवा दोस्तों का, हमारे श्रोताओं का। तो अब हम बात करेंगे कि आज के युवाओं, नौकरी पेशा लोगों और गृहिणियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही है, क्या कहना चाहेंगे विशाल जी आप इसके बारे में?
0: मैं अगर बात करूं ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों की
1: जी,
0: तो हमारे पास समाज में 2 या 3 ऐसे ग्रुप आते हैं
1: जी,
0: जिसमें आपने कहा महिलाएं, गृहिणियां, तो वो हमारे पास ग्रुप है। दूसरा हमारा जो एक ग्रुप आता है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स का है
1: जी,
0: टीचर्स हैं या इंडस्ट्रीज में लोग लगे हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज में हैं, बिजनेस ग्रुप्स में लगे हुए हैं या अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, वो एक वर्किंग ग्रुप हमारे पास आता है। और एक हमारे पास ऐसा ग्रुप है जो ऐसी परिवारों से आते हैं बच्चे जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनको किसी एक स्तर के बाद, किसी एक लेवल के बाद जो है वो शिक्षा को, एजुकेशन को अपनी डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। तो ये 3 ग्रुप आते हैं और इन्हीं 3 ग्रुप्स में मैं अगर बात करूँ तो ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाएं या ऐसी लड़कियां पारिवारिक दबाव के कारण या सामाजिक परिस्थितियों के कारण जो है उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है, उनका शिक्षा वो लेना चाहती है लेकिन पूरी नहीं कर पाती है हायर एजुकेशन तक
1: जी।
0: और दूर दराज के क्षेत्रों में जो पिछड़े क्षेत्र, खासकर हिमाचल के ऐसे क्षेत्र हैं वहां पे ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो ऑनलाइन घर बैठे शिक्षा के, ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी जो एक इच्छाएं थी शिक्षा प्राप्त करने की, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, उसको पूरा कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप वर्किंग प्रोफेशनल्स का है जो काम में लगे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं लेकिन छुट्टी नहीं मिल सकती है, सरकार परमिशन नहीं देती है या जिस प्राइवेट ग्रुप में लगे हैं उनसे परमिशन नहीं मिलती है। तो इन ऑनलाइन कार्यक्रमों में ना कोई छुट्टी की आवश्यकता है, ना कोई NOC की आवश्यकता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए
1: जी।
0: और वो अपने घर बैठ के, अपने जहां वो काम कर रहे हैं बिजनेस हाउस में, कॉर्पोरेट हाउस में या इंडस्ट्री में या स्कूल में, वो घर बैठे वो शिक्षा ले सकते हैं। तो ऑनलाइन कार्यक्रम उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तीसरा, ऐसे स्टूडेंट्स जो गरीब घरों से हैं, अपनी शिक्षा नहीं पूरी कर पाए, ग्रेजुएशन के बाद उनको छोड़नी पड़ी अपनी पढ़ाई और फिर नौकरी में लग गए या अपनी दुकानों में लग गए, अपना कोई और काम कारोबार शुरू कर दिया
1: जी, जी, जी।
0: तो उन लोगों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। और इन 3 ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो ये CDOE के, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम है, ये अपने आप में पूरी तरह से एडमिशन से लेके एग्जामिनेशन तक सारा का सारा टोटल ऑनलाइन है। और किसी भी काम के लिए उनको किसी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, विश्वविद्यालय में आने की जरूरत नहीं है, उनके एग्जाम भी घर में होंगे, उनकी एडमिशन भी घर में होगी, उनकी पढ़ाई भी घर में होगी, और तो और उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, वो अपने टाइम पे रिकॉर्डेड लेक्चर हम उनको देंगे और वो अपने टाइम के अनुसार रात को, दिन को, शाम को, सुबह,
1: जब भी समय मिले तब वो सुन सकते
0: हैं, सीख सकते हैं
1: जी। जी बहुत ही सही है। और क्या ऑनलाइन

0: शिक्षा के माध्यम से कौशल विकास, जिसको बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट, और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। यदि हाँ तो कैसे फिर?
1: देखिए, जो ऑनलाइन कार्यक्रम है
0: जी,
1: उसमें एक तो सबसे पहले मैं बात बताना चाहूंगा कि यूजीसी डेट द्वारा उन्हीं कोर्सेज को मान्यता दी जाती है जिनमें जो है वो इस तरह का ना केवल ज्ञान समझ और बल्कि उसके साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास है उसके ऊपर भी जो है वो पूरा का पूरा उसको महत्व दिया जाता है। दूसरा, हमारे जो ऑनलाइन कार्यक्रम है हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में, उनको इस तरह से तैयार किया गया है, उनका जो संरचना है, उनका जो करिकुलम है, कोर्स स्ट्रक्चर है या सिलेबस है, वो ऐसा तैयार किया है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसके उद्देश्य जो है या उसकी जो पूरी की पूरी रिकमेंडेशंस है उसके अनुसार तैयार किया गया है। और इसमें हमारा 60% जो सिलेबस है वो थ्योरी ओरिएंटेड है और 40% जो है जिसमें हमारे पास जो है वो स्किल ओरिएंटेड या स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है,
0: जिससे कि फिर कुछ स्किल डेवलपमेंट होगी तो नेचुरली वो रोजगार की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ती ही जाएंगी। जी हाँ। अच्छा, ये नई शिक्षा नीति NEP के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा रहा है?
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मैं अगर विशेषतः बात करूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की तकनीकी का उपयोग करते हुए मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज उसका प्रयोग करते हुए शिक्षा को प्रदान करने की बात कही गई है। और ये केवल सिर्फ नियमित कोर्सों में ही नहीं बल्कि जो हमारे ऑनलाइन कोर्स हैं, क्योंकि वो तो ऑनलाइन कोर्स पूरी की पूरी तरह टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है, इंटरनेट पे ही बेस्ड है, लेकिन इसके साथ साथ रेगुलर कोर्सेज में भी NEP 2020 जो है वो इन कोर्सेज को जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है वो करना चाहती है।
0: बिल्कुल, तो है तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, और अगर ऐसा कुछ किया जाए तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा हमारे युवा दोस्तों के लिए। तो एक बार फिर से मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो इतना भी आपने कहा और जो भी आपकी साइट है, एक बार फिर से प्लीज़ आप अपने हमारे युवा दोस्तों को इसके बारे में अवगत कराइए अभी।
1: देखिए, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय विद्यालय धर्मशाला का जो दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र है
0: जी जी,
1: इसकी स्थापना हमने 2025 जुलाई में की और उस टाइम हमने इनिशियली जो है वो 5 प्रोग्राम फुली ऑनलाइन प्रोग्राम हमने शुरू किए जिसमें 2 वर्ष का MBA, 2 वर्ष का MCA, 2 वर्ष का MA हिस्ट्री, MA इकोनॉमिक्स और MA पॉलिटिकल साइंस शुरू किए और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो विद्यार्थियों का मिला और हमारे 2 बैच अभी जो है वो चले हुए हैं जिसमें जुलाई 2025 का और जनवरी 2026 के बैच सक्सेसफुली चले हुए हैं। बहुत अच्छी एडमिशन्स हमें मिली और इवन हम एक एग्जाम जो है फर्स्ट सेमेस्टर का वो मई जून 2026 में करवा चुके हैं, पूरा ऑनलाइन घर बैठ के स्टूडेंट्स ने अपने एग्जाम दिए हैं और इसमें पूरी की पूरी पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन होती है, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं नहीं होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगानी होती हैं। कभी मान लो किसी छात्र को कोई डाउट है, उसको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, हम उसको सारा PDF मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और हमारा जो ये मटेरियल है वो हमारे जो विशेषज्ञ टीचर हैं, ये जो वीडियो लेक्चर है हमारे विशेषज्ञ टीचर, फिर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च चंडीगढ़ में है उसके अध्यापकों द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा वो मटेरियल और वीडियो लेक्चर डेवलप हुए हैं और वो हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनको सुनने के बाद, उनको पढ़ने के बाद भी अगर छात्रों को कहीं समस्याएं रहती हैं तो हम हर मंथ एक सब्जेक्ट में 2 सेशन जो है वो ऑनलाइन करते हैं गूगल मीट के माध्यम से या सिस्को वेबएक्स के माध्यम से और उसमें जो भी समस्याएं होती हैं छात्रों की उनको दूर किया जाता है और इसके साथ साथ जो एग्जाम है वो पूरे के पूरे घर बैठ के देंगे और एग्जामिनेशन जो है उसके लिए हमारा एक अलग प्लेटफॉर्म है और पूरी की पूरी सेंट्रिटी मेंटेन की जाती है। तो पूरी की पूरी एडमिशन से लेके पढ़ाई, पढ़ाई से लेके एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से लेके डिग्री तक, इवन जो कन्वोकेशन होगी उसमें भी कोई डिग्री जो है कोई लेना चाहता है ऑनलाइन तो हम डिग्री भी ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर कोई छात्र मान लीजिए इंटरेस्टेड है कि नहीं मुझे फिजिकली इंस्टीट्यूशन में आना है तो वो डिग्री लेने के लिए आ सकते।

0: इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन कार्यक्रमों में हमारे ना किसी कोई सेंटर है, ना हमारा कोई यूनिवर्सिटी में आने की जरूरत है, ना कहीं सेंटर में जाने की जरूरत है। पूरी तरह ऑनलाइन कार्यक्रम फुली ऑनलाइन है। और दूसरा, विशेषज्ञ टीचर है। तीसरा, अभी तीसरे सत्र की एडमिशन्स आजकल चली हुई है इन ऑनलाइन कार्यक्रमों की, जिसके लिए 1 सितंबर जो 2026 है वो हमारे पास जो है वो लास्ट उसकी डेट है। तो जितने भी इच्छुक छात्र हैं, हमारे युवा साथी हैं,
1: जी
0: हमारे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम को सुन
1: सुन
0: रहे हैं,
1: जी
0: वो अगर इन कार्यक्रमों में अपना या अपने किसी जानने वाले का, अपने किसी रिश्तेदार का, या अपने कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं,
1: जी
0: उनको अगर इस बारे में जानना है, अधिक जानकारी वो लेना चाहते हैं, तो
1: जी
0: मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि हमारे विश्वविद्यालय की CDOE की जो वेबसाइट है
1: जी
0: www.cuhimachal.ac.in पर वो जा सकते हैं, वहां पे पूरी की पूरी। और दूसरा, हमारी एक वेबसाइट है www.cdoe.cuhimachal.ac.in। इन दो वेबसाइट पे जाके वो पूरी की पूरी जानकारी इन ऑनलाइन कार्यक्रमों के बारे में हासिल कर सकते हैं। वहां हमारा फी स्ट्रक्चर भी वहां पे दिया हुआ है कि हमारी फी स्ट्रक्चर क्या है इन प्रोग्राम्स का, कोर्स क्या है, पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस वहां पे हमने रखा हुआ है, क्या सिलेबस होगा, क्या उनको करना पड़ेगा, कितने क्रेडिट के कोर्स हैं, और ये सेमेस्टर वाइज। और ये जो एक और मैं बताना चाहूंगा,
1: जी
0: ये पांचों प्रोग्राम जो है हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम, ये जो है UGC द्वारा, DEP द्वारा मान्यता प्राप्त है। और कोई भी व्यक्ति 2 डिग्रियां भी, ये भी एक फायदा है युवा साथियों के लिए, ये
1: जी
0: मैं
1: जी
0: बहुत जरूरी बताना
1: हाँ हाँ
0: चाहूंगा,
1: हाँ
0: दोहरी डिग्री कार्यक्रम जिसको UGC ने मान्यता दी है कि एक व्यक्ति 2 डिग्री भी साथ कर सकता है। मान लीजिए कोई है MBA भी करना चाहता है
1: जी
0: और साथ में MA इकोनॉमिक्स भी करना चाहता है, तो वो 2 डिग्री साथ कर सकता है। और उसकी जो नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है
1: जी
0: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भारत सरकार द्वारा, वो भी हमने अपनी वेबसाइट पे दी है और अपनी प्रोस्पेक्टस में लगाई हुई है।
1: जी
0: तो 2 डिग्रियां साथ करने से एक व्यक्ति का 2 साल का समय
1: टाइम जो
0: बचेगा,
1: है
0: टाइम
1: बचेगा।
0: बचेगा। और
1: बिल्कुल
0: आज
1: बिल्कुल
0: के समय में
1: बहुत जरूरी
0: समय
1: है।
0: ही महत्वपूर्ण है कि आप लर्न वाइल अर्न जो है वो कैसे कर सकते हैं, वो एक दूसरा। और एक और इसमें हमारे पास आता है, जैसे मान लीजिए कोई रेगुलर हमारे युवा साथी रेगुलर डिग्री कर रहे हैं MA,
1: जी
0: तो और वो चाहते हैं कि मुझे MBA रेगुलर में नहीं करना, MBA चाहते थे या MCA करना चाहते थे,
1: जी
0: नहीं मिली रेगुलर में एडमिशन, तो वो ऑनलाइन MBA MCA कर सकते हैं। और वो भी पूरी की तरह जो है वो पूरी की तरह वैध है। और
1: जी
0: इन डिग्रीज की जो इक्विवेलेंस है वो रेगुलर के बराबर है।
1: जी
0: उसकी भी जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, वो UGC द्वारा की गई है, जिसको हमने हमारे प्रोस्पेक्टस में और हमारी वेबसाइट www.cdoe.cuhimachal.ac.in पर दिया हुआ है। हमारे युवा साथी, इच्छुक छात्र, जितने भी कोई लोग हमारे श्रोतागण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो उनमें अप्लाई कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं, सारी जानकारी उपलब्ध है। और 1 सितंबर 2026 इसके लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट जो है वो डेट है जुलाई 2026 तक।
1: छब्बीस जी। तो प्रोफेसर विशाल जी, अंत में ऐसे विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश होगा जो अपनी शिक्षा या कौशल को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन माध्यम अपनाना चाहते हैं?
0: देखिए, जो भी इच्छुक छात्र या युवा साथी हमारे श्रोतागण जो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं,
1: जी
0: अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं,
1: जी
0: अपने कौशल विकास में ये देना चाहते हैं, और साथ में लर्न वाइल अर्न
1: जी
0: उसको अपनाना चाहते हैं कि कमाए भी, क्योंकि आज के टाइम में रोजगार की भी हम समस्या देखते हैं,
1: जी जी
0: तो उस केस में कि वो अपना रोजगार भी कमाए, साथ
1: जी
0: में रोजगार में भी लगे रहें, और साथ में अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको भी वो एनहेंस करें, उसके लिए उनके लिए ये बहुत एक सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
1: जी
0: वो आगे आए, इन कार्यक्रमों में प्रवेश लें, अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाएं, अपनी स्किल को बढ़ाएं, और जहां वो काम कर रहे हैं वहां पे जो है वो अपना योगदान दे, उस संस्था का भी विकास करें और अपना जो उनका एक वेतन भी उनका बढ़ेगा, उनकी आगे की प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो बढ़ेंगी, ये उनको सबसे बड़ा फायदा है। तो मेरी तो सभी युवा साथियों से, श्रोताओं से, इस युवा मंच के कार्यक्रम के जो श्रोता हैं हमारे और जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग टीचर्स हैं, हमारे महिला गृहिणी या ऐसे बच्चे जो अपनी रेगुलर शिक्षा पूरी नहीं कर सके, उनसे मेरी यही अपील है कि वो इन कार्यक्रमों में अपने आप को एडमिशन लें और अपनी क्वालिफिकेशन को एनहेंस करें और अपना पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें।
1: जी, एक बार फिर से हम जानना चाहते हैं, वेबसाइट एक बार फिर से आप दोहरा दें तो।
0: जी, हमारे जो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के जो सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन की जो वेबसाइट है, जिसमें आप इन ऑनलाइन कार्यक्रमों के में प्रवेश के लिए सारी जानकारी ले सकते हैं, वो है www.cdoe.cuhimachal.ac.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको सारी जानकारी, प्रोस्पेक्टस, फी स्ट्रक्चर और प्रवेश की पूरी प्रक्रिया आपको वहां पे आप देख सकते हैं।
1: जी, ऑनलाइन शिक्षा बदलते समय की नई ज़रूरत। जी, हम सभी युवा दोस्तों ये संकल्प लें कि तकनीक का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि अपने ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व के विकास के लिए भी करेंगे। यही बदलते समय की सच्ची आवश्यकता है और यही उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव भी। तो इसी के साथ आज का ये युवा मंच कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रोफेसर विशाल सूद का कि वो हमारे स्टूडियो में आए और ऑनलाइन शिक्षा बदलते समय की नई ज़रूरत के ऊपर इन्होंने इतना अच्छा हमारे युवा दोस्तों को बताया और गाइडेंस दी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे युवा दोस्त इस बातचीत का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश। कार्यक्रम में आप आए प्रोफेसर विशाल सूद जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया।
0: धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं का, युवा साथियों का धन्यवाद।
1: जी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:57 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ। 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम मुझा ग्राइंदियाँ। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा अब पशुओं के लिए चारा प्रबंधन। शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम खेती बाड़ी और आज इसमें बातचीत का विषय रहेगा औषधीय पौधों की खेती बाड़ी।

0: रात्रि 8 बजे समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। 8:30 पर देश गान सुनवाए जाएंगे और रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनिएगा गीतकार शाकिल बादिनी के लिखे कुछ गीत। रात्रि 9:30 चर्चा का विषय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा और रात्रि 10 बजे सुनिएगा नाटक। 10:30 पर चित्रपट संगीत प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे News@9 रात्रि 11 बजे समाचार रिले किए जाएंगे। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम अश्विनी कुमार मौदगिल है। मैं लगभग 40-45 साल से खेती कर रहा हूँ। फसल बीमा योजना हमें मुआवजा जो देती है उससे हमारी मदद हो जाती है। मेरे को खरीफ 2023 में 2,80,000 रुपया मिला। इसका हमारे इर्द गिर्द किसान है, उनको हम कहते हैं कि आप भी बीमा कराओ तो उसका आपको भी फायदा मिलेगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट व जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट के मासिक वेतन में 78% की बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर का मासिक वेतन 33,660 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। उन्होंने कहा कि इससे विशेषज्ञ चिकित्सकों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है, ताकि लोगों को घर द्वार के समीप बेहतर उपचार व आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने सहित चिकित्सकों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख रेल हब बन चुका है, जहां से 20 रेल सेवाएं संचालित हो रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इन रेल सेवाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश का देश के 13 राज्यों से सीधा संपर्क स्थापित हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का आधुनिक स्वरूप में पुनर्विकास किया गया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में रेलवे अधोसंरचना के विस्तार और यात्री सुविधाओं के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नंगल डैम ऊना दौलतपुर चौक रेल लाइन के क्षेत्र के लिए जीवन रेखा बनकर उभरी है और इस रेल मार्ग से लोगों की आवाजाही आसान हुई है। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों, प्रतिशोधपूर्ण राजनीति, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग के विरोध में आज शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर ताले लगाने की राजनीति शुरू की। उन्होंने कहा कि सरकार का 4 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन सरकार आज भी बंदी व तालाबंदी की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाई है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं सहित नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है और ये स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश की जनता अब कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर देखना चाहती है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनावी हार से बौखलाई कांग्रेस सरकार अब प्रशासन का दुरुपयोग कर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है।
1: जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए काम करते हैं, विपक्ष की भूमिका उस सारी चीज को लेकर के बड़ी स्पष्ट है कि उनकी आवाज को अगर दबाने की कोशिश की तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज तय किया है कि हम जो दमनकारी नीति, जो डराने की, धमकाने की और मामले दर्ज करने की जो भी

0: स्थानों पर पौधरोपण किया जाएगा। अमित शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री वन विस्तार व राजीव गांधी वन विस्तार योजना के तहत स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
1: वर्ष जो हमें टारगेट अभी कन्वे हुए हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया से सेंट्रल कैंपा के 104 हेक्टेयर है और सीए कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन में हमें लगभग 8 हेक्टेयर पौधारोपण का टारगेट मिला है, तो कुल लगभग 111 हेक्टेयर के ऊपर हम पौधारोपण करेंगे जिसमें हम लगभग 1,00,000 पौधे उसमें रोपित करेंगे। इसके अलावा हमारी दो स्टेट की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, एक मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना है और उसके साथ साथ राजीव गांधी वन विस्तार योजना है जिसमें हमने महिला मंडल स्वयं सहायता समूह या युवक मंडलों के द्वारा ही हमने पौधारोपण कार्य किया।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ। सुरमई सांझ कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को रेणु मनकोटिया का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे अभिनेत्री फिल्म से ये गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने, बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अभिलाषा इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की मिली जुली आवाजों में। संगीत दिया था आरडी वर्मन ने और बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। तो लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल।
1: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
2: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
1: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।
0: यादों की बारात इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर। सुरमई सांझ फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

हम किसी से कम नहीं, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, सुषमा, पूर्णिमा की मिली जुली आवाजों में। वो लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की थी राहुल देव बर्मन ने। और ये थी हमारे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। अब अपने रेडियो दोस्त रेनुमन कोटिया को दीजिए अनुमति। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। समय है कार्यक्रम मोजा ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजंग रैनिया सुना करते सारे किसान बागबान भाई भैन कने कार्यक्रम दे सारे स्रोतियां जो मेरा यानी रसीलू राम दा नमस्कार कने अज मेरे कने मौजूद हैं साड़ा सारे दा लोका पाऊ ता पाऊ राम राम कने सारे दा स्वागत
1: राम राम रसीदलू राम जी तुहां भी राम राम कने जितने भी श्रोता इस वेले अहां दे आकाशवाणी धर्मशाला ने जुड़ी उन्हां सारयां दा भी अहां जिहड़ा से अपने इस कार्यक्रम च स्वागत करदे ने कने दिखा मौजां रौनकां जिहड़ी से अंबरां लगाईआं झमाझम जिहड़ी बरखा जिहड़ी से रसीदलू भाई होआ करदे आ ना
0: बिल्कुल ठीक गला दे तुहां कने दिखा जी बिच बिच थोड़ी धुप्प भी होआ दी तां अहां दिखा दे के बरखा तां है पर सै बोलदे ना कि गर्मी गर्मी दी निजात बहु अल्लै दिकर सांझो नहीं मिलनी कने दिखा जी थोड़ी देई है बरखा दिखी के इ'यां नहीं बहकी आना कि भाई ठंडा आई इ'यां कने थोड़ा ध्यान रखना कि अल्लै भी गर्मियां हैं ना
1: बिल्कुल कने रौनक दुई गल रसीलू पाई भी हैं साढ़े टियाले बखे भी जड़ा से अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया भी चली कने जोरा शोरा कने अहां दे नौजवान जड़ा से तिथु दौड़ लगा दे है ना भर्ती चली
0: हाँ ठीक गला दे तो हाँ मैं भी देखिया भाई काफ़ी मुंडे जड़ा सै खड़ोते हुए है ना कने काफ़ी दिखा जी प्रयासरत है ना कने मैं तो बोलता बड़ी अच्छी गल है क्या कि हड़े युवा दिखा जी अहाँ दिखते कि सिंझा दे बेलै जैलू ग्राएं दे अंडे कंडे जैलू पुलियां होंगे नहीं सड़क दे अंडे कंडे बैठे हो तो एक सै लोग पाओ एक थोड़ा दुख भी होंगे कि दिखा जी इतने पढ़ी लिखी के कने थोड़ा हड़े सै बोलते ना तिन्हें थोड़ा कम कार करने का या कुछ भी करने का तिन्हें ये भी जिज्ञासा भी नहीं है ना अज दे युवा कने और छोट तू देना कम च ज़्यादा तिना की सोच है पर अज जालू जे मैं इन्हों बच्चे जो दिखा दा ना इतनी भीड़ है कने इतना तो भाई मेरा तो थोड़ा जहा सोच जड़ा सा बदली कि नहीं अल भी ऐसे युवा है ना जिन्हें अगे की सोच है कने अपने स्वास्थ्य की भी सोच है
1: बिल्कुल जी बिल्कुल कने बड़े सारे दिखा रसीलू पाई अहां दे ग्राएं च प्रतिभा तो बड़ी बड़ी है चाहे दिखी लिया तुहां खेल कूद जी गल करा तो अज हाँ भारत जड़ा सा कॉमनवेल्थ गेम च भी जड़ा सा अनेक मैडल चाहे स्वर्ण पदक हो ये सिल्वर हो ये है ना
0: बिल्कुल
1: बड़े सारे मैडल भी आए तो इस अहां दे जड़े ग्राएं दे न्याणे इन्हां तिन्हां च प्रतिभा आया पर थोड़ा दे तिन्हां निखारने की जरूरत है ना
0: बिल्कुल करें मैं तो बोलता कि जरूरी नहीं है कि जड़ा जिन्हें इस वास्ते आवेदन किते भर्ती होने ताई है ना जी सही ही इत्थे हुए मैं तो चाहता कि मैं तो बोलना चाहगा सारे युवाएं जड़ा सुना दे के भाई तुहां धर्मशाला दे ग्राउंड विच दिखा तुहां मैदान विच दिखा के कियां युवा जड़ा अपनी तरफ ते कितनी कोशिशां करा दे कने होई सकदा ते तिन्हीं कोशिशां दिखी के तुहांजो भी थोड़ी देई मेहनत मारने दी थोड़ी देई जिज्ञासा पैदा होवे कने तुहां भी सीधी मेहनत करन तां दिखा कुछ भी अपना जीवन जड़ा सा तुहां बदली सकदे
1: बिल्कुल ठीक लाया तुहां दिखा देखी कने जड़ा सा अहां दे नौजवान सिखदे ने चाहे सै खरियां गल्लां चाहे सै बुरियां गल्लां है ना
0: जी
1: तां अहां दे घर बखे ही यह मौका मिला दा तुहां जरूर जड़ा सा दिखना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया कुछ हिसाबे कन्ने होआ करदी आ तुहाड़े ग्राएं दे बखे अखे बखे ही होआ करदी तां आने वाले समय च तुहाड़े न्याणे भी जड़ा सा इन्हां प्रक्रिया च भाग लेना है तां तुहां पहले ते ही जड़ा सा दिख सुन जड़ा सा करी लेना चाहिए है ना
0: कने आने वाले जड़ा बच्चे जड़ा सोचदे ने कि अहां भी इस क्षेत्र

0: जाए के अपना योगदान देना तां देनी चीजें दिखे तो तिन्हें कुछ ना कुछ सीखने जेड़ा सा जरूर मिलना। कने भाऊ जियां के एक रीत दे अनुसार है ना एक अहां जानकारी साझा कर देता अज दी जानकारी जेड़ा सा पशुओं च चारा प्रबंधन तो असां कियां करना था भाई। बरसाती दा मौसम लग्या प्रबंधन तो सारे खूब करा दे होने है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: तां ये है कि बरसात दा मौसम है भाई खूब हरा हरा चारा जेड़ा सा तो बड्डा कने अपने डंगरा बछुए खुआत कने खूब सारा दुध पिया कने घ्यो जोड़ा है ना भाऊ।
1: बिल्कुल ठीक राधे रसीलू भाई तो हाँ दिखा इस वेले जड़ा सा चाहे अहां दी चरी हो या हरा घा हो या बीड़ा दा इस वेले जड़ा सा हरा चारा तो खूब मात्रा च होंदा पर हरा चारा ही नहीं पाई रहना तुसी है ना। कई बारी क्या करते हैं अहां कि बरखा हुई हो कने झटपट गए कने एक दो बारी साड़ा उपरे दा जड़ा वो है ना जोधा पाऊ
0: बिल्कुल
1: सब ही गया कहने तिन्नी अपनिया गाइए पाईते होना सिन्ना सिन्ना ही का है ना। तो बोले यार मैं तो दो तीन पूले पाईते कहने तिसा दा जेड़ा पिन्ना ऐसे ढिला हुई है ना। ता चारा जेड़ा ऐसे रलाई मलाई के ताई बोलते हरा कने सुखा चारा जेड़ा ऐसे रलाई मलाई ने जेड़ा से देना चाहिए कहने पशु भी तिसी चाओ ने ताई खादा कहने इस कने जेड़ा ऐसे तुम्हारा दुग दुध दे उत्पादन भी जेड़ा से बदता है ना।
0: बिल्कुल कने कोशिश हाँ कर सकते कि जेड़ा प्यागा बढ़िया ऐसा संजा खुआ लैन कने जेड़ा संजा बढ़िया ऐसा कल प्यागा खुआ लैन है ना जी।
1: हाँ ये तो बाकी गल भाई
0: अगर दे
1: तो
0: दे भी अहाँ कोशिश करन तभी अहाँ ऐसा समस्या का निदान जेड़ा सा खूब तरीके ने कर सकते कने सौगी सौगी जी कि हाँ हर बारी बोलते रहेंगे भाऊ के देखा बरसाती का मौसम है इस मौसम बच्चे हाड़ियाँ जड़ा कराला होंगे तो इन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा सीना रहा तो कोशिश ये कर के कुछ बिछाना जोड़ा सा डंगर बछुआ का ठीक होवे खास करके दुधारू पशुओं का ठीक होवे बिछाना ताकि चिचड़ पिथड़ जोड़ा सा थोड़ी कराला ना लगन कने क्योंकि देखा जी जोड़ा जे दुधारू पशु है ना चिचड़ पिथड़ जालू एक बार लगी है तो भाई है ना जी बड़ा
1: पशु
0: भारी
1: कमजोर
0: भुगतना
1: हो जाता।
0: पौंदा
1: हाँ जी हाँ जी
0: है
1: ठीक
0: ना
1: बोल
0: जी।
1: रहे तो
0: खास
1: हाँ जी
0: करके पशु में तो कमजोर होना ही पर जेड़ा तुहाड़ा सह बोलते ना कि रोजे का दुध 10 लीटर लैने की आदत पई हो सह खुद की सत रही है तो भाई बानी वाले भी अक्का थोड़ी जानी खानी है ना जी।
1: ठीक ला दे रसीलू भाई तो हाँ पिछे दे या मेरी या गाय भी जड़ा से चीड़न लगी पी है ना। ता मैं भी दो तीन बारी भाई नजदीकी पशु चिकित्सालय च गया कने तिथु ते चीड़ना ही दवा ले हुंदी ते सही
0: जी जी
1: मली ता
0: जी
1: हुण जड़ी है सै ठीक है। तो हाँ पक्की गल लाई कि बरसाती दे मौसम च जड़ा सै चिचड़ पिथड़ जड़े इन सै बड़े लगदे अहां दे
0: बिल्कुल
1: पशुएं है ना।
0: बिल्कुल
1: ता ए रहंदा है कि समय से रहा एक ता साफ सफाई दा विशेष ध्यान रखिए कने अगर दे अगर चीड़न चाड़न तुहाड़े पशुधन जो लगी
0: जी
1: आंदा
0: जी
1: तो
0: जी
1: तुहां अपने नजदीकी चिकित्सालय च जाओ उत्थे ते दवाई लिया कने अपने पशुओं का जड़ा सा तिसते
0: जी
1: निदान करवा है ना।
0: बिल्कुल कने सारे ते आसान तरीका कने सारे ते सस्ता तरीका यही है बहू के ज़्यादातर साफ सफाई अहाँ रखन ते दी अच्छा बिछोना रखन सुखा रखन कने ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि जिया हफ्ते का एक आध बारी छिड़काव तिदा करी दी तो भी इस समस्या ते जड़ा सा अहाँ पार पाई सकते हैं ना जी।
1: जी जी बिल्कुल ठीक ला दे तुहां कने दिखा इदी ते बाद जड़ा सा अहां ट्याले पर शामिल करना एक प्यारा दे लोकगीत है ना।
0: जी
1: ता सुना
0: जी
1: दे अपने श्रोता एक प्यारा दे लोकगीत पर उससे पहले एक संदेश।
2: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
3: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
2: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।

0: श्रोताओ तुहें ये प्यारा दिया लोकगीत सुनाया कने आशा करते होने ने तुहें ये लोकगीत जोड़ा सा पसंद भी आया होना है ना। तो शीलू राम जी गां गल करते हूँ डिजिटल साक्षरता की कने साइबर सुरक्षा की है ना
1: जी जी।
0: तो देखा अजकल जोड़ा सा डिजिटल सुरक्षा जी है साक्षरता बड़ी बड़ी जरूरी है ना। डिजिटल साक्षरता की जालू हाँ गल करते हैं तो कई लोग ये सोचते हैं कि रसीलू पाई तो ना वट्सएप पर चैटिंग कर ली, यूट्यूब पर वीडियो दिखी लिया या फिर फेसबुक पर फोटो पाई था तो सह डिजिटल साक्षर हो गए, पर अद्धा अधूरा जोड़ा सह सच है ना। डिजिटल साक्षर होने का असली मतलब यह होता कि तुम डिजिटल टूल का सही कने समझदारी कने सुरक्षित इस्तेमाल कियां करते हैं, जियां तुम बिना डर जोड़ा सह सही तरीके कने यूपीआई कने नेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं है ना। कने बड़े सारे जियां ऐप न तुम्हारे डिजी लॉकर हो या उमंग हो या उस ते तुम अपना काम जोड़ा सह खुद करते हैं है ना।
1: बिल्कुल, कने जियां कि तुम बोलिए ना कि अद्धा अधूरा ज्ञान।
0: हाँ जी हाँ जी
1: बिल्कुल, मैं सहमत है तुम जी, क्योंकि लोग बहुत दिखा अहाँ बोलते ना कि अद्धा अधूरा ज्ञान जोड़ा सा बिल्कुल खतरनाक चीज़ होंगी है ना जी।
0: बिल्कुल।
1: तिस्ते दिखा जी अह सोचते कि सांझो सब कुछ होंगे, पर दिखा जी अज का जमाना सह आई है जालू एक भी तुंज तो छोटा जहा बटन गलती ने दबोई है ना, तो पता नहीं कितना के
0: हाँ
1: पूरा दी पूरी है उम्र की कमाई भी जाई सकती कि ना, पता नहीं थोड़े और कितने के नुकसान हो जाने। तो ठीक बोला दे तो हाँ कि इसका जोड़ा पूरा ज्ञान होना ही जोड़ा सा उचित है।

0: कहना अगर तुहांजो अद्धा अधूरा ज्ञान है तो भाई दे दी चीज़ें ने अहां तो सलाह देंगे कि छेड़ा ही मत।
1: बड़ी गल है कि इंटरनेट पर सही कने गलत यानी फेक न्यूज़ की पहचान तुह करी पाते हैं कि नहीं। कई बार क्या होंगे कि तुम्हें जरा सा कोई मैसेज आई है, अगर अहम मनी लेंदे कि तुम्हें मैसेज आई है कि भारत सरकार बोला दी पई कि स्मार्टफोन यूजर जो जरा सा 5000 रुपये का फ्री रिचार्ज जरा सा दया करती है, तुम्हें ये आई है तो तुह क्या किया। एक आम इंसान क्या करता कि तुम बिना सोचे समझे अगे जे 10 ग्रुप ने तिना च जरा सा फॉरवर्ड करी है ना, तो सह व्यक्ति जरा सा डिजिटल साक्षर सह नहीं होंगे, सह तुम अहम डिजिटल साक्षर व्यक्ति बोलते सह तिस लिंक जो क्लिक ही नहीं करता कने तिस यो जेड़ा से डिलीट करी इंदा। हाँ, समझदा से समझदारी नहीं बांदा।
0: हाँ कने इस गल्ला ने लोका भाऊ मैं ये भी गल जोड़ा था कि अगर कोई देखा जी अजकल तो ऐसे भी प्रावधान आई हो कि अगर कोई ऐसा करता है कि गलत गतिविधियां जो शेयर करता है जियां कि तुहां बोलिया अगलिया 10 लोगों पे जींदा तो भाई ये बड़ा बड़ा जेड़ा सा एक क्राइम भी इसे मानते हैं ना जी। तो देखा जी दे दियां चीज़ां ते तुहां बचना कने गलत चीज़ां जिहदा तुहां जो ज्ञान नहीं है कने अद्धा दूरा गया ना तो है वह कुछ दूसरे जो भेजने से पहले भी तो 10 बारी सोचना ताकि तुहांजे उपर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई ना हो।
1: बिल्कुल। तो प्रमुख साइबर खतरों की गल करिए दिखा अपना रसीलू भाई अज डिजिटल जी जी अहम होंगे जा देता चोर भी जड़ा स डिजिटल चोरी जड़ा स नए नए स्मार्ट होंगे जा दे सह भी नए नए हथकंडे अपना दे है ना, रोज नए नए जाल बुना करते हैं है ना जी। मनी लिया फिशिंग कने फर्जी लिंक्स भेजा करते अहां दे जड़े फोने पर जड़ा स मतलब फर्जी लिंक आई जाने SMS दे थ्रू तुह आई जाने जी मतलब बिजली दे बिल दे संबंधित आई या कुछ होर आई है तो तुह जड़ा अगर तिथि पर तुह तुसी लिंक ओपन करीता अगर है तुसी खोलीता तो तिथि उत्ते भी तुह जड़ा स पैसा चली जाता। दूआ एक और दिखने जड़ा मिला सा ये मिला कि कुरियर बॉय बनी के जड़ा सा OTP दा फ्रॉड भी जड़ा सा हुआ था है ना।
0: बिल्कुल।
1: मनी लिया अहां दा कोई ग्राएं दा मुंडू ही है तिन्नी कुरियर करी के कुरियर पर एक डिब्बा लेके दिदे घरे पर कोई आई है भाई तुहाड़ा जड़ा सा कुरियर आया है ना, तो सह बोला था भाई मैं तो कुरियर मंगाया नहीं कुदे नाए पर आया है ना, तो सह बोला थे कोई नहीं सर अहां इसी कैंसिल करी दे पर कैंसिल करने ताई जड़ा सा एक OTP आना है तुहां तो जल तुहां से OTP तिसने शेयर करीता तो तुहां दा बैंक खाते ते तुहां दे पैसे जड़ा सा कटू जा दे।
0: बिल्कुल। कने दिखा जी अहां कार्यक्रम दे माध्यम ने अपने स्रोतें भी यही बोलना चाहेंगे कि दिखा जी हालांकि बार बार तुहांजो अजकल रेडियो च टैलीविजन च सारिया जगह दसा दे कि बैंक किसी भी प्रकार की जानकारी तुहांजो ते जिहड़ा सा फोने पर नहीं पुछदा है ना जी। कने अहां भी टियाले दे माध्यम ने कई बार ऐसिया ऐडा भी चलांदे कि ऐसा कुछ नहीं है ना जी। तो दिखा जी खास करके OTP की गल जालू आती ना जी तो किसी भी प्रकार का OTP जालू दिखर तुहांजो ये सुनिश्चित नहीं है कि मैं देदा फलाना काम कित्या कोई समान मंगाया या कै कुछ मतलब तुहांजो पक्का है नहीं तो तुहां OTP देने की तो कभी भी सोचनी ही नहीं है। ठीक है क्योंकि दिखा जी बैंक तो तुहांजो ते कभी OTP मंगता नहीं तो जिहड़ा मंगने वाले होने सह ही होने भाई ता थोड़ा दिया बची के रहना है ना जी।
1: बिल्कुल ठीक ला दे कने एक चीज और सीलू भाई दिखने जड़ी मिली सह दिखी कि हां दोस्त दा दे नाए पर जड़ा से फर्जी प्रोफाइल बनाई के पैसे मंगने दा काम भी जड़ा से चली पे है ना, सह बोला दे पे कि तुहां दे दोस्त दा दे नाए पर मुझे इतना पैसा चाहिदा भी दुख बीमारी है या 100 गल्लां भाने लगा देना पे
0: कने मैं तो दिखदा लोका पाऊ ऐसे बंदे जेड़ा फोन करदे ना तिना दी आवाज पता नहीं कुतू ते आई जांदी बिल्कुल सीधी आवाजा ही निकाल दे कने दूसरी गल तिना यो जानकारी कुतू ते आई जांदी कि तुहाडा मासी कौन है तुहाडा मामा कौन है ना जी। तो यह सारिया चीजा दिखा जी बड़े भारी सह बोलते ना एडवांस हो चुके हो ना जी, चोर भी जो बड़े भारी एडवांस हो चुके तो तुहांजो इस जमाने में सतर्कता रहना ही है अगर तुहां बचना है। तो
1: बिल्कुल तुहां ठीक ला दे दिखा इहदी ताईं तुहां कुछ एक जड़े सुरक्षा ताईं जड़ा सह अपनाई सकते सह है मजबूत पासवर्ड अपना रखी सकते है ना
0: जी।
1: जियां 1-2-3 पर नहीं तुहां @#*, कुछ भी मतलब थोड़ा जिहा जड़ा सह कठिन बनाई दिया तुसीं अपने पासवर्ड
0: ऐसा बनाई दिया कि कोई सोची ना सके
1: कल भी जेड़ा सा जी तुहां गलाया कि OTP जेड़ा तुहां कभी भी शेयर नहीं करना है ना, कने कोई भी बैंक दा अधिकारी तुहां ते कोई भी नहीं बोलदा कि तुहाडा खाता बंद हो जाना या फलानी योजना दे तहत तुहां दे
0: कने भाऊ कई बारी खाते बंद भी हो जांदे ता ऐसी गल नहीं है सा चालू नहीं हुंदे सा चालू हुंदे तुहां अपने संबंधित बैंक च जा कने अपना चालू करवाई लिया है ना जी। ये बिल्कुल एक सह बोलदे ना कि एक बिल्कुल आसान दे एक तकनीक है कने आसान दे काम है इस वास्ते तुहांजो OTP वगैरह दे दे चांस च आउणे जरूरत नहीं है
1: जी जी जी। तो यदि कन्ने एक और तरीका तुह बनाई सकते इस चाहे 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस तुह जेड़ा सा अपने OTP आना भी तो जालू भी तुह करना तो फोन ने अटैच होना ताई तुहाड़ा पैसा जेड़ा सा निकलना इस जो भी अपनाई सकते कने सोची समझी के क्लिक करना तुहां कदी भी अनजान लिंक जियां लॉटरी जितने दा प्रलोभन होई आ फ्री गिफ्टां होई आ है ना क्रेडिट कार्ड होई आ लोन ने

0: होंदे, बड़े बड़े फोन होंदे ना,
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो कहे कि
1: कने
0: जाल साजी तो सब बैठे होंदे कि कियां ना कियां हाँ ठगिए कुसकी,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना।
1: जी कने छोटी जी गल होर मैं इस विच लाना चाहता लोग पाओ कि दिखा जालू भी तो हालांकि सारे तो नहीं है पर कुछ एक जिन्हें नहीं पता लगता साढ़े कई ऐसे स्रोत हैं जेड़ा एटीएम च पैसे निकालना चाहते तो तिन्हें अपियों एटीएम च पैसे भी नहीं निकालना आते तो भाई अगर जिन्हें नहीं आते तो सह कोई आपू कन्नै अपना बिजनेस नहीं है जेड़ा होंदा कोई भी या अपने घरे का कोई भी बंदा होंदा तो इसे लेके जान कने ये नहीं है कि उतू जो बंदा कोई भी अनजान खड़ूती अति साल एटीएम देता कने लै भाई इतने के पैसे कढ़ी दे ना जी
0: हाँ
1: तो ऐसा काम भी नहीं करना कने इन्हें छोटी छोटिया सावधानियां रखी के ही तो हाँ जो सह इस इन्हों चीज़ों से बची सकते अपने नुकसाने से।
0: बिल्कुल रसीलू भाई, तो यह भी है कि अगर तुम ठगोई भी जाते तो एदी ते बाद तुहां जेड़ा सा पैनिक नहीं होना, ज़्यादा घबराना नहीं है, तुहां जेड़ा सा इसते बाद जेड़े कदम उठाई सकदे, तो सब तो पहले तुहां अपने बैंक जो इनफॉर्म करना, कने अपने कार्ड कने अकाउंट जो ब्लॉक करवाई है ना, है ना, ताकि तुहां दे पैसे नहीं खटून कोई भी, कने इसते बाद तुहां जेड़ा सरकार दे राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 193 पर भी तुहां तुरंत कॉल करी सकदे, कने इत्थी जेड़ा सा तुहां दी कॉल ते ना लैणी, कने पैसे वापस मिलने दे चांस तुहाड़े वधियां, जितना जल्दी तुहां करगे ना इहदी पर
1: जी
0: उतने ज़्यादा अगर तुहां ने ठगी हुई हो तो रिकवरी होने दे चांस जेड़ा सा वधी जांदे, है ना।
1: बिल्कुल
0: कने
1: कने
0: तुहां घरे बैठे ही जेड़ा सा वेबसाइट
1: हाँ
0: है www.cybercrime.gov इन पर जाके भी अपनी शिकायत जेड़ा सा दर्ज करवाई सकते हैं, है ना। तो रसीलू भाई बोलने का मतलब यही है कि तुहां सतर्कता ही जेड़ी है सह साड़ी सुरक्षा है
1: हाँ
0: ना।
1: सतर्कता तो है भाई सुरक्षा पर सारे ते छोटी दे एक बिल्कुल छोटी गल कने बड़ी गल के भाई किसी भी प्रकार दे लालच विच नहीं होना क्योंकि सियाने गलाई हो ना कि लालच बुरी बला है ना जी जालू भी तो अंजो लालच आंदा तो भाई तो अंजो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होंदा चाहे सह किसी भी प्रकार का नुकसान हो तो भाई अगर तुहां इस नुकसाने ते बचना है तो थोड़ा जिहा लालच घटाना पौना कने थोड़े ने ज़्यादा कमाने का नहीं सोचना है ना जी
0: हाँ जी हाँ
1: कने
0: जी हाँ
1: सह बोलते ना कि कमाने वास्ते किसी भी प्रकार का शॉर्टकट भाई ज़्यादा दिन नहीं चलता
0: नहीं
1: तो
0: चलता,
1: गलाने का यही मतलब है कि लालच विच नहीं आना कने दे दी चीज़ों ने नहीं जुड़ना ताकि सुरक्षित रहन तुह भी कने तुहाड़े पैसे भी कने तुहाड़ी जमीन सह बोलते ना कि उमरा दी कमाई
0: उम्र
1: है
0: की
1: ना
0: कमाई
1: जी सह
0: पक्की
1: भी
0: गल लाई।
1: सुरक्षित रहे है ना जी
0: हाँ जी
1: तो भाई इन्हें ही गल्ला करना लोका पाऊ फिरी ते है ना जी
0: प्याले चलो
1: टाइम होवा
0: अपने
1: दा एक घुट पानिए दा कने सोगी सोगी एक
0: लोक जानकार।
1: जी।

0: इसी प्यारे दे मिठे दे लोकगीत कन्नै जड़ा सा अहां दा कार्यक्रम दा वेला जड़ा सा इत्थी संपन्न होआ दा। जाने ते पहले दस दईए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग ग्रिया सुरेंद्र कपूर होर दा, प्रस्तुति जिहड़ी है जतेंद्र पाल सिंह होर दी, हुण अपने टियाले दे लोके बाऊ कन्नै
1: रसीलू राम जोधिया। इजाजत।
0: अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोजांग राइंदियां। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।

0: रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों की बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्य प्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी तथा कथित यौम इस्तेसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इस सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉप और गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने श्री गडकरी द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्रियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ 24,625 पर रहा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में ईशा रानी, बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिहा, अनमोल खरब और श्रियांशी वलीशेट्टी ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला डबल्स में सोनाली सिंह और ऋतिका ठाकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सारे ही किसान बागवान भाइयों भैणों का अहां अपने इस कार्यक्रम च स्वागत करते हैं। कन्ने किसान साथियों अज दे इस कार्यक्रम च तुहां ने जुड़ा दा तुहां दा लोका पाऊ कन्ने मिंजो कन्ने न रसीलू राम जी। रसीलू राम जी आइया आइया।
1: जी जी भाई आइया कने सारे जो मेरी तरफ ते भी राम राम।
0: तरसीलू भाई कदे ये सबरी ताना कन्ने मक्की दी फसल ठीक है?
1: देखा जी धाना दी तां मैं गल कर सकदा भाई कि ये जड़ा जमा जमा बरखा होआ दी ना जी,
0: हाँ जी हाँ जी
1: बिल्कुल धान तां अपनी बिल्कुल सह बोलते ना कि अच्छी आ बड़वारा चैन, पर छलिए दी कुछ इस वरी है जड़ा सह ढिल है, क्योंकि थोड़ी बरखा तां ज़्यादा हुई हुई पर सोगी सोगी थोड़ा दिया जड़ा सांझो सारे किसानों जो प्रकोप दिखने मिलता जंगली जानवरों का, तां भाई इस वरी जड़ा सूरां दा प्रकोप कुछ ज़्यादा ही दिखने मिला था छलियां या फसलों विच,
0: अच्छा,
1: कने थोड़ा जहा नुकसान तो भाई हो दा है इस
0: पर
1: बारी।
0: रसीलू भाई बहन का कुथू तुहां भी तैन पाए होंगे कने पैरा तुहां पूरा पाया होंगे है
1: हाँ
0: ना?
1: बिल्कुल, पैरा तो दिखा जी छलियां दा करना ही पौंदा भाऊ, पर जंगली जानवरों का पैरा तो तुहानू पता ही है ना जी, तिन्हें
0: हाँ,
1: उकिया पैरे कने क्या तिन्हें बाड़
0: क्या बात
1: है ना
0: भाई।
1: जी,
0: हाँ जी हाँ
1: तिना
0: जी
1: रहना ही सह बोलते इदी च भाई जंगलां च है ना, तां तिन्हें तो कोई ये नहीं भाई दिखदे के कालू दे या मेरी अख लगी है ना या कुसी दी भी जड़ा बैठे तन्ने पर है ना जी, तां
0: हाँ
1: तालू ही होंदे भाऊ साहब ना, सोचदे भी नहीं कि कालू करी अपना काम।
0: हाँ अच्छा,
1: तां चलो जी ठीक है, पर तिना दे हिस्से का तिना खाई जाना है
0: हाँ
1: ना
0: जी हाँ
1: जी,
0: जी ठीक
1: कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं, पर चलो कुछ एक हांजो ते जेड़ा प्रयास होंदे सह सांझो करते रहना चाहिए, निरंतर अपने खेत की निगरानी जेड़ा सह सांझो करते रहना चाहिए कि ना, बाकी तो जेड़ा हांजो मिलना सह भाई सांझो ही मिलना है ना जी।
0: ये तो पक्की गल तुहां गलाई रसीलू भाई। दिखा किसान जेड़ा सह मेहनत ते पिछे कदी भी नहीं अड़दा है ना, चाहे
1: जी
0: तुसी
1: जी
0: आवारा पशुओं दी जेड़ा सह सामना करना पवे समस्या दा,
1: जी
0: चाहे
1: जी
0: जंगली जानवरों दा करना पवे, या फिर ही मौसम दी मार दा सामना तुसी करना पवे, पर किसान जेड़ा सह जमीना ते सोना जेड़ा सह कढ़ी के रहंदा है ना।
1: बिल्कुल, कने दिखा जी ये जड़ा अहां बोलते ना कि जंगली जानवरों की मार है, कुथी ना कुथी भाऊ अहां भी इस ताई जड़ा सा
0: जिम्मेवार
1: जिम्मेवार है ना, क्योंकि दिखा जी जंगलों का दायरा जड़ा सा इतना घट
0: घटदा।
1: हो आदा ना जी, कने प्रकृति ने अहां इतनी छेड़खानी करा दे जितू बेचारे इन्हों जंगली जानवर रहने दे जगह न, तो तू अहां जाए कि अपने डेरे जमाई ले तो भाई
0: इना
1: इन्हें तो
0: कदा
1: हाड़िया
0: जाना।
1: घर बखियो दौड़ना है ना जी,
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: तां सह कुथी ना कुथी अहां बोली सकदे कि अहां तो हां ही जिम्मेदार हैं इन्हां सारियां चीजां वास्ते।
0: बिल्कुल ठीक कहना। इदी कहना ही रसीलू भाई, आज जड़ी गलबात अहां करनी है, जानकारी देनी है, सह है औषधियां पौधे पर है ना।
1: जी जी
0: ता अहां तो यही चाहते कि अहां दे बड़े सारे किसान भाई जड़ा सह अज पारंपरिक खेतीबाड़ी जो छड़ी के जड़ा सह इस पाहें भी वो दे अपना रुझान दसा देन है ना, चाहे सह तुलसी की गल हुई है। तुलसी तो दिखा रसीलू भाई अहां दे हर एक घर च जड़ा सह मिली आनी, तुहें कन्नै
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पूजते भी लोग तिसदी है ना।
1: बिल्कुल
0: कन्नै तिदी कन्नै कन्नै गल करिए तो इसी कन्नै ही अहां दे बड़े सारे किसान जड़ा सा अश्वगंधा दी खेती भी करा करदे,
1: आहा
0: एलोवेरा भी करा
1: जी
0: करदे,
1: जी
0: लेमन
1: जी
0: ग्रास होई आ है ना,
1: कने
0: पुदीना होई आ।
1: जी बिल्कुल, कने ये तो छोटी छोटी चीज़ें दिखा जी हर जगह ही मिली जानियाँ लगभग, पर दिखा जी हाड़ा जड़ा हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है ना जी, ठंडा पहाड़ी क्षेत्र है, इस विच जियां हाँ गल करिए कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति शिमला ये सारियां पहाड़ी इलाके ने, इन विच बुरांस दिखा जी कुटकी
0: कुटकी।
1: जटा मानसी अतीस सर्पगंधा ये कई प्रकार की बहुमूल्य जड़ी बूटियां जड़ा सा मिलदियां, जिन्हों का आयुर्वेद विच कई प्रकार दियां दवाई बनाने ताई इन्हों का प्रयोग होंदा, तो दिखा जी हालांकि सह बोली सकते भाऊ के जड़ा जलवायु परिवर्तन है कने अंधाधुंध इन्हों का जड़ी बूटियां का प्रयोग या इन्हों का बोली सकते अहाँ ज़्यादा तो ज़्यादा इन्हें मतलब संरक्षण नहीं करी पा दे अहाँ तो हाँ तो इन्हों जड़ी बूटियां का अस्तित्व जड़ा सा खत्म हो करता, पर हाँ जो याद रखना चाहिए कि ये जड़ा ऐसी जड़ी बूटियां जड़ा प्राकृतिक रूप ने उगदियाँ कना हाड़े हिमाचल विच उगदियाँ दिखा जी, इन्हें जीवन वर्धनी भी बोली सकते हाँ ये जीवनदायी हैं,
0: हाँ जी हाँ
1: तां
0: जी
1: इन्हां दा अहां यही कोशिश करना चाहिए हां जो कि इन्हां दा ज़्यादा तो ज़्यादा संरक्षण करिए, हालांकि मनाली

0: जी हाँ जी।
1: अच्छा, इस वक्त जी तो वहां दसिया कि जी टमाटर लगाई हो, कोई भिंडी गोभी वगैरह था, ठीक है पैदावार सब्जियां दी।
0: हाँ बिल्कुल बढ़िया है।
1: अच्छा, काकू जी बीज कुछ तो ले आंदे तो? हां,
0: बीज अपना तो ज्यादातर थले ते रहिंदा, बाकी कुल्लू ते आंदा है। हाँ
1: अच्छा कुल्लू ते,
0: जी हाँ
1: यानी कि खरा विश्वास वाला बीज होना है ना,
0: जी हाँ
1: तो
0: जी।
1: आप कुल्लू को नहीं दसिया तो जब उतो ले आने बीज
0: कुल्लू
1: की।
0: सारा उस साइड काफी काम किया कुल्लू से ना,
1: अच्छा,
0: तो उत्थे दे थोड़ा
1: यानी कि खेती का काम करते हैं कुल्लू
0: खेती
1: भी?
0: नहीं एग्रीकल्चर का, ये सब्जी सब्जी का
1: अच्छा, कुल्लू च भी तो हाँ रह गए, खेती बाड़ी की है ना।
0: खेती बाड़ी, वहाँ सब्जी खरीदी खरीद के ना मार्केट में।
1: अच्छा, यानी कि मंडिया समान तो होंगे है ना,
0: हाँ जी
1: यानी कि मंडिया समान पजाना करना, तो वहां जो प्रेरणा मिली कि
0: कुछ अपना करिए।
1: अपना
0: हाँ
1: कर दे वही है ना,
0: जी
1: अपना उत्पादन ही मंडी में पहुंचाते है
0: हाँ
1: ना।
0: जी
1: अच्छा, तो जी 40-50 कनाल जमीन बिच काम करना है, कल्ले कर लेंदे काम इतना?
0: नहीं, वो बंदे हैं उत्थे 3-4 बंदे। हाँ
1: अच्छा, बंदे
0: जी
1: रखे हो ना।
0: हाँ जी
1: अच्छा, तो वहां का जड़ा ये इलाका यानी कि ये तो खेती की कर दे, बैला ना कर दे कि
0: पहले
1: ट्रैक्टर
0: तो पुरानी तो बैला ही ना, आजकल थोड़ा मॉडर्न हो गया था ट्रैक्टर,
1: छोटे आई
0: छोटे
1: होने
0: ट्रैक्टर।
1: पावर
0: हाँ
1: ब्रीडर है ना,
0: पावर
1: तो हाँ भी
0: ब्रीडर।
1: ले लिया होना अपना
0: हाँ
1: ना।
0: जी हाँ जी
1: खाद की गल करते हैं, दिखा ये जड़ा धारगंडी इलाका है, प्रकृति पूरी यौवन भरा इस इलाके बिच है ना,
0: हाँ जी हाँ जी।
1: कुदरत का दित्य हर जड़ा सा कुछ है, तो ता खादा कौन कौन पाते तो? हाँ
0: खादा ज्यादा करे अपना गोबर ही
1: अच्छा,
0: अपना
1: देखा
0: खादा।
1: बड़ी अच्छी गल है कि
0: हाँ
1: प्राकृतिक
0: जी
1: जड़ा विधि करना
0: प्राकृतिक।
1: तो हाँ
0: हाँ
1: खेती
0: जी
1: बाड़ी
0: हाँ
1: करा कर देना,
0: जी।
1: बाकी और यूरिया वगैरह नहीं पाते है ना?
0: यूरिया तो बिल्कुल टच नहीं करने सारे जमीन में।
1: अच्छा,
0: नहीं
1: दिखा बड़ी अच्छी गल है। हाँ जी, काकू जी तो जड़ा तुहां दा उत्पादन जल हुए तैयार हो जाता ना, कुछ भेज दे सी तुहां तैयार होने के बाद?
0: इसी ओ सर कुछ कांगड़ा मंडी भेजते,
1: हाँ
0: जे
1: जी,
0: बक लेवल च होता थोड़ा घट लेवल च होता, वो अपना शॉप पर जे जड़ी मेन मेन दुकानें बड़िया उन्हें
1: हाँ जी,
0: भेजते।
1: अच्छा बिकी जाता ना।
0: हाँ जी हाँ जी
1: अच्छा, इसके बाद गल करते हैं ना जी, इतने स्तर पर तो हाँ जी खेतीबाड़ी करा करते हैं ना, समय समय पर विभाग द्वारा जी कोई ट्रेनिंगा चलती हैं, कोई कैंप चलते खेती दे, तो हाँ भी कुछ सिखलाई वगैरह ले कभी खेती दी,
0: नहीं विभाग ते नहीं सर,
1: यानी कि जेडे अपने
0: अपने
1: अनुभव
0: बस
1: है ना,
0: अपने।
1: अपने तजर्बे करने ही
0: हाँ
1: करते
0: जी हाँ
1: आए
0: जी।
1: ना, तो जी फसला बिच कभी कोई रोग कीट बीमारी तो नहीं आई कभी
0: रोग
1: ऐसे?
0: रोग तो आते रहते सर ना टाइम
1: अच्छा,
0: ने
1: क्या
0: सर,
1: करते निदान की करते फिर तेदा?
0: तिदा कुछ स्प्रे या कुछ फिर अपने मेथड नाल
1: अच्छा, यानी कि देसी तरीके ना है ना,
0: देसी तरीके। हाँ
1: ये जीव अमृत ये घन
0: जी
1: जीव अमृत हो या
0: हाँ जी हाँ
1: अग्नि
0: जी
1: अस्त्र ब्रह्म अस्त्र है ना।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: अच्छा, तो जी तो हाँ प्राकृतिक विधि करना तैयार कर देन पूरा सब्जियां ना,
0: बिल्कुल जी
1: जल हुए बेचनिया होता बाजार बिच, दिखा प्राकृतिक विधि करना थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है ना,
0: हाँ जी
1: जी
0: हाँ जी
1: निराई
0: हाँ
1: गुड़ाई
0: जी।
1: करनी है ता उस हिसाब से भा मिली जाते फिर है
0: उस हिसाब का रेट तो नहीं मिलता ना, ये
1: ना।
0: विदाउट खाद जड़ी है उसका भी सेम
1: हाँ,
0: नहीं
1: कनाई कल ग्राहक दिखता सस्ता कुछ बहा
0: सस्ता,
1: ना,
0: सस्ते चक्रे से ना।
1: भले ही सह, यानी कि
0: हाँ
1: भी जिस यहाँ बोलिए वो है पूरा
0: जी
1: जहर ही हो है
0: हाँ
1: ना।
0: जी हाँ जी।
1: अच्छा, यानी कि जड़ी तो हाँ जमीन ले, कितनी जमीन दसी तो हाँ पट्टे पर लियो?
0: 50 कनाल जी।
1: 50 कनाल है
0: हाँ
1: ना,
0: जी
1: तो सह 1 साल वास्ते लेंदे या फिर?
0: एक साल का पेड़ है ना, 30 साल काम बनता जाना साल।
1: अच्छा, यानी कि ये कुछ पैसे वगैरह लगते
0: हाँ
1: होने
0: जी
1: है
0: हाँ
1: ना,
0: जी हाँ जी।
1: साले
0: पैसे
1: साल देने है
0: साले
1: ना,
0: साले
1: कना अहाँ दे ग्रामीण भाषा च इसी अहाँ बोलते हैं कि चकोता है ना, चकोता एक ये हावी चकोते पर जड़ी से जमीन ली है ना। ये अलावा जी हाँ तो हाँ जिक्र किया है कि देसी खादा तो हाँ अपने खेतरा बिच पाते हैं, कितने पशु रखे हो करे?
0: पशु तो सर अपने घाट पर एरिया कलेक्ट कर लेते हैं, जितने तो ज्यादा है उत्थे गड़िए भारी के कहना फिर सीधा प्लाटे भरी।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: यानी
0: जी
1: कि पशु वाले की मुर्गियां वगैरह वाले भी पाई दे पोल्ट्री?
0: पशु वाली आज मुर्गिया ट्रायल के त्या पर आज।
1: अच्छा, यानी कि
0: हाँ
1: मुल्ला लैनी खाद है ना,
0: जी
1: तो जी जीपा का हिसाब करते हैं कि
0: जीप
1: तुल।
0: जीपा जी
1: अच्छा जी, आईडी है ना,
0: आईडिया
1: किन्ने
0: नहीं
1: दी मिली जाती एक जीप?
0: ये जीप सर 2,000 2,200 2,500।
1: अच्छा, जिसी यहाँ बोल देना कि काफी एक हौसले वाला काम है कि देखा देसी खाद मुल्ला लैनी है
0: हाँ
1: फिर
0: जी
1: ही जड़ा सा सब्जी उत्पादन करना है
0: हाँ
1: ना।
0: जी हाँ जी।
1: अच्छा, इस वेले बाजार बिच क्या क्या उत्पादन भेजा कर दे दो हाँ इस वक्त?
0: इस वक्त तो देखा सर ये मूली तो अपनी आई है,
1: हाँ जी,
0: कहना 2-4 दिन टमाटर चली पड़ा बड़े स्केल पर, 2-3 महीने है फिर
1: अच्छा
0: गोभी फूलगोभी सारा चलने वाला है,
1: हाँ जी
0: बाकी बैच बाय बैच लगा तो कहाँ भी सिस्टम।
1: जी काकू जी, थोड़ा जहा अपने इसे ग्रांड के बारे च और भी दसा, जियाँ जमीन ना जो तो हाँ कुछ बाड़बंदी वगैरह होगी थी कोई, जी जंगली जानवर आते नहीं खतरा है तो फसल है कुछ?
0: बाड़बंदी दे यानी कि देखा जाए एक बंदा है
1: हाँ,
0: तो
1: किसी
0: किसी
1: थोड़ा
0: बड़ा
1: खर्चा ज्यादा पे
0: खर्चा
1: जाना।
0: ज्यादा करने
1: हाँ,
0: सिचुएशन नहीं होती ना।
1: दो खेत कदा किन, दो
0: हाँ
1: कदा
0: दो
1: किन है
0: करके
1: ना,
0: तो
1: सारे
0: यानी
1: मिली
0: कि
1: के।
0: मिली के करना उस तब बाड़बंदी सी भी है
1: हाँ,
0: सामने।
1: बंदर वगैरह तो नहीं इस
0: बंदर
1: इलाके?
0: वार तो बहुत अंत के,
1: और कौन कौन जानवर जंगली?
0: बंदर है सूर है।
1: अच्छा
0: हाँ जी इना ज्यादा अंत के
1: अच्छा
0: बिर भालू बंदा बाद। हाँ
1: अच्छा
0: जी
1: अच्छा भालू भी फसल

0: हाँ
1: है।
0: जी हाँ जी, नुकसान
1: अच्छा,
0: करता फसल है।
1: तो जी खेतरा च कोई राती तो नहीं पैरा वगैरह करना पौंदा जी?
0: हाँ जी, तो करना पौंदा फिर अपना, तो फिर
1: अच्छा,
0: समान
1: उत्थ ही
0: समून
1: बनाया होना खेतरा
0: उत्थ
1: बिच ही जी कुछ रहने
0: उत्थ
1: जी है
0: उत्थ
1: ना?
0: शेड बनाया उत्थ शेड।
1: हाँ, क्योंकि दिखा इतनी मेहनत करनी
0: हाँ
1: कने
0: हाँ जी हाँ,
1: राती का दिखा बंदर आई जाता घंटे ची पूरा तबाह
0: और तो
1: करी
0: एक
1: जन्दे।
0: घंटे का खत्म है।
1: हाँ, अपने सुनने वाले भी जरा सही दस दिए कि दिखा बाढ़ बंदी ताइया भी विभाग दी मती सारी स्कीमां चली
0: हाँ
1: है
0: जी हाँ
1: ना,
0: जी
1: ये
0: हाँ,
1: मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है ना। बाकी सिंचाई ताइया तो दिखा इसी इलाके विच पानी दी तो कोई कमी नहीं है ना?
0: पानी तो है सर ना, पर पानी के लिए भी अब नीचे मैं काम कर रहा हूँ,
1: हाँ,
0: उत्त घटते घट भी मैं कोई 1.5 किलोमीटर पाइप आई है,
1: अच्छा, पानी तो हाँ लिफ्ट कितनी है कि
0: लिफ्ट कितनी है,
1: थल्ले गया सिस्टम है मोटर है कि?
0: नहीं मोटर में नाले तो कितने भाई फ्लो है।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: बिना मोटर आई जाता?
0: बिना मोटर
1: अच्छा, यानी कि तो हाँ दे खेतों के कुछ उभरे दे पानी तो हाँ जड़ा सा पाइपा दे
0: पाइप
1: माध्यम है।
0: मत दिलाते,
1: कितनी बड़ी पाइप पाई हो ये?
0: पाइप दे 3 इंच दी है, 2 भी है, लास्ट दो ढाई दो दी है।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: खर पानी आंदा ना?
0: खुला पानी है।
1: अच्छा जी, दिखा करना जी तू पानी है तो हाँ सब कुछ तैयार कर सकते है ना,
0: बिल्कुल जी
1: करना
0: बिल्कुल,
1: पानी दे बिना तो कुछ भी नहीं है
0: कुछ
1: ना।
0: नहीं।
1: तो जी यहाँ पानी जो लिफ्ट करने जाइया नहीं तो हाँ कोई स्कीम का साधन लिया जी यहाँ कोई योजना चल दिया
0: स्कीमा साधन तो नहीं
1: नहीं है
0: सर,
1: कुछ ही और दूर पानी पहुंचाना हो अपनी खाली जमीन च?
0: खाली तो अज विभाग के तरफ से कोई वो नहीं है,
1: अच्छा
0: कने अपना ही है सिस्टम, जो भी है अपना पाइप खरीदी के लिए आओ
1: अच्छा तो फिर जी पाइप पाते पानी हूं सीधा खेतरा की छड़ी कि कहाँ टैंक वगैरह बनाया?
0: खेतरा जी, जल
1: अच्छा,
0: यूज करना तल हो गया ना, अगर नहीं यूज
1: तो
0: होना से
1: पचा ते
0: बार
1: खोल
0: बार
1: देना ना?
0: कंटिन्यू चला रहता बार ही ना।
1: अच्छा, इदे अलावा जी दसिया तो हाँ इतनी बड़ी तो हवाल जमीन है कुछ तो हाँ पट्टे पर भी लियो कुछ इदे अलावा जी अपनी जमीना बिच पौधे वगैरह भी लगाए जी फलां फूलां वाले
0: पौधे लगाए सर,
1: क्या दे क्या दे लगाए?
0: पलम है, सेब है,
1: हाँ जी,
0: जापानी है,
1: अच्छा
0: फिर कीवी है, कुछ प्लम
1: अच्छा
0: है।
1: ता तो फल भी बेचते होने हैं ना?
0: फल जी अपने खाने लायक तो ही है,
1: अच्छा
0: छोट ज्यादा पेड़ नहीं ना,
1: हाँ, कहना देखा दार गंडी चाहे जेड़ा भी उत्पादन होगा है पूरा नेचुरली होना है ना,
0: नेचुरली सर,
1: जिदी दे रंग रूप कने बनावट ही जड़ी से फल दिखने वाली है ना।
0: बिल्कुल।
1: काकू जी अहां दी जड़ी नौजवान युवा पीढ़ी है तिना वाल भी दिखा अपनी खरियां खुलियां जमीन है ना, इहदे बावजूद भी सह जड़ा सा तां तू जिसी हां बोलिए कि नौकरियां पिछे नौकरी दी तलाश करा करदे ना, उस युवा पीढ़ी जो भी तो हां कोई ऐसा कोई संदेश दिया कि सह भी जड़ा सा अपना काम काज करी के अपना रोजगार चलाई पान?
0: युवा पीढ़ी तो ये है ना भाई,
1: हाँ जी
0: कि अपनी जमीन ना तो आजकल मॉडर्न तकनीक का सारी है ना,
1: हाँ
0: इस पर अच्छा है, उस पर का प्लाट लगाइए या एग्रीकल्चर करा कुछ भी,
1: हाँ जी
0: तो अच्छा आउटपुट है इससे।
1: हाँ जी
0: हाँ, तो इस इनके घुसना पड़ना नौजवान भी ना,
1: हाँ,
0: क्योंकि नौजवान होंगे ता ही इनके इसी आगे थोड़ी दी रफ्तार
1: खेती जो
0: मिलेगी।
1: बढ़ावा मिल
0: हाँ
1: सकता
0: जी
1: है
0: हाँ
1: ना,
0: जी
1: देखा
0: हाँ जी,
1: बुजुर्ग हाँ दे खूब मेहनत कीती है ना,
0: बिल्कुल जी
1: अगर
0: बिल्कुल।
1: अहां हूं बुजुर्गों का साथ नहीं देंगे तो खेती किया होनी है ना
0: हाँ जी
1: जी। काकू जी तुहां अपने खेतीबाड़ी के अनुभव अहां कन्ने साझा किते अपना कीमती समय तुहां अज दिता तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों, भेंट वार्ता दे अपने इस अंक दे बाद हुण कार्यक्रम च बेला आउंदा मौसम दी जानकारी तुहाने सांझी करने दा, तां रसीलू भाई दिखा आउणे वाले 2-3 दिनां दी गल करिए, तां कांगड़ा दी गल करिए, तां इत्थे जिहड़ा सा बोलिया घने बदल छाए रहणे न, कने बारिश दी भी संभावना है, कने ज़्यादा तो ज़्यादा तापमान दी गल करिए तां इत्थे 31 से 32 डिग्री सैलसीयस, कने घट तो घट जिहड़ा सा 25 डिग्री सैलसीयस दे बिच रहने दी जिहड़ा सा संभावना है ना। कने इहदे कन्ने ही हुण गल करिए चंबे दी, तां चंबे दे बोले इत्थे मानसून जिहड़ा सा सक्रिय है, कने इत्थे अधिकांश क्षेत्रां च बोले जिहड़ा सा हल्की ते मध्यम बरखा जिहड़ी है सा जारी रहनी है ना। जिला प्रशासन ने जिहड़ा सा निचले इलाकियां च कने मौसमी नाले ते अखे वखे रहने वाले लोकां नूं जिहड़ा सा सतर्क रहने दी जिहड़ा सा सलाह दित्ती हो है। कने अगर गल करिए इत्थे ज़्यादा तो ज़्यादा तापमान जिहड़ा सा आने वाले 2-3 दिनां च 29 से 30 डिग्री सैलसीयस दे बिच, कने घट ते घट तापमान जिहड़ा सा 21 से 22 डिग्री सैलसीयस दे बिच रहने दी जिहड़ा सा संभावना है। हुण आउंदी है वारी मंडी दी, तां मंडी दी गल करिए तां आने वाले 48 से 72 घंटियां च इत्थे जिहड़ा सा तेज़ हवा कन्नै गरज चमक कन्नै जिहड़ा सा बरखा जिहड़ा सा होई सकदी है, कन्नै पहाड़ी रास्तियां पर भूस्खलन दे जोखिम भी जिहड़ा सा इत्थे बढ़न, तां तुहां जिहड़ा सा अगर तुहां यात्रा करनी है तां मौसम जो दिखी के ध्यान च रखी के जिहड़ा सा यात्रा करनी है। कन्नै मौसम पूर्वानुमान दी गल करिए तां इत्थे अधिकतम तापमान जिहड़ा सा किसान साथियों 31 डिग्री सैलसीयस, कन्नै घट ते घट तापमान जिहड़ा सा 24 कन्नै 25 डिग्री सैलसीयस आने वाले 2-3 दिनां च बनिया रहना है। कन्नै हुण ऊनां दी गल करिए तां ऊनां दा जिहड़ा सा इत्थी दी गल जिहड़ी है सा यह है कि बोले इत्थी घट कन्नै मध्यम बारिश कन्नै बरखा होई सकदी है, कन्नै इत्थे बोलिया कि भाई जिहड़े अहां दे

0: जेड़े उमस कने उमिड उमस जेड़ी असें बढ़ने मिलनी है ना कने इतनी जेड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस कने घटते घट जेड़ा सा 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। ये तथी मौसम की जानकारी कने हूँ चलते नरसीलू भाई वाहें कने ये स्थानीय सब्जी मंडी दे कांगड़ा दे थोक मोल भाव जेड़ा सा टियाले पर पुजी उन
1: जी, तो सारे तो पहले गल करते हाँ आलू दी। तो आलू 10 से 20 रुपये प्रति किलो, प्याज 30 से 32 रुपये प्रति किलो, टमाटर 22 से 30, लहसुन 150 से 160, अदरक 200 से 250 रुपये प्रति किलो,
0: जी
1: शिमला मिर्च 50 से 55, अरबी 25 से 30, फुल गोभी 40 से 50, बंद गोभी 30 से 35, बैंगन 25 से 30 रुपये प्रति किलो, मूली 10 से 25, टिंडा 40 से 50, हरी मिर्च 40 से 50, पालक 30 से 40, घिया 28 से 45, भिंडी 25 से 30, तोरी 35 से 40, करेला 20 से 30, फ्रांस बीन 50 से 60 रुपये प्रति किलो, गाजर 30 से 35, मशरूम 150 से 160 रुपये प्रति किलो। कने गल करिए फलां दी, तां सेब 40 से 180 रुपये प्रति किलो, केला 45 से 55 प्रति दर्जन, अनार 100 से 120, अनानास 33 से 40, अमरूद 80 से 90, पपीता 50 से 55, कने इस दे सोगी पलम भाई पलम 50 से 70 रुपये प्रति किलो। तोता अंब की गल करिए 80 से 110, कने आम दशहरी अज जड़ा सै मंडिया विच नहीं आया। इस दे सोगी नाशपाती की गल करिए 80 से 120 रुपये प्रति किलो, कने कीवी की गल करिए 35 से 38 रुपये दा इक, कने इस सोगी माल्टा 100 से 110 रुपये प्रति किलो।
0: जी, तो ये सब्जी मंडी दे मोल भाव के बाद जिहड़ा सा टियाले पर शामिल करते हैं एक प्यारा दिया लोक भजन है ना,
1: जी
0: तो
1: जी
0: सुनांदे अपने किसान साथियों प्यारा दिया लोक भजन।

इस प्यारे दे मिठे दे लोक भजन कन्ने ही अहां दे ट्याले दी घड़ी बोला दी पई अहां दा जाने दा वेला भी जड़ा जै वादा तो जाने ते पहले दस दईए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग दिता सुरेंद्र कपूर और प्रस्तुति जड़ी है सै जतिंदर पाल सिंह होर दी हूँ अपने ट्याले दे लोके वाउजो दिया कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति कने तुहां इं बने रहा अहां दे आकाशवाणी धर्मशाला ने ताली तक सारे जो राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:42 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कॉन्ट्रैक्ट व जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर विशेषज्ञ के मासिक वेतन में 78% की बढ़ोतरी को दी मंजूरी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का मिशन बनाने का

0: किया आह्वान। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार व बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में शिमला में किया प्रदर्शन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन बना हिमाचल का प्रमुख रेल हब, देश के 13 राज्यों से जुड़ा हिमाचल का सीधा संपर्क। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अनुसार, सिरमौर जिले में सड़क परियोजनाओं पर खर्च की जा रही है 200 करोड़ से अधिक की राशि। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट व जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट के मासिक वेतन में 78% की बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर का मासिक वेतन 33,660 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। उन्होंने कहा कि इससे विशेषज्ञ चिकित्सकों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है, ताकि लोगों को घर द्वार के समीप बेहतर उपचार व आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेशवासियों से प्रकृति के संरक्षण व हिमाचल को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने के लिए पौधरोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने आज शिमला जिले की मल्याणा पंचायत के शुराला गांव में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि पौधरोपण केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल के वन यहाँ की प्राकृतिक धरोहर हैं और साथ ही उत्तर भारत की जल सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और लाखों लोगों के जीवन का आधार भी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम जैसे जन अभियान ने देश भर में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ने का प्रेरणादायी कार्य किया है। राज्यपाल ने युवाओं से पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का मिशन बनाने का आह्वान भी किया। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों, प्रतिशोधपूर्ण राजनीति, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग के विरोध में आज शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर ताले लगाने की राजनीति शुरू की। उन्होंने कहा कि सरकार का 4 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन सरकार आज भी बंदी व तालाबंदी की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाई है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं सहित नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है और ये स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश की जनता अब कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर देखना चाहती है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनावी हार से बौखलाई कांग्रेस सरकार अब प्रशासन का दुरुपयोग कर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है।
1: जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए काम करते हैं, विपक्ष की भूमिका उस सारी चीज को लेकर के बड़ी स्पष्ट है कि उनकी आवाज को अगर दबाने की कोशिश की तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज तय किया है कि हम जो दमनकारी नीति, जो डराने की, धमकाने की और मामले दर्ज करने की, जो भी आदमी उनके खिलाफ आवाज उठाता है, खासतौर से जो विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी के हमारे नेता हैं, हमने तय किया है कि हम शुरुआत करेंगे कि आप सुधर जाओ, नहीं तो आने समय में जो है वो जनता सुधार देगी।
0: इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा और प्रत्येक मंडल में अब हर महीने कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धरने व प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा गांव-गांव और घर घर जाकर जनता को सरकार की विफलताओं से अवगत कराएगी। बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को विकास की दिशा में आगे ले जाने की बजाय संकट की स्थिति में पहुंचा दिया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं।

प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख रेल हब बन चुका है, जहां से 20 रेल सेवाएं संचालित हो रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इन रेल सेवाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश का देश के 13 राज्यों से सीधा संपर्क स्थापित हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का आधुनिक स्वरूप में पुनर्विकास किया गया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में रेलवे अधोसंरचना के विस्तार और यात्री सुविधाओं के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नंगल डैम ऊना दौलतपुर चौक रेल लाइन क्षेत्र के लिए जीवन रेखा बनकर उभरी है और इस रेल मार्ग से लोगों की आवाजाही आसान हुई है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने आज हमीरपुर जिले के छबोट गांव में उद्यान विभाग द्वारा एचपी शिवा परियोजना के तहत पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया और स्वयं भी मौसमी का पौधा लगाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बागवानी की क्रांति ला रही है। इस परियोजना के तहत फल उत्पादन को बढ़ावा देने, किसानों की आय में वृद्धि करने और उच्च मूल्य वाली फल फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सुनील शर्मा बिट्टू ने किसानों से इस महत्वाकांक्षी आह्वान किया। उन्होंने बताया कि एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत 15 अगस्त तक जिले में 1,00,000 फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा देगी, बल्कि किसानों की आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजन व ग्रामीण अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि गांव छबोट में वर्षा शालिका का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सिरमौर जिले में सड़क परियोजनाओं पर करीब 244 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। वे आज राजगढ़ उपमंडल के झिमीधार में आयोजित शनोल मेले के समापन समारोह के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत 85 करोड़ रुपए की 11 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। लोक निर्माण मंत्री ने यशवंत नगर नेरी पुल सड़क का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 1,27,00,000 रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य मशवा का लोकार्पण किया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के माध्यम से आसपास की 3 पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने बद्दी नालागढ़ फोरलेन परियोजना के शेष कार्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 378,48,00,000 रुपए का स्वीकृति पत्र जारी किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना हिमाचल प्रदेश विशेषकर बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर्ष महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हिमाचल प्रदेश में सड़क अवसंरचना को अभूतपूर्व गति दे रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कॉन्ट्रैक्ट व जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर विशेषज्ञ के मासिक वेतन में 78% की बढ़ोतरी को दी मंजूरी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का मिशन बनाने का किया आह्वान। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार व बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में शिमला में किया प्रदर्शन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन बना हिमाचल का प्रमुख रेल हब, देश के 13 राज्यों से जुड़ा हिमाचल का सीधा संपर्क। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अनुसार सिरमौर जिले में सड़क परियोजनाओं पर खर्च की जा रही है 200 करोड़ से अधिक की राशि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य न निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। रोजगार समाचार सुनिए। बाल विकास परियोजना कुमार सेन के अंतर्गत विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता संबंधी शर्तें इस प्रकार से हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों के लिए केवल महिला प्रार्थी ही पात्र है। प्रार्थी उस गाँव या संबंधित गाँव के सामान्य निवासी होनी चाहिए जिस आंगनवाड़ी केंद्र में रिक्त पद भरा जाना है। प्रार्थी का नाम दिनांक 1/1/2026 को उस आंगनवाड़ी केंद्र से परिवारों की फ्रीजिंग सूची में दर्ज होना चाहिए। प्रार्थी कम से कम 10+2 पास होनी चाहिए एवं उसकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं आय प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। उम्मीदवार दिनांक 22/8/2026 शाम 5 बजे तक आवेदन करने के लिए पात्र होंगी और साक्षात्कार हेतु 24/8/2026 को आवश्यक दस्तावेजों सहित कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमार सेन जिला शिमला में प्रातः 10 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है। पात्रता एवं शर्त एक बार फिर से सुन लीजिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों के लिए केवल महिला प्रार्थी ही पात्र है। प्रार्थी उस गांव या संबंधित गांव के सामान्य निवासी होनी चाहिए जिस आंगनवाड़ी केंद्र में रिक्त पद भरा जाना है। प्रार्थी का नाम दिनांक 1/1/2026 को उस आंगनवाड़ी केंद्र से परिवारों की फ्रीजिंग सूची में दर्ज होना चाहिए और प्रार्थी कम से कम 10+2 पास होनी चाहिए एवं उसकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं इस बात का आय प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
3: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। सोना मोहपात्रा का गाया ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे से पहले तक बैठक बार बार बाधित हुई। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पर 2.5 घंटे तक चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। आज सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी

के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही जारी रखते हुए सदस्यों को लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाने की अनुमति दी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की कविता पाटीदार ने निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के ग्राहकों को दावा निस्तारण में आ रही तमाम कठिनाइयों पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की कि इन दावों को निपटाने में अनावश्यक विलम्ब होने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद ने सरकार से मांग की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करते हुए ये अनिवार्य किया जाए कि सरल एवं सहज शब्दों में पॉलिसी के भीतर कवर की जाने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी हो। इसमें प्रतीक्षा अवधि, दावा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने वाली परिस्थितियों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावा निस्तारण की अवधि भी बताई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने एक ही दवा के अलग अलग मूल्य होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मरीजों को महंगी दवाएं बेचकर मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल में एक संसदीय समिति ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए एक रेफरेंस प्राइस रेंज बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की संगीता बलवंत ने 18 जुलाई 2026 को भारत की निजी कंपनी स्काईरूट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किए जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और नवाचार का प्रमाण है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन ने शून्यकाल में अनुबंध कर्मचारी की सेवा को एकाएक समाप्त करने के बढ़ते चलन का मुद्दा उठाते हुए इस पर चिंता जताई। भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने का स्वागत करते हुए मांग की कि इस सेवा का विस्तार करते हुए राज्य के पानीपत, रोहतक एवं हिसार को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। शून्यकाल में ही अन्ना द्रमुक के नेता डॉ एम थंबीदुरई ने मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु पर करने की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस बारे में केंद्र से अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर से आज ही के दिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को केंद्र की हर योजना का लाभ मिल रहा है और वो देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलवाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते ना देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर चर्चा में हंगामे के बीच ही उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। इसमें कांग्रेस के विवेक तन्खा, भाजपा की संगीता यादव, नरेश बंसल, भीम सिंह, केसरी देव सिंह झाला, अशोक कुमार मित्तल और मनन कुमार मिश्र, तृणमूल कांग्रेस की मेनका गुरुस्वामी, द्रमुक के आर गिरिराजन और पी विल्सन, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के आई एस अनबदुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीलालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के विजय चिंता कायला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के रविचंद्र वद्दीचंद्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ

कम करने में मदद मिलेगी। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जिनकी सिफारिश कॉलेजियम करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के लोगों के बारे में विचार करने का विषय कॉलेजियम का है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके उपरांत सदन में विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही नहीं चलना देना चाहते और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने संसद परिसर में नाटक करके भगवान राम का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सदन में हंगामे के बीच ही बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहरा रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और इसमें सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद सभी मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। उन्होंने आसन के पास आकर नारे लगा रहे और पोस्टर लहरा रहे सदस्यों से कहा, सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके और प्रदर्शन करके सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैं गंभीरता से आग्रह करना चाहता हूं, मैं शून्यकाल चलाना चाहता हूं। आपके नाम लॉटरी में आए हैं और नीति और राज्य से जुड़े सवाल है, मैं आपको बोलने दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए और शून्यकाल चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अपने दल के सदस्यों को समझा दें तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के सदस्य संसद नहीं चलाना चाहते। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा था तो विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। संसद परिसर में जो नाटक किया गया उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर पाल ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी

इसी के बीच ही लोकसभा ने बैंक कार्य बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंक कार्य बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए रखा। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एन के प्रेमचंदन, के सुरेश और कुछ अन्य के नाम पुकारे। हालांकि किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन के हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित कानून में बैंक कार्य बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। हालांकि सरकार ने कई सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि आरक्षित कोच वाली स्पेशल ट्रेन का किराया नियमित निर्धारित ट्रेन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। वैष्णव का ये लिखित उत्तर कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा स्पेशल ट्रेन के किराया ढांचे और किराया निर्धारित करने के मानदंडों से जुड़े प्रश्नों के जवाब में आया। सांसद ने यह भी पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में कितनी स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवाओं में बदला गया है तथा क्या हनुमानगढ़ जयपुर ट्रेन का किराया उसी मार्ग पर चलने वाली अन्य नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाती हैं, मौजूदा ट्रेन का विस्तार किया जाता है, उनके फेरे बढ़ाए जाते हैं तथा उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रेन सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वैष्णव ने आगे कहा कि त्योहारों, विशेष आयोजनों और यात्रा के व्यस्त सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनें चलाती है। बाद में यात्री मांग, व्यावसायिक औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024-25 से लेकर जून 2026 तक भारतीय रेल ने 245 ट्रेन सेवाओं को नियमित किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।

सबरस कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सोनू निगम के गाए इस गीत के साथ।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं फरीदा खानम के गाई ये गजल।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

सिकंदर आजम इस फिल्म से अभी ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी व साथियों की मिली जुली आवाज़ों में।

कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं राजपूत फिल्म से ये देशभक्ति गीत, महेंद्र कपूर और हेमलता व साथियों की मिलीजुली आवाज़ों में।

0: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 रिले किए जाएंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल

0: सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
2: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल

0: क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
0: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
2: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
3: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक स्पोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
4: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नैरेटिव यहां एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई दो दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पर ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह ढांचा

0: या भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म टेलीविजन प्रसारण डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ये भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रियांशी वलीशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, dismantle terror networks and vacate illegally occupied Indian territories. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kharb among 7 Indians to enter second round of women's singles. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in the Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour and a timely reform. Our correspondent reports that the strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original Act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019.
3: The increase in judge strength is one of the viable solutions for tackling the pending backlog of cases in the Supreme Court. As on 1st of January this year, over 92,000 cases are pending in the Supreme Court. Even while working at near full sanctioned capacity of 34 judges, including the Chief Justice of India, since 2019, the Supreme Court recorded institution of 75,410 fresh matters last year, against a disposal of more than 65,000 cases. The volume of litigation in the Supreme Court has constantly been on the rise due to a persistent gap between institution and final disposal of cases in the court. The increase in the number of judges in the Supreme Court is expected to expedite the disposal of cases and ensure timely justice to the people. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
2: After completing the business, the deputy chairman adjourned the upper house for the day. Earlier in the day, the upper house witnessed repeated disruptions over several issues, including alleged police action during students' protest on the NET paper leak issue. The Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid, and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. The legislation was cleared by the Lok Sabha without any discussion amid continuous uproar by the opposition members over several issues. Following the passage of the bill, the Lok Sabha was adjourned for the day. Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav has said the government is cognizant of the risks associated with children's online activities, including exposure to harmful content, cyberbullying, online exploitation and digital addiction. In a written reply to a question in the Lok Sabha today, Mr. Vaishnav said the government keeps itself informed of global developments and evolving international regulatory approaches relating to online safety, including measures adopted by different jurisdictions for protection of children in the digital environment. He said the Digital Personal Data Protection Act 2023, DPDP Act, has been enacted, which establishes the legal framework to regulate the processing of digital personal data. The DPDP Act provides a legal framework for safeguarding children's privacy online. CEO of Meta, the parent company of several of the world's largest social media networks, Mark Zuckerberg, today sent his apologies to the government of India for the child sexual abuse material, related content, deepfake content and errors in operating the platform. Sources said Meta admitted that a lot of money was paid for boosting certain type of content. It was made clear to Meta that they are not covered under intermediary definition and they select who receives the content. They apologized and regretted the mistake. In Jharkhand, the students' protest against the alleged irregularities in the Jharkhand Public Service Commission and Jharkhand Staff Selection Commission examinations being held at Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi is intensifying with each passing day. The agitating students have announced plans to lay siege to the Jharkhand Assembly during the upcoming monsoon session to press their demands. The BJP today hit out at senior Congress leader Rahul Gandhi over his silence on the ongoing protests in Jharkhand against alleged irregularities in the Jharkhand Public Service Commission and Jharkhand Staff Selection Commission examinations. Addressing a press conference in New

0: मिलाजिए।
1: अरे कहिए पंडित जी, मिजाज तो अच्छे हैं।
2: इनायत है हुजूर।
1: वल्ला आप तो नुमाइश में रखने के काबिल आदमी हैं। भाई आज तो आपकी बात ही कुछ और है, है? हरी बनात की अचकन, उस पर लाल शंजाफ, गले में जरी का दुपट्टा, सर पर बनारसी साफा और ये लाल चौड़े किनारी की रेशमी धोती। भाई दूर से ही लगता है कि कोई महात्मा आ रहे हैं।
2: जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं खान साहब?
1: आपका वजन 10 मन से कम तो ना होगा?
3: 1 मन इल्म के लिए 10 मन अकल चाहिए। उस कायदे से 1 मन अकल के लिए 10 मन का जिस्म जरूरी है, नहीं तो उसका बोझ कौन उठाए।
0: आप लोग इसका मतलब नहीं समझते। बुद्धि एक प्रकार का नजला है, जब दिमाग में नहीं समाती तो जिस्म में आ जाती है।
1: मैंने तो बुजुर्गों की जुबानी सुना है कि मोटे आदमी अकल के दुश्मन होते हैं।
3: हजूर आपका हिसाब कमजोर था, वरना आपकी समझ में इतनी बात जरूर आ जाती कि जब अकल और जिस्म में 1 और 10 की निस्बत है तो जितना ही मोटा आदमी होगा उतना ही उसकी अकल का वजन भी ज्यादा होगा ना।
2: जब मोटी अकल की बदौलत राज दरबार में पूछ होती हो तो मुझे पतली अकल लेकर क्या करना है बताइए।
0: चलिए छोड़िए, बहुत हो गया हंसी मजाक, अब जरा काम की बात करते हैं। पंडित जी आपको तो मालूम ही है, वायसराय के आगमन पर व्यवसायियों की हड़ताल हो रही है और ये सरकार के लिए नाक का सवाल है। इसका तोड़ आपके पास है, ऐसा हमारा विश्वास है। बस ये समझ लीजिए कि अगर आपने इसका निवारण हमारी योजना के अनुसार किया और हड़ताल ना हुई तो कुछ और कह नहीं सकते, पर आपको जीवन भर किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत ना होगी।
2: मुझे करना क्या होगा?
0: ऐसा कोई व्रत ठानिए कि शहर वाले थर्रा उठें और ऐसी कोई युक्ति निकालिए कि जनता के धार्मिक भावों को चोट पहुंचे।
2: अरे ये तो कोई ऐसा कठिन काम नहीं है, मैं तो ऐसे अनुष्ठान कर सकता हूँ कि आकाश से जल की वर्षा कर दूं, महामारी के प्रकोप को शांत कर दूं, अन्न के भाव घटा बढ़ा दूं, इन सत्याग्रहियों को परास्त कर देना कोई बड़ी बात नहीं है।
1: तब तो जनाब ये कहना चाहिए कि आप दूसरे खुदा हैं। भाई हमें क्या मालूम था कि आप में ये कुदरत है, नहीं तो हम इतने दिन परेशान क्यों होते।
2: हुजूर संसार में गुणियों का अभाव नहीं है, गुणज्ञों का ही अभाव है।
0: चलिए ये बताइए कि अनुष्ठान के लिए आपको क्या भेंट करना होगा?
2: जो कुछ आपकी श्रद्धा।
0: कुछ बतला सकते हैं कि कौन सा अनुष्ठान होगा?
2: देखिए अनशन व्रत के साथ मंत्रों का जाप होगा, सारे शहर में हलचल न मचा दूं तो मोटे राम नाम नहीं मेरा।
0: तो फिर कब से?
2: आज ही से हो सकता है। हाँ पहले देवताओं के आवाहन के निमित्त थोड़े से रुपए ही दिलवा दीजिए बस।
0: ये लीजिए पंडित जी रुपए, और जुट जाइए अभी से।
2: जय हो आपकी जय हो, मैं चलता हूँ। पंडिते जय हो जय हो।
4: पंडित जी इस अनशन वाली जुगत से तुम जितना खुश हो रहे हो ना, उतना खुश होने की कोई बात नहीं। मुझे तो अभी से तुम्हारी चिंता होने लगी है, तुमने नाहक ये रोग अपने सिर ले लिया है। भूख ना बर्दाश्त हुई तो सारे शहर में भद हो जाएगी और जो लोग हंसी उड़ाएंगे वो अलग। सुनो जी मुझे लगता है ना आप ये रुपए लौटा दो।
2: मैं ऐसा मूर्ख थोड़े ही हूँ जो वहाँ जाकर बैठ जाऊंगा। तुम पहले भोजन का प्रबंध करो, इमरतियां रसगुल्ले लड्डू सब मंगवाओ, पहले पेट भर भोजन कर लूं, फिर आध शेर मलाई खाऊं, उसके ऊपर आध शेर बादाम की तह जमाऊं, बची खुची कसर मलाई वाले दही से पूरी कर दूं, फिर देखता हूं पड़ता है भूख क्यों कर पास पटकती है मेरे। 3 दिन तो सांस ही ना ली जाएगी, भूख की क्या मजा। बस इतने में सारे शहर में खलबली मचाएगी, ये तो समझो भाग्य का सूर्य उदय हुआ है। और बाजार बंद ना हुआ तो समझ लो मालामाल हो जाएंगे, नहीं तो यहां गांठ से क्या जाता है, और रुपए तो हाथ लगी गए ना। अच्छा अब तुम करो भोजन की तैयारी और मैं करता हूं शाम की तैयारी ना।

0: पंडित जी सदैव राजनीतिक विषयों से अलग रहे हैं, पर आज इस विषय पर कुछ बोलेंगे, अवश्य आए और ये मौका ना दोए। सुनो सुनो सुनो।
1: नगरवासियों, व्यापारियों, सेठों और महाजनों, मैंने सुना है कि तुमने सत्याग्रहियों के कहने में आकर बड़े लाड साहब के शुभागमन हड़ताल करने का निश्चय लिया। ये कितनी बड़ी कृतज्ञता। वो चाहे तो आज तुम लोगों को तोप के मुंह पर उड़वा दें, सारे शहर को खुदवा डालें। राजा है, हंसी ठट्टा नहीं है। वो तुम्हारी दीनता पर दया करते हैं और तुम गऊओं की तरह खेत चरने को तैयार। लाड साहब चाहे तो आज रेल डाक माल का आना जाना सब बंद कर दे। वो चाहे तो आज सारे शहर वालों को जेल में डाल दे। बताओ क्या करोगे? तुम उनसे भाग कर कहां जा सकते हो? है कहीं ठिकाना? इसलिए जब इस देश में और उन्हीं के अधीन रहना है तो इतना उपद्रव क्यों? तुम्हारी जान उनकी मुट्ठी में है, ये हमेशा याद रखना। तुम झाड़ू से आंधी को रोकने चले, खबरदार जो किसी ने बाजार बंद किया, नहीं तो कह देता यही अन्न जल बिना प्राण भी दूंगा मैं।
2: अरे महाराज, आपके प्राण निकलते निकलते महीने भर से कम नहीं लगेगा। अरे 3 दिन में क्या होगा?
1: अरे प्राण शरीर में नहीं रहता, ब्रह्मांड में रहता है मूर्ख। मैं चाहूँ तो योग बल से अभी प्राण त्याग कर सकता हूँ।
3: मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी, अब तुम जानो।
1: मेरा कहना मानोगे तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है, और अगर नहीं मानोगे तो क्या लगेगी? संसार में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। बस ये लो, मैं यही पर आसन जमाता हूँ।

0: अधिकारियों की ये चाल है, ये सब पाखंड है।
1: राजभक्तों ने पंडित को कुछ दे दिलाकर स्वांग खड़ा कर दिया। जब कोई और बस न चला, फौज पुलिस कानून सब युक्तियों से हार गए तो ये नई माया रच दी।
2: हाँ, ये और कुछ नहीं, राजनीति का दिवाला है। नहीं तो पंडित जी ऐसे कहां के देश सेवक थे जो देश की दशा में दुखी होकर व्रत ठानते।
3: अरे इन्हें भूखे मरने दो, दो दिन में चैन बोल जाएगी।
4: मेरी मानो तो इस नई चाल की जड़ अभी काट देनी चाहिए। कहीं ये चाल सफल हो गई तो समझ लो वो हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे।
3: लेकिन इन व्यापारियों से ये भी तो पूछ लो, हड़ताल तो इन्हीं को करनी है। क्यों भाइयों, क्या कहते हो आप?
5: आप लोगों के कहने से हम सरकार से बुरे बने, नुकसान उठाने को तैयार हुए। रोजगार छोड़ो, और तो और अफसर को तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। पहले जहाँ जाते थे अधिकारी लोग आए सेठ जी कहकर सम्मान करते थे, पर अब कोई नहीं पूछ रहा।
6: देखो भाइयों, ये सब सहा और सहेंगे, लेकिन धर्म के मामले में हम आप लोगों का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे।
5: जब एक विद्वान कुलीन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हमारे ऊपर अन्न जल त्याग कर रहा है, कहीं मर मरा गया तो ना भाई लोगों, हमें तो माफ करिए। हम तो आज रात ही एक डेपुटेशन लेकर पंडित जी से मिलने जाएंगे, उनसे विनती करेंगे अपना अनशन त्याग दें।

0: आज दिन में भोजन तो डट कर गया है, ऐसा भी नहीं कि मैं भूख से व्याकुल हूं, पर रात के भोजन का समय हो रहा है तो एक प्रकार की भोजन की चाह होने लगी है। जी तो चाह रहा है कि किसी खोमचे वाले को पुकारूं, कुछ ले लूं, पर कमबख्त अधिकारियों ने मेरी रक्षा के लिए जो ये सिपाही तैनात कर रखा है, इसके रहते किसी खोमचे वाले को भी नहीं बुला सकता। काम का इस पाजी को यहां खड़ा कर दिया।
1: चरण स्पर्श पंडित जी, महाराज हमारे ऊपर आपने क्यों यह कोप किया?
2: आपकी जो आज्ञा हो हम वो शिरोधार्य करेंगे। आप उठिए, अन्न जल ग्रहण कीजिए।
1: हाँ हाँ पंडित जी, कृपया अन्न जल ग्रहण कीजिए। हमें मालूम नहीं था कि आप सचमुच ये व्रत ठानने वाले हैं, नहीं तो हम पहले ही आपसे विनती करते।
2: अब कृपा कीजिए, 10 बजने का समय है, हम आपका वचन कभी न टालेंगे।
3: ये सत्याग्रही ही तुम्हें मटिया मेट करके छोड़ेंगे। आप तो डूबते ही हैं, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। बाजार बंद होगा तो इससे तुम्हारा ही टोटा होगा, सरकार को क्या होगा? तुम काम छोड़ दोगे, आप भूखे मरोगे, सरकार को क्या? तुम जेल जाओगे, चक्की पीसोगे, सरकार को क्या? ना जाने इन सबको क्या सनक सवार हो गई है कि अपनी नाक कटाकर दूसरों का असगुन मनाते हैं। तुम इन कुपंतियों के कहने में ना आओ, क्यों दुकानें खुली रखोगे?
4: महाराज, जब तक शहर भर के लोगों की पंचायत ना हो जाए तब तक हम इसका जिम्मा कैसे ले सकते हैं? सत्याग्रहियों ने कहीं लूट मचा दी तो कौन हमारी मदद करेगा? आप उठिए, भोजन पाएं, हम कल पंचायत करके आपकी सेवा में जैसा कुछ होगा हाल देंगे।
3: तो फिर पंचायत करके आना।
2: जैसी आपकी इच्छा। जी जी जी। चलो भाई।
3: अरे सुनो, अरे किसी के पास सूंघनी तो नहीं है?
1: सूंघनी तो नहीं है पंडित जी, ये लीजिए नसवार, इससे काम चलाइए।
3: अरे लाओ लाओ लाओ भाई, यही दे दो, भोजन का मिलना तो कठिन है, नसवार ही सही। समझ में नहीं आ रहा, पाजी पुलिस वाले को कैसे रफा दफा करूं? तुम यहाँ क्यों खड़े हो?
5: साहब का हुक्म है, क्या करें?
3: मेरे कहने से चले जाओ यहाँ से।
5: अच्छा, आपके कहने से चले जाएं? कल नौकरी छूट जाएगी तो आप खाने को देंगे?
3: अरे हम कह रहे हैं चले जाओ, नहीं तो हम ही चले जाएंगे। हम कैदी थोड़ी ना है जो तुम हम पे घेरा डाले पे खड़े हो।
5: चले क्या जाइएगा, मजाल है?
3: मजाल क्यों नहीं, मैं कोई जुर्म किया है मैंने?
5: अच्छा जाओ। तो
3: हमको आंखें दिखाते हो, ऐसे नहीं मानोगे?
5: अरे अरे बाप रे,
3: यहां से। ये बला तो टली, बस अब कोई खोमचे वाला नजर आ जाए तो उससे कुछ।

0: अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है पंडित जी, है हमारा आपका नहीं।
1: अबे क्या बकता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहो तो महीनों पड़े रहे और भूख प्यास भी ना लगे। तुझे तो इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी दे तो मुझे। हाँ, इसकी रोशनी में देखो वहां वो क्या रेंग रहा है। अरे मुझे भय हो रहा है कि कहीं सांप ना हो।
0: ये लो कुप्पी।
1: लाओ पहले इधर देखता हूँ। अरे इधर तो कुछ भी नहीं है, कहीं वहां तो नहीं रेंग गया। अरे अरे अरे अरे अरे, अरे ये कुप्पी तो हाथ से गिर गई। लो ये तो बुझ गई।
0: अब इसमें तो जरा भी तेल नहीं बचा है।
1: हाँ भैया हाथ ही तो है, छूट गिरी तो क्या हाथ काट डालू। ये लो पैसे, जाकर कहीं तेल भरवा लो।
0: क्या? अरे तेल भरवा कर क्या मैं यहाँ आऊंगा? मैं नहीं आऊंगा।
1: खोमचा रखो, दौड़ जाओ पट्टे तेल लेते आओ। खोमचे की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा खोमचा देखता रहूंगा। जाओ शाबाश, जल्दी जाओ और जल्दी करो।
0: ठीक है जाता हूँ।
1: ये खोमचे वाला थोड़ी दूर निकल जाए तो उसके खोमचे पर निगाह दौड़ाता हूँ। मिठाई तो बहुत कम बची है, बेहतर अपनी जगह पर बैठना। वैसे आहार कितना ही सूक्ष्म हो फिर भी आहार ही है,

0: कुछ तो बनेगा। लड्डू से शुरुआत करता हूँ। अरे बाप रे, ये खोमचे वाला इतनी जल्दी तेल की कुप्पी जलाए कदम बढ़ाता चला रहा है। इसके पहुंचने से पहले मिठाई समाप्त होना जरूरी है। एक साथ दो चीजें मुंह में डालता हूँ, बाकी की चार भी मुंह में डाल लेता हूँ अभी। और छह बची हैं वो घूमते फाटक
1: तक। ये लीजिए कुप्पे, देख लीजिए। चले हैं उपवास करने है, और प्राणों का इतना डर पंडित जी।
2: सुनिए सुनिए सुनिए, मान लिया मोटे राम जी ने स्वार्थवश ही अनुष्ठान किया है, पर इससे वो कष्ट कम नहीं हो सकता जो अन्न जल के बिना प्राणी मात्र को होता है। क्यों, आप क्या कहते हैं नेताजी?
3: मुझे तो जो कहना था मैं कह चुका। आप लोग अपने अपने समाज के नेता हैं, जो फैसला कीजिए मुझे मंजूर है। चलिए मैं भी आपके साथ चल चलूंगा पंडित जी से मिलने, पर एक विनती सुन लीजिए। पहले मुझे पंडित मोटे राम के यहां जाने दीजिए, मैं एकांत में उनसे 10 मिनट बात करना चाहता हूं।
2: नेताजी पुलिस विभाग में बहुत दिनों तक तो रह चुके हैं, मानव चरित्र की कमजोरी को जानते हैं। क्यों नेताजी?
3: ठीक है मैं चलता हूं, बाजार से कुछ सामान भी खरीदना है। लो जी आ गया मशहूर भोला मिष्ठान भंडार। ऐसा करें एक बड़ा सा डोना बढ़िया सी मिठाई का बांध दे, इसमें चांदी का वर्क लगा दीजिएगा। और हां ऐसा करिए ऊपर से थोड़ा केवड़े का जल भी छिड़का दे। लाइए लाइए लाइए, धन्यवाद धन्यवाद। तो अब चला जाए पंडित मोटे राम जी की ओर।
0: अब तो किसी से कोई उम्मीद नहीं, अब तो इतनी भी शक्ति नहीं कि खड़े होकर बाजार जा सकूं। आज रात को अवश्य ही प्राण पखेर उड़ जाएंगे। जीवन सूत्र कोई कोई रस्सी तो है नहीं कि चाहे जितना झटका दो टूटने का नाम ही ना ले।
4: शास्त्री जी।
5: नमस्कार।
0: कौन नेताजी?
5: यहाँ कब तक पड़े रहोगे मोटे राम जी? यहाँ कुछ निश्चय विश्चय ना होने का है।
6: कल कहीं शाम को लाट साहब आएंगे, तब तक तो ना जाने आपकी क्या दशा होगी।
0: यही मरना बदा होगा तो कौन टाल सकता है। इस डोने में कलाकंद है क्या?
6: ना, तरह तरह की मिठाइयां हैं, एक नातेदार के यहां भिजवाने के लिए खास तौर से बनवाई हैं।
0: जब ही इतनी सुगंध है। जरा डोना खोलिए तो।
6: ये लीजिए, खोल दिया।
0: क्या क्या बढ़िया मिठाइयां मिठाइयां भोला की दुकान की होंगी।
6: जी जी जी, चख लीजिए।
0: क्या करूं, धर्म संकट में बड़ा हूं।
6: अरे अब चखिए भी। कोई किसी को कहने जाता है क्या?
7: मुझे भय किसका है, मैं यहाँ दाना पानी बिना मर रहा हूँ, किसी को परवाह ही नहीं है, तो फिर मुझे काहे का डर।
0: इधर टोना बढ़ाओ।
7: जाओ सबसे कह देना शास्त्री जी ने व्रत तोड़ दिया, भाड़ में जाए बाजार, भाड़ में जाए व्यापार।
6: जाकर खुशखबरी फाटक पर इंतजार कर रहे महानुभावों को दे आऊं।
5: जरा चलकर तमाशा देखिए, आप लोगों को ना बाजार खोलना पड़ेगा ना खुशामत करनी पड़ेगी। मैंने सारी समस्या का हल कर दिया, ये रहा हमारा कमाल,
6: अब आप लोग मिल लीजिए पंडित जी से।
4: पंडित जी मिठाई ठिकाने लगाने में वैसे ही तन्मय हो रहे हैं जैसे कोई महात्मा समाधि में मग्न हो।
8: पंडित जी चरण वंदना।
9: हरिओम।
8: हम लोग तो आ ही रहे थे, आपने क्यों जल्दी की? ऐसी जुगत बनाते कि आपकी प्रतिज्ञा भी ना टूटती और कार्य भी सिद्ध हो जाता।
9: मेरा काम सिद्ध हो गया भैया। ये अलौकिक आनंद है, धन के ढेरों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। अगर कुछ श्रद्धा हो तो उसी दुकान की इतनी मिठाइयां

0: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी मोटे राम का सत्याग्रह पर आधारित हिंदी नाटक।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी मोटे राम का सत्याग्रह पर आधारित ये हिंदी नाटक। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 10:30 होने को है। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत, पुरानी फिल्मों से गीत। तो ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति सुनैना फिल्म से, जिसे गाया है KJ यशुदास ने।

दो रास्ते इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी का गाया हुआ। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं शर्मीली फिल्म से ये गीत।

शर्मिले फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत दिया था सचिन देव वर्मन ने। सिलसिला इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। संगीत दिया है शिव हरि ने और गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

अनुपमा इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर का गाया हुआ। बोल थे कैफी आजमी के और संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति निकाह फिल्म से। इस गीत को गाया है महेंद्र कपूर ने।

0: ये थी इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति टावर हाउस फिल्म से। ये गीत था लता मंगेशकर का गाया हुआ। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई, विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
1: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मान हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई

0: करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते सहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters and the emerging constitutional and legal interpretations issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour for a timely reform. The strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original Act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. Earlier in the day, the Upper House witnessed repeated disruptions over several issues, including alleged police action during students' protest on the NEET paper leak issue. The Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid, and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. CEO of Meta, the parent company of several of the world's largest social media networks and communication tools, Mark Zuckerberg today sent his apologies to the government of India for the child sexual abuse material, related content, deepfake content and errors in operating the platform. Sources said Meta admitted that a lot of money was paid for boosting certain type of content. Today marks 7 years since the historic abrogation of Articles 370 and 35A. On this day in 2019, a landmark decision marked the beginning of a new chapter in the journey of Jammu and Kashmir and Ladakh. Prime Minister Narendra Modi, in his message on the occasion, said, constitutional changes made in 2019 ushered in development